0: Assalamu alaikum. Medium waves to jigna gabgyana nishubjine kilohertz tugyana nishubjine kilohertz FM rgya asharya chik megahertz duna news on AIR abika du akashwani kargilin. During prochuk by p program unna yambo ngachayanti dunu klepset ngachi juna salam poko bol songshik.
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई के विरोध में विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज सवेरे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों मीराबाई चानू, चानम्बम ऋषिकांत सिंह, राजा मुथु पांडी और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को बधाई दी।
2: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम्बम तथा श्री राजा मुथु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
1: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य मुद्दे नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
1: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने नियम 267 के तहत इस विषय पर चर्चा की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस बीच सरकार आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके माध्यम से 2024 के लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ये विधेयक सदन में प्रस्तुत करेंगे। मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ियों के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालतों के गठन तथा कड़े दंड के प्रावधान वाले इस विधेयक के मसौदे को शुक्रवार को मंजूरी दी थी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने परीक्षा सुधार विधेयक पर चर्चा के लिए सभी सांसदों से संसद की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों पर एक उच्च स्तरीय कार्यबल के गठन की घोषणा की है। इसका नेतृत्व प्रख्यात प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ नंदन नीलकर्णी करेंगे। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि कार्यबल परीक्षा सुधारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। कार्यबल में पूर्व सूचना और शिक्षा निदेशक तपन डेका, पूर्व इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के निदेशक वी कामकोटि भी शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने दिल्ली महिला आयोग और दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है। लता गुप्ता को दिल्ली महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। निर्मल जैन दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति और भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लोंगलेंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। मीराबाई चानू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं के 48 किलोग्राम भार वर्ग में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर ये उपलब्धि हासिल की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Both houses of parliament have been adjourned till 12 noon following opposition protest over alleged police action during students' protest over the NET issue. When the Lok Sabha assembled for the day at 11 a.m., Lok Sabha Speaker Om Birla congratulated India's star weightlifters Mirabai Chanu, Chalambam Rishikanta Singh, Raja Muthupandi and para power lifter Chandu Kumar on winning medals at the 23rd Commonwealth Games in Glasgow, Scotland. When the Speaker tried to take up the question hour, the opposition members raised the issue of alleged police action during students' protest. Mr. Birla warned that he will be forced to take action against those members who are attempting to undermine the traditions and decorum of the House. In the Rajya Sabha, the scene was no different. When the House assembled to begin its proceedings at 11 a.m., Union Ministers laid papers on the table. Amid the uproar by the opposition members, the House was adjourned till 12 noon. The government will introduce the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. It will be introduced by Union Minister Dr. Jitendra Singh. On Friday, the Union Cabinet had approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Supreme Court today agreed to hear tomorrow a batch of pleas alleging excessive use of police force against students protesting over the issue of examination paper leaks. A bench comprising Chief Justice Surya Kant and Justices Jaimala Bagchi and V. Mohana also agreed to take up a separate plea filed by a few family members of those police personnel who were attacked during the protest, along with other listed petitions. Meanwhile, Chief Justice Surya Kant today observed that the right to peaceful and lawful protest is constitutionally protected. Solicitor General Tushar Mehta, appearing for the centre, said he will assist the court. Prime Minister Narendra Modi has announced the constitution of a high-powered task force on examination reforms, which will be led by renowned technology expert Nandan Nilekani. In a video message, he said the task force will focus on examination reforms and based on its report, steps will be taken as soon as possible to ensure the credibility of upcoming examinations. The task force will also consist of former IB Director Tapan Deka, former ISRO Chairman S. Somnath, IIT Chennai Director V. Kamakoti. In Nagaland, the Indian Air Force IAF continued its aerial humanitarian operations, evacuating stranded passengers from different parts of the state following widespread disruption of road connectivity caused by the ongoing monsoon-related incidents. Two Indian Air Force helicopters were deployed to the EAC headquarters in Namsang Circle under Longleng District. They successfully evacuated a total of 42 stranded passengers. Earlier, on the 23rd and 24th of July, the IAF had evacuated a total of 148 stranded passengers. The nation is paying tribute to former President and renowned

0: Brandon. अक्सर घर के आंगन में बैठ जीवन का मंथन करती हूँ, सुनहरी यादों के ताने बाने से खुशियों की चादर बुनती हूँ। ये आंगन मेरे अपनों से पूरा होता है, जिनके होने से मैं खुद को पूरा महसूस करती हूँ। जी हाँ
1: जी प्रतिभा, क्योंकि घर आंगन की शोभा तो अपनों से ही होती है, और भाई जब घर आंगन में अपने मिलते हैं तो ये और भी खूबसूरत हो जाता है ना?
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, तो कार्यक्रम का आगाज करते हैं और स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोताओं का। और आज आपके साथ हूँ मैं प्रतिभा और
1: रश्मि कुकरेती। प्रतिभा, आपको आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के सभी सुनने वालों को और आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के सभी सुनने वालों को हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। और देखिए रश्मि जी, हम सभी जानते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं वो एफएम गोल्ड चैनल पर जुड़ते हैं, जो कि है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, और इंद्रप्रस्थ चैनल के लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर।
1: जी, और आज का दिन विशेष दिन है। हम सबसे पहले श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज उनकी पुण्यतिथि है, और डॉक्टर कलाम शिक्षा, विज्ञान और राष्ट्र निर्माण में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उनकी पुण्यतिथि पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है और श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, और घर आंगन परिवार की तरफ से हम भी उन्हें शत शत नमन
0: करते हैं। बिल्कुल। और रश्मि जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक प्रश्न पूछकर अपने श्रोताओं से, और उस प्रश्न का जो हमारे श्रोता हैं वो एक प्यारा सा जवाब भी देते हैं, और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे उस प्रश्न का।
1: जी, तो आप जल्दी बताइए कौन सा प्रश्न लाई है आज।
0: जी रश्मि जी, आज का जो हमारा प्रश्न है हमारे श्रोताओं के लिए वो है कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है उनमें जो उनको यानी कि आपको बेहतर बनाती है।
1: जी बिल्कुल, और उसका जवाब हमें लिखकर भेज

0: फिल्म में अभी आप ये गीत सुन रहे थे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में।
1: और बहुत अभी जो समाचार सुन रहे थे ना प्रतिभा, तो मतलब इतना अच्छा लगा भाई। राष्ट्रमंडल खेल की बात हुई 2026 जो कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित किए जा रहे हैं, और एक बड़ी खुशखबरी हमने अभी सुनी कि इन खेलों में भारत की जो स्टार भारोत्तोलक है मीराबाई चानू, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। भाई ये सुन के तो मेरा मन जो है ना खुशी से झूम उठा।
0: बिल्कुल, बात ही झूमने

0: देखिए मतलब मैं ये पढ़ रही थी कि लगभग 3,000 खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और 74 राष्ट्रमंडल देश जो यहाँ पर भागीदारी दे रहे हैं अपनी। लेकिन जब इतने सारे लोगों में जब हमारे देश की महिलाएं हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं अपनी पहचान बनाते हैं तो वो खुशी का माहौल तो होता ही होता है। और देखिए ना केवल मीराबाई चानू बल्कि भारतीय मुक्केबाज प्रीति पवार ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश ले लिया है।
1: जी तो हमारे जो इस समय जो है भारत के 4 पदक आ चुके हैं और जो महिलाएं हैं भाई जब जाती हैं अच्छा प्रदर्शन करती हैं तो देश के लिए गौरव बढ़ाने की बात होती है तो हमें अच्छा लगता ही है।
0: बिल्कुल। और देखिए एक और हैं प्रतिष्ठा सामंता, उन्होंने भी शनिवार को जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में महिला वर्ल्ड स्पर्धा के में जो है क्वालिफाई करके 5वें स्थान पर रहकर फाइनल में जगह बना ली है। तो रश्मि जी इन सभी खिलाड़ियों को हमारी तरफ से ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, ये ऐसा ही अपना प्रदर्शन देते रहे इन खेलों में
1: जी और भारत का नाम रोशन करते रहे
0: जी।

0: तेरे मेरे सपने। अभी आपने इस फिल्म से गीत सुना, आवाज थी आशा भोसले की। और श्रोताओं, जैसा कि हमने शुरू में ही आपसे एक प्रश्न पूछा था, और वो प्रश्न था कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है। जी हाँ, ये हमारा आज का प्रश्न है और जिसका आपको हमें जवाब देना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: तो इसी के साथ हमारे पास जवाब आने शुरू हो गए। प्रतिभा
0: जी,
1: और उमेश कुमार खयाला से कहते हैं कि मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुझसे मदद मांगता है तो बिल्कुल मैं मदद करने के लिए एकदम से तैयार हो जाता हूँ। भाई बहुत अच्छी आदत है, अगर आप मदद मांगते हैं, किसी कोई आपसे मदद मांगे और आप मदद दे दें, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने रश्मि जी। देखिए, मदद करना तो बहुत ही अच्छी बात है और खुद को सुकून भी देती है ये वाली आदत जब हम मदद करते हैं। और देखिए, एक मेल और है डी राजेश्वर राव जी का, वो कहते हैं कि वो अपने जो रोजमर्रा की जो रूटीन है उसकी उनकी, उसमें वो अपनी डाइट संतुलित आहार लेते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और एक भरपूर और एक अच्छी नींद लेते हैं, जिसकी वजह से वो शारीरिक और मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहते हैं, खुश रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं।
1: और सुदर्शन मुखी अनीता और सिमरन शांति नगर सोनीपत से जुड़ गए हैं हमारे साथ और कह रहे हैं कि मैं बिजी रहता हूँ और बिल्कुल साफ सफाई से रहना पसंद करता हूँ, तो ये मेरी मेरी ये आदत है। बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो स्वच्छता जो है ना, वो तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह है, और बिजी रहना भी बहुत अच्छी बात है। हमेशा कर्मशील बने रहे, कर्मठ बने रहे, तभी हमारा देश जो है विकास की ओर कदम बढ़ा पाएगा। तो ये अच्छी आदतें हैं, ये भी बनाए रखिए और हम भी आपसे कुछ कुछ सीखते रहेंगे।
0: और ये आदत तो बनाए रखेंगे ही, और हम उम्मीद ये करते हैं कि आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे और आप हमें अच्छे से अच्छे जवाब अपने भेजते रहेंगे। क्यों रश्मि जी?
1: जी,
0: तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं ना। और अब बात करते हैं उस महिला की जिसकी सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने उन्हें दी एक खास पहचान।
1: जी,
0: पल्लवी पाटिल। जी हाँ, पल्लवी पाटिल ने मुंबई फायर ब्रिगेड की पहली महिला फायर इंजन ड्राइवर बनकर इतिहास रच दिया।
1: जी, और भाई देखो कितना मुश्किल काम है महिला फायर इंजन ड्राइवर होना। लेकिन क्या था कि पल्लवी के भाई पहले से ही फायर ब्रिगेड में काम करते थे और उनके पिता भी चाहते थे कि दोनों भाई बहन इस सेवा का हिस्सा बने। और जब महिलाओं की भर्ती शुरू हुई तो पल्लवी भी फायर ब्रिगेड में शामिल हो गई, और उसके बाद वो फायर फाइटर के तौर पर थोड़ा उन्होंने काम किया, उसके बाद फायर इंजन चलाने की विशेष ट्रेनिंग ली और विभाग की परीक्षा पास करके मुंबई फायर ब्रिगेड की वो पहली सक्रिय महिला फायर इंजन ड्राइवर बनी।
0: देखिए, वो ड्राइवर तो बनी है ना, लेकिन वो जो है पल्लवी सिर्फ अब फायर इंजन नहीं चलाती बल्कि मौके पर पहुंच कर पानी के प्रेशर को भी नियंत्रित करती है ताकि दमकल कर्मी आसानी से आग को बुझा सकें।
1: हाँ, और भाई प्रतिभा देखो, जब फायर इंजन की ड्राइविंग सीट पर बैठते हैं तो फिर लगता है ना कि भाई घटना पर जा रहे हैं, आग की घटना है, मन में थोड़ा डर भी होता है, जिम्मेदारी का एहसास भी होता है, तो ये तो काम तो मुश्किल है थोड़ा, लेकिन भाई महिलाएं अगर करना चाहें तो क्या नहीं कर सकती।
0: बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, जोश और जज्बों में महिलाएं तो देखिए किसी से कम है ही नहीं, और आज महिलाओं ने हर क्षेत्र में साबित भी तो कर दिया है कि वो कंधे से कंधा मिलाकर चलना जानती हैं। क्यों?
1: जी, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और सोच उन्हें आसमान की बुलंदी तक पहुंचा सकती है। और अगर आप भी ऐसे सपनों को जी रही हैं तो भाई वक्त है उन्हें भी नया आयाम दें।
0: बिल्कुल।

मंगेशकर की आवाज में अभी आप ये गीत सुन रहे थे, फिल्म थी रखवाला। और प्रतिभा, यहाँ हमारे पास सवालों, जो सवाल तुमने पूछा था उसका जवाब आ चुका है। रवि नारायण जी भिलाई से कह रहे हैं, भाई इस सवाल का जवाब है सकारात्मक सोच। जीवन में चाहे कितने भी दुख आए, हम अपनी सकारात्मकता हमेशा बनाए रखें तो हम बेहतर बन सकते हैं। बहुत अच्छा जवाब। और डॉक्टर ए के टंडन जो हैं वो माया इनक्लेव से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरे वाह, आप 82 साल के हैं प्रोफेसर साहब। और वो कह रहे हैं कि मैं अभी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ और मेरी हैबिट है, मेरी आदत है कि मैं कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह से अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ और बाकायदा उसकी डेमोंस्ट्रेशन करता हूँ। बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं प्रोफेसर सर आपको, और आप इसी प्रकार सक्रिय बने रहें और आपके जो छात्र हैं वो आपके अनुभव का, आपकी से जो शिक्षा प्राप्त करके बड़े बड़े पदों पर आसीन हो, हमारी यही कामना। आप खूब स्वस्थ जीवन जिए और FM गोल्ड से यूं ही जुड़े रहे। और साथ में एक और मेल मेरे पास आई है, आप हैं सुरभि मयूर विहार से, वो कहती हैं, दीदी मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं मुश्किल हालात में भी घबराती नहीं हूँ, चुनौती चाहे कितनी भी बड़ी हो मैं शांत रहकर अपना काम करने की कोशिश करती हूँ, शायद यही

0: हिम्मत और आत्मविश्वास मुझे दूसरों से अलग बनाता है।
1: बिल्कुल। और रश्मि जी देखिए, एक और मेल है राजेश शर्मा जी का, वो कहते हैं कि मेरी आदत है कि मैं ज्यादातर सच बोलता हूँ। देखिए कितनी अच्छी आदत है ना। और वो कहते हैं कि उनका बिजनेस है और वो जो अपने क्लाइंट्स को जो भी कमिटमेंट देते हैं समय की, उसे वो समय पर डिलीवर करते हैं, उसे समय पर पूरा भी करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इसी आदत की वजह से उन्हें समाज में एक बहुत अच्छा स्थान मिला हुआ
0: जी,
1: है।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि सत्य की हमेशा विजय होती है, हमेशा सच बोलना चाहिए और हम भी हमेशा कोशिश करते हैं कि सच बोलें, सच के साथ रहें। और एक और मेल आ गई है हमारे पास, उग्रसेन यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कह रहे हैं कि मेरी हमेशा से ये सोच रही है कि किसी को कोई गुमराह होने वाली सलाह मत दो, अगर उनकी मदद करने की पॉसिबिलिटी हो तो जरूर करें और कोशिश करें। बिल्कुल सही आपने कहा यादव जी। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं प्रतिभा, कुछ और जानकारियों के साथ।
1: बिल्कुल, देखिए रश्मि जी, जब हम अपने देश को हम चौतरफा जब अपनी नजर दौड़ाते हैं, हर राज्य हर क्षेत्र में हर जिले में हमें अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कलाएं, अलग अलग परंपराएं देखने को मिलती हैं, जो हमारे देश की एक अनमोल धरोहर है ना। और ऐसी ही आज हम बात करेंगे कला, ऐसी ही एक कला की जो कि हमारे ब्रज क्षेत्र की आत्मा कहलाती है, जो कि है सांची कला।
0: ये कला भारत के ब्रज क्षेत्र, मुख्य रूप से मथुरा और वृंदावन की एक पारंपरिक और अत्यंत प्राचीन कला है प्रतिभा। और इसमें रंग बिरंगे कागजों पर अत्यंत बारीक और जटिल जो डिजाइन है वो उकेरे जाते हैं, स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं।
1: और देखिए स्टेंसिल तो बनाए जाते हैं, लेकिन इनका जो उपयोग है ना, वो दीवारों और पानी पर मनमोहक रंगोली बनाने या आकृतियां उकेरने के लिए किया जाता है। और उस सांझी कला के बारे में अगर हम और बातें करें, तो सबसे खास बात यह है कि ये जो सांझी शब्द है वो हिंदी के संध्या यानी शाम से निकला हुआ है ना। और ये कला जो है शाम के समय में बनाई जाती है, और कहा जाता है कि जो ये वाला समय होता है ना शाम वाला, वो भगवान कृष्ण के ब्रज लौटने का समय होता है, और इसे राधा कृष्ण के प्रेम और उनकी रासलीला का प्रतीक माना जाता है।
0: शाम भी है और श्याम भी है।
1: बिल्कुल।
0: और पुराणों में उल्लेख है कि संध्या के समय जब भगवान श्री कृष्ण गोचरण करके आते थे, तो ब्रज गोपियां उनके स्वागत में फूलों की चित्रकला सजाकर उनका स्वागत करती थी, तभी से ब्रज में ये सांझी कला की शुरुआत हुई।
1: देखिए जैसा कि आपने शुरू में बताया कि स्टेंसिल्स बनाए जाते हैं कैंची से ही काटकर, और सबसे जो खास बात यह है कि जो इसके डिजाइन होते हैं ना, वो बहुत खूबसूरत होते हैं। इसमें मोर, फूल और कृष्ण लीला के जो डिजाइन है वो काटे जाते हैं, और फिर इन स्टेंसिल्स को जमीन पर या पानी की सतह पर रखकर उसमें रंग या सूखे फूल डाले जाते हैं।
0: जी, और जब कागज हटाते हैं ना प्रतिभा, तो एक शानदार चित्र उभर जाता है। और ये मंदिरों में जो सांझी बहुत श्रद्धा के साथ बनाई जाती है, भाई हमें भी ऐसी ही एहसास हो रहा है, ये जो विषय है आज का, मन में श्रद्धा पैदा हो रही है। और ये कला अध्यात्म और हस्तशिल्प का एक अनूठा संगम है, जो आज भी भारत की सांस्कृतिक धरोहर को सहेजे हुए है।

0: राम तेरी गंगा मैली। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी लता मंगेशकर की। और रश्मि जी, कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन, और हमारे साथ हमारे श्रोता भी जुड़े हुए हैं। एक बार हम अपना प्रश्न श्रोताओं को एक बार फिर से बता देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: कि ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी खूबी है जो आपको बेहतर बनाती है, बेहतरीन बनाती है, और आपको हमें मेल करना है fmgoldga@gmail.com पर।
1: जी, एक मेल मेरे पास आ गई है, आप हैं कुमुद वैशाली से। वो कह रही है कि मैं जल्दी हार नहीं मानती, मुश्किल चाहे कितनी भी हो, मैं जब तक रास्ता न मिल जाए मैं कोशिश करती रहती हूँ। वाह, क्या बात है। देखिए, हमारे श्रोता ही हमें सिखाते हैं जिंदगी जीने का तरीका।
0: जी, बिल्कुल। और देखिए, हम एक दूसरे से सीखते ही तो हैं।
1: जी,
0: है ना। और जो ऐसे लोग होते हैं जो जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा बनकर ही आ गया।
1: एक और मेल हमारे पास आई है, लता जी है, वो कह रही है सकारात्मक सोच रखती हूँ, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और आप और भी जानकारियां कहीं लेकर आई हैं प्रतिभा?
0: बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, सरकार ने जो है ना जनहित को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हुई हैं, और जिनका लाभ अनेकों अनेक लाभार्थी उठा भी रहे हैं। और सरकार ने हमारे पशु पालकों का भी ध्यान रखा है, है ना। और उनके ध्यान को रखते हुए, उनके हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कुछ ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिसका लाभ छोटे पशुपालक, महिलाएं सभी वही उठा रहे हैं। और उनमें एक है राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना।
1: क्या बात है, आपने पहले सांझी कला में कृष्ण की बात की और उसके बाद आप गोकुल मिशन में आ गई। आज थोड़ा सा वृंदावनी हो रहा है मन। और भाई, राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो है भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू की गई ये प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो जो देसी गाय है ना, उनका, भैंसों का, नसों का, उनका संरक्षण करना, संवर्धन करना और दुग्ध उत्पादकता को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाना।
0: बिल्कुल। और इसी के तहत जो है ना, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं का उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान और IVF जैसी आधुनिक तकनीक के माध्यम से देसी मवेशियों की नस्लों में सुधार करना है। साथ ही साथ स्वदेशी नस्लों की दूध देने की क्षमता और उत्पादन में वृद्धि करना भी है।
1: तो भाई, जो महिलाएं स्वरोजगार वगैरह की तरफ मुड़ना चाहती हैं, अगर ऐसा कुछ काम करना चाहती हैं, तो भाई उनको जो है पूंजीगत लागत पर 50% तक सब्सिडी मिल जाती है। और मवेशियों के जो वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए विशेष गोकुल ग्राम एकीकृत केंद्र भी स्थापित किए जा रहे हैं।
0: हाँ, बिल्कुल। और देखिए रश्मि जी, ये जो है ना, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहाँ पर किसान उच्च नस्ल के मवेशियों की ऑनलाइन खरीद और बिक्री कर सकते हैं, और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न और कामधेनु जैसे पुरस्कार भी दिए जाते हैं।
1: तो अगर इस सब्सिडी का लाभ उठाना चाहती है कोई महिला या जो भी स्वरोजगार करना चाहते हैं, तो जो नजदीकी पशु चिकित्सा केंद्र है राज्य के, उसके पशु पालन विभाग या कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं।

0: हेमलता और जसपाल सिंह की आवाज में अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी नदिया के पार। और रश्मि जी, एक मैसेज और आया है इदरीस सैफी जी का, वो भी हमारे एक रेगुलर लिसनर हैं और मेल करते हैं। उन्होंने लिखा है कि उनकी जो आदत है वो ये है कि कोशिश करते रहना।
1: हाँ, और शीतल शाह बेंगलोर से जुड़ गई है हमारे साथ। वो कह रही है, जिंदगी के ऊंचे नीचे रास्ते पर मैं गिरी, संभली, चोट खाई, दिल टूटा पर हार नहीं मानी। और अध्यात्म का ज्ञान और गीत संगीत का साथ उनका रहा तो जीवन में उनको वो संभल गई। मैं बता दूं आपको, शीतल जो है बहुत अच्छी कहानीकार है और इनकी कहानियां समय समय पर विभिन्न FM चैनल से प्रसारित होती रहती हैं। विविध भारती में भी इनकी कहानी प्रसारित हो चुकी है और मैं पानीपली की कहानी में भी इनकी कहानियां ले चुकी हूँ। और शीतल जुड़ी हुई है, अच्छा लग रहा है। इसी तरह से जुड़े रहिए शीतल जी और अच्छी अच्छी कहानियां लिखकर श्रोताओं का मनोरंजन करती रहिए। और इसके साथ एक दो श्रोता मेरे साथ और जुड़ गए हैं। आप हैं राघव दिलशाद गार्डन से, वे कह रहे हैं, मेरे अंदर सबसे अच्छी खूबी शायद ये है कि मैं रिश्तों और जिम्मेदारियों को बहुत गंभीरता से लेता हूँ। अपने परिवार और अपने लोगों का साथ मेरे लिए बहुत मायने रखता है और कोशिश करता हूँ मुश्किल समय में मेरे अपने लोगों को ये महसूस हो कि वो अकेले नहीं है।
0: देखिए, ये तो बहुत ही अच्छी आदत है क्योंकि रिश्तों को सहेज कर रखना बहुत जरूरी है और उसमें जो संतुलन है ना वो इन्हीं सब आदतों के चलते ही आता है।
1: और एक और मेरे पास थोड़ा सा मजाकिया सा जवाब आ चुका है। आप सोनीपत से वीरवान जी, वो कह रही है, मेरी खूबी बताऊं भाई, मैं बहुत धैर्यवान हूँ। और आजकल तब जब मेरी पति कहती है बस 5 मिनट में मैं तैयार हो रही हूँ, वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, लोगों की मदद करना बहुत पसंद करता हूँ और मुश्किल समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता हूँ। पर ये हंसमुख होने की आदत आपकी बहुत अच्छी लगी वीरवान जी, बनाए रखिए।
0: बिल्कुल। और रश्मि जी, तो आगे की तरफ कदम बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम में। और आज हम देखिए बात करेंगे कि ऐसी आर्मी की जो सरहदों की रक्षा नहीं करती, वो रक्षा करती है एक पक्षी की।
1: वाह
0: जी हाँ, हरगिला एक पर्यावरण प्रहरी है जिसका जिक्र हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में भी किया है।
1: जी, हरगिला जो है वो असम में पाया जाने वाला दुर्लभ पक्षी है जो पर्यावरण को साफ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक जमाने में इसको माना जाता था कि भाई देखना अच्छा नहीं मानते थे, तो ये होता था गांव वाले जिस पेड़ पर पक्षी का घोंसला होता था ना प्रतिभा, तो वहां के लोग उस पेड़ को ही काट देते थे। लेकिन देखिए कैसी विडंबना थी कि जो व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सफाई में योगदान दे रहा है लोग थोड़ा सा डर जाते थे।
0: और देखिए जो अंधविश्वास और डर होता है ना वो कहीं ना कहीं एक नकारात्मक सोच को जन्म देता है और बड़ी नुकसान भी होता है। और देखिए ऐसे में डॉक्टर पूर्णिमा बर्मन जो कि एक जीव विज्ञानी है, उम्मीद की किरण बनकर आई। जब उन्होंने हरगिला को इस तरह मरते देखा तो उन्होंने लोगों के मन में बसे अंधविश्वास और डर को दूर करने की जिम्मेदारी उठाई और साथ ही साथ गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया और विज्ञान के जरिए उन्हें समझाया कि जो ये हरगिला है वो अंधविश्वास से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, ये तो बल्कि पर्यावरण प्रहरी है। और धीरे धीरे देखिए बदलाव आया
1: और सही तरीके से जो उन्होंने जानकारी दी, उन्होंने इस जो परंपरा जो थी उसको तोड़ दिया और बदला और हरगिला का संरक्षण किया।

0: बंदनी। अभी आपने इस फिल्म से ये गीत सुना, आवाज थी आशा भोंसले की।
1: और प्रतिभा, तुम खूबियों के बारे में पूछ रही थी, तो शीशपाल अकेला जी गाजियाबाद से कह रहे हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ और ना ही मैं कसम कभी खाता हूँ। भाई अच्छी बात है, हमने भी यही सीखा है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। और एक और बड़ा मजेदार सा मेल मुझे मिला है पालम से, हिमांशु जी लिख रहे हैं, वो कहते हैं मेरी सबसे बड़ी खूबी ये है कि मैं हर परिस्थिति में खाने का जुगाड़ कर लेता हूँ।
0: अच्छा
1: जी, परिस्थिति कितनी भी बड़ी हो, परेशानी कितनी भी बड़ी हो, मैं पहले चाय पीता हूँ और फिर सोचता हूँ कि समाधान क्या निकलेगा। और दोस्तों के बीच मेरी यही खासियत है कि मैं माहौल को बिल्कुल हल्का कर देता हूँ। मेरा मानना ये है कि जिंदगी में समस्याएं तो आती रहेंगी, लेकिन अगर मुस्कुराने की आदत बनी रहे तो आधी समस्याएं वैसे ही छोटी लगने लगती है।
0: बिल्कुल, देखिए कितनी अच्छी बात कही है कि बड़े हल्के तरीके से, मतलब बड़े माहौल को हल्का करके वो समस्याओं का हल निकाल लेते हैं और परिस्थिति को जो है उसको ओवरकम कर लेते
1: जी,
0: हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना?
1: और विवेक हमारे साथ गुड़गांव से जुड़े हैं, उन्होंने कहा है कि मेरी खूबी यह है कि मैं गलती होने के बाद भी आत्मविश्वास नहीं खोता। आखिर गलती मेरी हो तो उसे भी समझाने के लिए मेरे पास कम से कम 10 अच्छे बहाने जरूर होते हैं। मतलब बहानेबाज हैं भाई विवेक जी, लेकिन मजाक से अलग। और वो कहती है मैं अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश करता हूँ और मैं लगातार ये कोशिश करता हूँ कि गलतियों को दोहराऊंगा।
0: और देखिए रश्मि जी, जो समय है वो निष्पक्ष है ना। देखिए अब समय निरंतर चलता है और उसने हमें इशारा कर दिया है कि हमारे चलने का हो गया है वक्त।
1: हाँ बिल्कुल,
0: और तो इसी वादे के साथ श्रोताओं से फिर मुलाकात होगी इसी जगह पर इसी समय पर। तो मुझे यानी प्रतिभा को और
1: रश्मि कुकरेती को दीजिए अनुमति।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन।

0: शिक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिड़ला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने पर भारोत्तोलकों को बधाई दी। प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
2: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाने रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। हंगामे के कारण कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा। भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि परीक्षा में अनुचित साधनों पर रोक लगाने के लिए प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची और वी मोहना की पीठ ने प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला है। उधर असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदेव जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से सम्मानित और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉ. APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ. APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 638 अंक बढ़कर 76,698, जबकि निफ्टी 185 अंकों की बढ़त के साथ 23,952 पर पहुंच गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं यानी रिया आप सभी के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज जिस फिल्म के बारे में हम आपसे बात करेंगे उस फिल्म का नाम है संगम। जी हाँ, संगम 1964 में बनी एक भारतीय रोमांटिक संगीतमय ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन, निर्माण और संपादन राज कपूर ने किया था। इसकी पटकथा इंदरराज आनंद ने लिखी थी। इस फिल्म में राज कपूर, वैजंती माला और राजेंद्र कुमार मुख्य भूमिकाओं में हैं। साथ ही इफ्तिखार, राज मेहरा, नाना पालसिकर, ललिता पवार, अचला सचदेव और हरी शिवदासिनी सहायक भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म सुंदर यानी राज कपूर, गोपाल यानी राजेंद्र कुमार और राधा यानी वैजंती माला के बीच लव ट्रायंगल को दर्शाती है। साथ ही फिल्म एक गहरी दोस्ती का प्रतीक है। तो चलिए, बातें तो और भी होंगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे
1: पर दी ऑफर से सावधान
0: RBI कहता है
1: जानकार बनिए सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं 1964 में रिलीज हुई फिल्म संगम बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसने कुल 8 करोड़ की कमाई की जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई और 1960 में रिलीज हुई फिल्म मुगले आजम के बाद उस दशक की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म रही। श्रोताओं संगम पहली भारतीय फिल्म थी जिसकी शूटिंग विदेशों में जैसे लंदन, पेरिस और स्विट्जरलैंड सहित कई स्थानों पर हुई थी। ये उस समय की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी और उस समय तक किसी भी भारतीय फिल्मों के लिए सबसे लंबी अवधि की फिल्म थी, जिसके कारण इसे सिनेमाघरों में 2 विराम यानी इंटरवल के साथ दिखाया गया।

श्रोताओं, संगम फिल्म की संगीत की अगर बात करें तो इसे संगीत शंकर जयकिशन ने दिया था और गाने के बोल शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने लिखे थे। ये 1960 के दशक की सबसे अधिक बिकने वाली हिंदी फिल्म एल्बम रही। इस फिल्म में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में राज कपूर को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में वैजंती माला को फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला। आपको बता दें, राज कपूर की पहली रंगीन फिल्म थी और फिल्म इनकी शानदार और प्रसिद्ध रचना मानी जाती है।

श्रोताओं, बात फिल्म संगम की कहानी की करें तो ये तीन दोस्तों की कहानी है, सुंदर, गोपाल और राधा। बड़े होने पर सुंदर राधा से प्रेम करने लगता है, पर राधा गोपाल को पसंद करती है। जब सुंदर अपने दोस्त गोपाल को अपने प्यार के बारे में बताता है तो गोपाल राधा के प्रति अपनी भावना को मन ही मन दबा देता है। कुछ दिनों बाद सुंदर भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाता है और जाने से पहले गोपाल से वादा लेता है कि कोई उसके और राधा के बीच ना आ सके। कुछ दिनों बाद सुंदर के विमान नष्ट होने की खबर आती है, जिससे सभी मान लेते हैं कि सुंदर की मौत हो चुकी है। इसके बाद गोपाल राधा को अपने दिल की बात बताने के लिए एक लव लेटर लिखता है, जिसे राधा अपने पास छुपा लेती है। दोनों शादी करने के लिए सोचते ही हैं, तब तक सुंदर पूरी तरह सुरक्षित और अच्छे हालत में वापस आ जाता है। सुंदर और राधा की फिर शादी हो जाती है। सब अच्छा चल रहा होता है कि एक दिन एक अननोन लव लेटर सुंदर के हाथ लग जाता है, जिससे वो राधा पर शक करने लगता है। सुंदर व्याकुल हो जाता है, जिसे देखकर गोपाल को कोई और रास्ता नहीं सूझता और वो सुंदर को से बंदूक लेकर खुद को गोली मार लेता है और अंत में राधा और सुंदर वापस एक हो जाते हैं।

श्रोताओं, फिल्म संगम प्रेम, वफादारी, बलिदान और रिश्तों में लिए गए फैसलों के परिणामों जैसे विषयों को दर्शाती है। ये किरदारों द्वारा अपनी जटिल परिस्थितियों से जूझते हुए सामना किए जाने वाले संघर्षों और भावनात्मक उथल-पुथल को चित्रित करती है। अपनी कहानी और किरदारों के कारण फिल्म को साहसिक और अपने समय से बहुत आगे माना गया है।

इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को हैं, अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। खबरों के इस बुलेटिन में मैं अमन देव। पहला चोणवियां खबर, जनतक प्रीख्यावां च अनुचित साधना की रोकथाम बारे सोध बिल 2026 अज लोक सभा विच पेश कर दिता गया है। संसद के दोवां सदनों की कार्रवाई नीट मुद्दे ते विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन दौरान कथित पुलिस वधीकियां के

0: कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गंगा क्षेत्रों में मूसाधार वर्षा का अनुमान। ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता, मनु भाकर को कांस्य पदक। और 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने ये विधेयक सदन में प्रस्तुत किया।
1: मैं लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 में संशोधन करने के लिए लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 प्रस्तुत करने का प्रस्ताव रखता हूँ।
0: विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए, लेकिन हंगामा जारी रहने पर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इसके अलावा मामलों का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित किए जाएंगे, जहां मामलों की रोजाना सुनवाई होगी। वहीं पुलिस में मामला दर्ज होने के 2 महीने के भीतर जांच पूरी करनी होगी। इसके अलावा आरोप पत्र दाखिल होने के बाद 3 महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रावधान है। इस विधेयक का उद्देश्य भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगाने के साथ साथ परीक्षा व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत करना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले देश के भारोत्तोलकों को बधाई दी।
3: भारत की सुश्री मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग की 48 किलोग्राम वर्ग की प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। इस प्रतियोगिता में श्री ऋषिकांत सिंह चनम बम तथा श्री राजा मुत्थु पांडी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता है। मैं सदन की ओर से जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हार्दिक बधाई तथा भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ।
0: प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान अन्य विषय नहीं उठाए जा सकते।
3: मैं कुछ दिनों से माननीय सदस्यों के विहार आचरण को देख रहा हूं। ये सदन की मर्यादाओं के आचरण के अनुरूप नहीं है। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, ऐसे माननीय सदस्यों के खिलाफ मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी जो सदन की मर्यादाओं, परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सदन है, सदन की मर्यादा बनाना रखना आपकी जिम्मेदारी है।
0: राज्यसभा में भी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई का मुद्दा उठाया गया। पहले स्थगन के बाद कार्यवाही शुरू होने पर विपक्ष ने फिर हंगामा जारी रखा। इसके बाद सभापति CP राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
4: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करें। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
0: भाजपा महासचिव और राज्यसभा सांसद तरुण चुघ ने कहा है कि प्रस्तावित विधेयक युवाओं और विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की

0: प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: प्रधानमंत्री जी ने विशेषज्ञों की टास्क फोर्स, कानून, विशेष अदालतें, देश के नौजवानों का भविष्य सुरक्षित हो उसके लिए फैसले लिए हैं और निरंतर भारत आगे बढ़े, भारत के नौजवानों के सपने और संकल्प पूरे हों, प्रधानमंत्री मोदी जी संसाधनों को खड़ा करके, सीटों को बढ़ाकर नए नए अवसर पैदा कर रहे हैं और देश की जेन जी भारत की तरक्की में भागीदार भी बन रही है और लगातार प्रयासरत है।
0: उधर टीएमसी की बागी नेता सयानी घोष ने परीक्षा सुधार से जुड़े विधेयक पर संसद में रचनात्मक बहस की मांग की। जनता दल यूनाइटेड नेता और राज्यसभा सांसद संजय झा ने कहा है कि परीक्षाओं में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल मानवीय हस्तक्षेप कम कर प्रौद्योगिकी के बेहतर उपयोग पर जोर देगा।
2: ह्यूमन इंटरवेंशन कम होना चाहिए। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है ये तो अभी का हो गया, लेकिन परमानेंट ये फुल प्रूफ एग्जाम हो तो जितना टेक्नोलॉजी यूज होगा और ह्यूमन इंटरवेंशन कम होगा उसी से आप फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने डे वन से बच्चों के कंसर्न को एड्रेस किया और ये जो टास्क फोर्स बनाया है, ये टास्क फोर्स आपको जो भी मैकेनिज्म देगा वो फुल प्रूफ एग्जाम की तरफ जाएगी।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई करने का निर्णय लिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि शांतिपूर्ण और वैध विरोध प्रदर्शन संवैधानिक अधिकार है। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे अदालत की कार्यवाही में सहयोग करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अमरीका और ईरान द्वारा सप्ताहांत में सैन्य हमले रोकने के बाद आज वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट देखी गई। दिन के कारोबार में ब्रेंट क्रूड कच्चे तेल की कीमत 6.1% गिरकर 90 अमरीकी डॉलर और 87 सेंट प्रति बैरल पर थी। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 656 अंक बढ़कर 76,716, जबकि निफ्टी 189 अंक के उछाल के साथ 23,956 पर पहुंच गया। सिक्किम सरकार ने राज्य में वन रक्षक पदों की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। कल गंगटोक में कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने कहा कि इसका उद्देश्य सशस्त्र बलों में सेवा पूरी करने के बाद अग्निवीरों को रोजगार के अवसर प्रदान करना है। मौसम विभाग ने बंगाल की खाड़ी पर बने हवा के गहरे दबाव के कारण उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में कल तक मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़ और विदर्भ में भी कल तक अत्यधिक वर्षा हो सकती है। इस बीच ओडिशा के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा हो रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है।
3: उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना डिप्रेशन अब डीप डिप्रेशन में बदल गया है, जिससे उड़ीसा के कई इलाकों में लगातार बारिश हो रही है। जगत सिंहपुर, संबलपुर, भद्रक, जाजपुर, केंद्रापड़ा, कटक, पुरी और खुर्धा जिले में बहुत ज्यादा बारिश की खबर है, जिससे जगह जगह पानी भर गया है और आम जनजीवन पर असर पड़ा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आगे भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है और संवेदनशील इलाकों में अचानक बाढ़ आने की आशंका जताई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकांश इलाकों में बाढ़ का पानी कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और सराईदियो जैसे अधिक प्रभावित जिलों में 109 राहत शिविरों में अब भी 37,000 से अधिक लोग रह रहे हैं। राज्य में बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉ हिमंता बिस्व शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उभर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। उधर नागालैंड में मॉनसून से जुड़ी घटनाओं के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों को वायुसेना सुरक्षित निकाल रही है। वायुसेना ने राज्य के लॉन्गलिंग जिले के नामसांग सर्कल से 42 फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया

0: हैंडल एक्स एट AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी।
1: भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की पुण्यतिथि है। डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे।
0: मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश के रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: डॉक्टर कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान को विकसित करने में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसने जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की निकटतम कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया और भारत को स्पेस क्लब का एक विशेष सदस्य बनाया। पूर्व राष्ट्रपति अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों के विकास व संचालन के लिए भी जिम्मेदार थे। साथ ही उन्होंने कई संस्थानों को एक साथ जोड़कर महत्वपूर्ण तकनीकों में स्वदेशी क्षमता निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई। डॉक्टर कलाम देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों में से एक थे, जिन्हें 30 विश्वविद्यालयों और संस्थानों से मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने का अनूठा सम्मान मिला था। उन्हें प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मभूषण, पद्मविभूषण और सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। डॉक्टर कलाम 25 जुलाई 2002 को भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचाओ में आयोजित ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कांस्य पदक अपने नाम किया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आज नई दिल्ली में शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप से प्रतिभागी देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में खेल अवसंरचना में सुधार तथा खेल सुविधाओं को उन्नत बनाने पर लगातार काम कर रही है।
3: दिल्ली सरकार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज को और बेहतर करने के लिए, स्पोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेस्ट करने के लिए काम कर रही है। मैं आज इस चैंपियनशिप में दिल्ली की ओर से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली आप सबके लिए उन सभी फैसिलिटीज को यहाँ पर जरूर उपलब्ध कराएगी जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं।
0: दिल्ली के खेल मंत्री आशीष सूद ने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों की मेजबानी करना सम्मान की बात है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में मच्छर जनित रोग, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉक्टर अक्षय धारीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331 0481 या 2331444 पर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही बाधित। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा न होने देने से देश में सही संदेश नहीं जाएगा। अमरीका और ईरान के सैन्य हमले रुकने के बाद वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 6% की गिरावट। बंगाल की खाड़ी के ऊपर हवा का गहरा दबाव बनने से ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्रों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान। और ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप निशानेबाजी में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। मनु भाकर को कांस्य पदक। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, शुरू करते हैं हम सभी का मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले लेते हैं ये छोटा सा अंतराल।
1: एक प्रकार से

0: पतंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आप सबका स्वागत है आज के उमंग कार्यक्रम में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी परिवर्तनों से ही बनी है, घबराए नहीं। कुछ परिवर्तन आपको सफलता दिलाएंगे तो कुछ सफल होने के गुण सिखाएंगे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर मदन महल के पीछे अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। लिखते हैं, दिनांक 6/7/2026 को प्रसारित किया गया उमंग प्रोग्राम का श्रोता संवाद मुझे बेहद पसंद आया, जिसमें प्रोफेसर विनोद जी द्वारा परीक्षा के दौरान बच्चों पर होने वाले तनाव को कैसे कम करें इस विषय पर जानकारी दी गई है।
2: ये हमें बेहद पसंद आई और दिनांक 7 जुलाई 2026 से 10 जुलाई 2026 का उमंग प्रोग्राम भी बेहद पसंद आया, जिसमें आपने ये भी जानिए के अंतर्गत पेड़ों के बारे में जानकारी दी। हमें बेहद अच्छी लगी। इतनी अच्छी जानकारी के लिए पूरी उमंग टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राजेश कारिया जी। अगला संदेश हमें मिला है मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर और रतन माला जी का। लिखते हैं,
2: विमलेश जी, अजीत जी, इन दिनों पेड़ों के बारे में हमारे ज्ञान में बहुत वृद्धि हो रही है। बहुत ही शिक्षाप्रद और रोचक जानकारी हमें सुनने को मिल रही है। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति चल रही है। इन दिनों सचमुच मजा आ रहा है। धन्यवाद जी।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल, दीपक पटेल और टेकलाल पटेल जी का। लिखते हैं,
2: उमंग कार्यक्रम हमें बहुत अच्छा लगता है। हम लोग बड़े ध्यान से सुनते हैं। 9 जुलाई दिन गुरुवार को आपने 5000 साल तक जीने वाले पेड़ के बारे में जानकारी दी। ये हमें बहुत अच्छी लगी। इतनी रोचक व ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए धन्यवाद। विमलेश जी और अजीत जी को हमारा नमस्कार।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए। और साथ साथ
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी का। लिखते हैं,
3: जय गुरुदेव, उमंग टीम को जय जोहार, पल पल बंदगी। 29 जून 2026 को उमंग में आदिवासी परिवार की कहानी बुधनी गई है जंगल कार्यक्रम सुनाया, जो हमें बहुत पसंद आया और पर्यावरण को बचाने की सीख भी हमें मिली। आपका उमंग कार्यक्रम स्वर्ग की तरह सुंदर है, सभी सुनने वालों को स्वर्ग की तरह अनुभूति कराता है, जीवन को खुशनुमा बना देता है। विमलेश मैडम जी और अजीत साहेब जी को जय जोहार बंदगी करते हैं। धन्यवाद साहेब
2: जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। कांडला बंदरगाह कच्छ से जगदीश जोहरी, पूजा और पायल कुमारी
3: और गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी का। आप सबको धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। और अब बारी है श्रोताओं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था कि मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था।
2: इसका उत्तर है साथियों, मोबाइल या सेल फोन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर मार्टिन कूपर ने 1973 में किया था।
3: जी, हमारा अगला प्रश्न था जॉन बील मेला कहाँ और कब मनाया जाता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जॉन बील मेला असम के मोरीगांव जिले में हर वर्ष माघ बिहू यानी जनवरी में आयोजित होता है। इस मेले में आज भी वस्तु विनिमय प्रणाली से लेन देन होता है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने पूछा था आपसे कि मोरूंग

0: कहते हैं?
1: इसका उत्तर है मुरुंग नागालैंड का पारंपरिक युवा आवास है जो लकड़ी और बांस से बना होता है। यहाँ युवाओं को संस्कृति, आखेट, कला और युद्ध की शिक्षा दी जाती है।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था श्रोताओं कि बाहा उत्सव में कौन कौन से फूल चढ़ाए जाते हैं।
1: संथाल जनजाति के इस उत्सव में साल यानी सखुआ और महुआ के फूल चढ़ाए जाते हैं।
0: जी, और सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमने पूछा था कैलपोध उत्सव कहाँ और किन के द्वारा मनाया जाता है और कैलपोध शब्द का क्या अर्थ है?
1: इसका उत्तर है साथियों, कैल का मतलब हथियार या उपकरण होता है और पोध का अर्थ होता है उत्सव, यानी हथियारों और उपकरणों का उत्सव। ये कर्नाटक की कोडावा जनजाति द्वारा मनाया जाता है।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए। आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो अब बारी है आज का प्रश्न सुनने की। हमारा आज का प्रश्न है, भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान या पुरस्कार क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा सम्मान क्या है?
0: भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। इसके द्वारा हमारी शैक्षिक गतिविधियों की निरंतर जानकारी आपको मिलती रहेगी। और हाँ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतरण यानी ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो
0: यूट्यूब में जाकर टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपको वहाँ सर्च के विकल्प मिलेंगे, उन्हें फॉलो कीजिए और अपनी मनचाही पाठ्य पुस्तकों को सुनिए।
1: एक और जरूरी सूचना आपको दे दें कि यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों के PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो सीधे किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। सर्च के विकल्प पर जाकर आप यहां अपनी मनचाही पुस्तक डाउनलोड कर सकते हैं।
0: जी, तो श्रोताओं अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो पहला कार्यक्रम आपके लिए हम लेकर आए हैं, उसका शीर्षक है चेतक की वीरता।
1: कक्षा 6 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता की संगीतमय प्रस्तुति है जिसमें हल्दी घाटी के युद्ध में महायोद्धा वीर महाराणा प्रताप के प्रिय घोड़े, चेतक की चपलता, स्वामी भक्ति और वीरता का बखान किया गया है। कविता के द्वारा बच्चों के मन में जीव जगत के प्रति प्रेम और करुणा का भाव भी जागृत करने का प्रयास किया गया है।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चेतक की वीरता। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है अंगुलीमाल।
1: ये कार्यक्रम महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक प्रेरक प्रसंग पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा बुद्ध के मृदु भाव और विनम्रता से किस प्रकार उस समय के दुर्दांत डाकू अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तन हो गया और वो महात्मा बुद्ध का अनुयायी बन गया।
2: एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था। वो बहुत निर्दयी था। वो जंगल से आने जाने वालों को पकड़कर बहुत सताता था।
3: ए, जो कुछ है रख दो यहाँ।
4: मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़।

0: मेरी अंगूठी ले लो।
1: वो उन्हें मार डालता था, वो उनकी अंगुलियों की माला बनाता था, उस माला को गले में पहनता था, इसीलिए लोग उसे अंगुली माल कहते थे। सभी लोग उससे बहुत डरते थे और जंगल में नहीं जाते थे। एक बार महात्मा बुद्ध वहां आ गए। सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में

0: सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया, उन्हें जंगल में जाने से रोका। लोगों ने महात्मा बुद्ध को अंगुलीमाल के बारे में सब कुछ बताया।
1: नाथ,
2: महात्मा,
1: प्रभु,
2: महात्मा,
3: प्रभु, प्रभु, अब जंगल में मत जाएं।
4: वहाँ अंगुलीमाल है।
3: हाँ प्रभु।
4: वो बहुत बड़ा डाकू है।
5: प्रभु, आप वहाँ ना जाएं।
4: ना जाएं।
6: हाँ प्रभु, वो डाकू लोगों को मार देता है।
4: हाँ प्रभु,
3: ना जाएं। खतरा है।
4: ना जाएं प्रभु, ना जाएं।
3: ना जाएं प्रभु।
7: डरने की कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखें।

0: महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए जंगल में चले गए। जब अंगुलीमाल को महात्मा बुद्ध के आने का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया।
1: कौन कौन है वहां?
0: वो गुस्से से भरा महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध ने धैर्यपूर्वक मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
2: स्वागत है बंधु, आपका इस जंगल में परम स्वागत है।
3: अरे मेरा स्वागत।
0: इस प्रकार बिना डरे मुस्कुराकर स्वागत करना अंगुलीमाल के लिए नई बात थी। सब लोग तो उससे डरते थे और उससे घृणा करते थे। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से कहा,
2: भाई गुस्सा छोड़ो और सामने वाले पेड़ से चार पत्ते तो तोड़ लो।
1: हाँ ठीक है।

0: तुमको जहां से तोड़ लाए हो फिर से वहीं लगाओ।
1: ये कैसे हो सकता है? जो पत्ता एक बार पेड़ से टूट गया वो फिर कैसे जुड़ सकता है?
0: तो तुम जानते हो कि जो एक बार टूट गया वो दोबारा जुड़ता नहीं।
1: जी जी महात्मा।
0: तो तुम तोड़ने का काम क्यों करते हो जब तुम फिर से जोड़ नहीं सकते?
1: जी

0: मैं समझ गया प्रभु, मैं समझ गया। क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे।
1: कल्याण हो, आयुष्मान भव।

0: बेल्जियम में एक प्रांत है फ्लैंडर्स। इस प्रांत में एक छोटा सा शांत और सुंदर शहर है रम्स कपेला। 1 सितंबर 1909 को अडोल्फ और मारिया बुल्के के घर में एक बालक का जन्म हुआ। माता पिता ने बड़े प्रेम से उसका नाम रखा कामिल बुल्के।
1: कामिल का अर्थ होता है पूजा की वेदी और बुल्के का अर्थ है सुगंधित पुष्प। और सच में जैसा कि नाम था, उन्होंने अपने नाम को 100% चरितार्थ किया। बचपन से ही उनकी गहरी रुचि अध्यात्म और साहित्य में दिखाई देने लगी थी। माता पिता अक्सर उनके बारे में बातचीत किया करते।
2: मारिया, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कामिल का अध्यात्म की ओर कुछ ज्यादा ही झुकाव है?
1: मुझे तो अब ये लगने लगा है कि यदि ऐसा ही रहा तो एक दिन वो चर्च में सन्यासी बन जाएगा।
2: मुझे भी ऐसा ही लगता है।
1: स्कूली शिक्षा के बाद उन्होंने ल्यूवेन विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में बीएससी डिग्री प्राप्त की और 1930 में स्पष्ट दिव्य अनुभूति प्राप्त होने पर शिक्षक और पुरोहित बनाने वाले जेसुइट समाज में शामिल हो गए।
0: 6 नवंबर 1935 को 17 दिनों की समुद्री यात्रा के बाद वो बंबई आ गए, जो अब मुंबई है। उन्होंने भारत को अपनी कर्मस्थली के रूप में चुना।
1: उन्होंने भारत भूमि को नमन किया। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की भूमि है। दरअसल अपनी पढ़ने की आदत के कारण बेल्जियम में ही उन्होंने तुलसीदास जी की कई चौपाइयों का जर्मन अनुवाद पढ़ा था।
0: उनमें से एक चौपाई से वो बहुत प्रभावित हुए। चौपाई थी, धन्य जन्मु जग तीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु।
1: अर्थात उस बेटे का जीवन धन्य है जिसका यश और कीर्ति सुनकर पिता आनंदित होता है। इन पंक्तियों से वे इतने प्रभावित हुए कि कवि तुलसीदास जी के अनन्य भक्त बन गए। उन्होंने लिखा था,
3: विश्व साहित्य में माता और पुत्र के संबंधों की बहुत सारी चर्चा मिल जाएगी, लेकिन पिता पुत्र के संबंधों की ऐसी व्याख्या और ऐसा ऊंचा आदर्श मुझे सिर्फ भक्त कवि तुलसीदास जी की रामायण में ही मिला।
1: भारत आने पर उन्होंने जो देखा उसने उनके संपूर्ण जीवन के चिंतन और दर्शन को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने अपने भारत आगमन के समय को याद करते हुए अपनी एक पुस्तक एक ईसाई की आस्था राम कथा और हिंदी में लिखा है,
3: 1935 में मैं जब भारत पहुंचा, मुझे ये देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि रास्ते में सभी संकेत पट्टों पर सूचनाएं और स्थानों के नाम अंग्रेजी में थे। मैंने ये जाना कि अनेक शिक्षित लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं से अनजान थे और इंग्लिश में बोलना गर्व की बात समझते थे। मैंने विचार किया कि मैं हिंदी भाषा में सिद्धता को प्राप्त करने का पूरा प्रयास करूंगा। हिंदी स्थानीय और जनजातीय भाषाओं में जो ज्ञान प्रणाली और सीखने की सामग्री अंतर्निहित है, उनके संरक्षण और पुनरुत्थान से ही हमारा विकास संभव है।
1: मुंबई से वे दार्जिलिंग गए और अल्प प्रवास के बाद अंततः गुमला आ गए, जो आज के झारखंड राज्य में है। उन्होंने गुमला के सेंट इग्नेसियस विद्यालय में 3 साल तक गणित और भौतिकी पढ़ाया और हिंदी की कक्षा में अपने ही विद्यार्थियों को सहपाठी बनाकर हिंदी सीखने लगे।

अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बात समझ गया। वो उनकी शरण में आ गया और उनका शिष्य बन गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम अंगुलीमाल। आशा है कि आपको यह कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है फादर डॉक्टर कामिल बुल्के। यह कार्यक्रम हिंदी साहित्य के प्रकांड विद्वान डॉक्टर कामिल बुल्के के जीवन और उनके द्वारा हिंदी साहित्य को दिए गए योगदान के बारे में, विशेषकर तुलसी साहित्य में उनके द्वारा लिखे गए शोध की विस्तार से जानकारी देता है।
1: आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
2: यूरोप के पश्चिमी भाग में एक छोटा लेकिन खूबसूरत देश है बेल्जियम।

0: गणित पढ़ाने के बाद वे हिंदी की कक्षा में सबसे पीछे बैठ जाते थे और पूरी तन्मयता से हिंदी सीखते थे।
1: हिंदी के मूल रूप को समझने के लिए धीरे धीरे उन्होंने ब्रजभाषा और अवधी भी सीखी।
0: सन 1938 में झारखंड के ही एक शहर हजारीबाग गए और सेंट कोलंबस कॉलेज में पंडित बद्रीदत्त शास्त्री के निर्देशन में संस्कृत और स्वामी तुलसीदास की दो प्रमुख रचनाओं रामचरितमानस और विनय पत्रिका का गहन अध्ययन करने लगे।
1: फिर उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्वतंत्र परीक्षार्थी के रूप में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और उच्च अध्ययन के अभिप्राय से वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय पहुंचे और वहां के हिंदी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा से मिले।
2: आइए आइए फादर बुल्के, आपका स्वागत है।
3: जी डॉक्टर धीरेंद्र, आपके स्वागत से मैं अनुग्रहित और कृतार्थ हुआ। मेरी हार्दिक अभिलाषा है कि मैं हिंदी में अपना स्नातकोत्तर अध्ययन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से करूं।
2: ठीक है, लेकिन उम्मीदवार की कुछ परीक्षा तो लेनी ही होगी।
3: जी मैं प्रस्तुत हूं।
2: तो फादर, मैं चाहता हूं कि आप तुलसीदास जी की विनय पत्रिका के दो पदों की इसी समय सप्रसंग व्याख्या करें। ये लीजिए।
3: जी अवश्य।
0: फादर कामिल बुल्के ने कुछ ही देर में उन पदों की लिखित व्याख्या कर दी।
4: ओह अद्भुत। तो फादर, अब विलंब कैसा? आप इसी समय से विश्वविद्यालय के हिंदी संकाय में अध्ययन के लिए आमंत्रित हैं।
3: धन्यवाद डॉक्टर धीरेंद्र, ये मेरा सौभाग्य होगा।
4: जी।
0: स्नातकोत्तर अध्ययन के बाद फादर कामिल बुल्के ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा की प्रेरणा से डॉक्टर माता प्रसाद के निरीक्षण में शोध कार्य किया।
1: इससे जुड़ी एक बड़ी रोचक घटना है। फादर कामिल बुल्के चाहते थे कि उनका शोध हिंदी में प्रकाशित हो, लेकिन उन दिनों सभी शोध अंग्रेजी में ही हुआ करते थे।
0: उन दिनों इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा थे। फादर कामिल बुल्के ने इसके लिए विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने का समय मांगा।
3: क्या मैं अंदर आ सकता हूँ कुलपति महोदय?
5: आइए आइए फादर बुल्के। मुझे बताया गया है कि राम कथा पर आपका शोध बहुत अच्छा बन पड़ा है। आपने इसमें बहुत से नए आयाम भी जोड़े हैं।
3: जी कुलपति महोदय, मैं अपने शोध पत्र को प्रकाशित करने के बारे में ही आपसे विमर्श करने आया हूँ।
5: जी जी,
3: मैं चाहता हूँ कि मुझे अपने शोध पत्र को देवनागरी में प्रकाशित करने की अनुमति दी जाए।
5: मगर फादर, आप जानते हैं कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार शोध पत्र सिर्फ अंग्रेजी में ही प्रकाशित किए जा सकते हैं।
3: कुलपति महोदय, जैसा कि आपको ज्ञात है, मेरा शोध का विषय ही राम कथा की उत्पत्ति और विकास है।
5: जी,
3: मैं दृढ़ता से विश्वास करता हूं राम कथा और तुलसी की आत्मा के विराट सौंदर्य के दर्शन केवल और केवल उनकी मातृभाषा में ही हो सकते हैं।
5: जी, मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं फादर बुल्के।
3: तो मैं आपकी इस प्रतिक्रिया को एक सकारात्मक उत्तर के रूप में देखने की अपेक्षा करता हूं।
5: जी,
1: उन्होंने राम और राम कथा के बारे में अपने शोध ग्रंथ में लिखा है।
3: देखिए, राम वाल्मीकि कथा के मिथकीय पात्र नहीं हैं, बल्कि वे तो इतिहास पुरुष हैं, जिनकी व्याप्ति सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में है। रामायण सिर्फ धार्मिक साहित्य ही नहीं है बल्कि जीवन जीने के तरीके का दस्तावेज है।
0: उनके शोध की विशेषता ये है

0: कि उन्होंने रामायण से संबंधित किसी भी विषय को छोड़ा नहीं है। हिंदी के अतिरिक्त उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बांग्ला, कश्मीरी, सिंहली आदि भाषाओं के साहित्य में भी उपलब्ध राम कथा की गहन छानबीन की है।
1: उन्होंने तेलुगु में रचित श्री रंगनाथ रामायण और महर्षि कम्बन द्वारा तमिल में रचित कम्ब रामायण को भी संदर्भित किया। चार भागों में विभक्त 600 पृष्ठों में छपी उनकी ये थीसिस एक प्रतिनिधि शोध ग्रंथ साबित हुई और भारत सहित पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में प्रकाशित हुई। इसके बाद सारी दुनिया फादर बुल्के को जानने लगी।
0: अब जहां भी राम कथा होती, फादर कामिल बुल्के का नाम वक्ताओं की सूची में सबसे ऊपर होता। उन्होंने देश भर में राम कथा पर व्याख्यान दिए। वे कहा करते थे,
2: सब हैं नचावत राम गोसाई, मोहे नचावत तुलसी गोसाई।
0: फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से सन 1949 में राम कथा पर डी फिल करने के बाद तुलसीदास के रामचरितमानस का और गहन अध्ययन किया। उन्होंने राम कथा की उत्पत्ति और विकास पर पीएचडी की।
1: डॉक्टर धीरेंद्र वर्मा कहते हैं,
3: इस शोध ग्रंथ को वास्तव में राम कथा संबंधी समस्त सामग्री का विश्वकोश कहा जा सकता है। हिंदी क्या किसी भी यूरोपीय अथवा भारतीय भाषा में इस प्रकार का कोई दूसरा अध्ययन उपलब्ध नहीं है।
0: सन 1950 में उन्हें बहुत सम्मान पूर्वक भारत की नागरिकता प्रदान की गई। इसी वर्ष वे रांची के सेंट जेवियर कॉलेज के हिंदी और संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बना दिए गए और आजीवन उसी पद पर रहे। वे हमेशा अपने विद्यार्थियों को उनकी अपनी भाषा में ही बातचीत करने हेतु प्रोत्साहित करते थे।
1: सबसे मशहूर अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश लिखने वाले फादर कामिल बुल्के ही हैं। 30 वर्षों की उनकी हिंदी साधना का जीवंत दस्तावेज उनका शब्दकोश माना जाता है।
0: उन्होंने इसमें 40,000 शब्द जोड़े और उसे प्रशासनिक, वैज्ञानिक और तकनीकी दृष्टि से अद्यतन करते रहे। फादर कामिल बुल्के बहुभाषाविद थे। वो अपनी मातृभाषा फ्लेमिश के अतिरिक्त अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत और हिंदी पर भी संपूर्ण अधिकार रखते थे।
4: The rent is NCERT na CIET specific sponsored program umang yani netpin medium wave dono FM ke jo akashwani kargilin waspatu sud sumchenuk kasata akashwani dehli kana pitore tu sud ghasakhpa urdu service program undrile bet rile la dang pasat

0: मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। 3:05 हुए हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: अब आप अर्जुमंद अली खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने टेक्नोलॉजी के माहिर नंदन निलेकानी की क्यादत में आला अख्तियाराती टास्क फोर्स तश्कील दिए जाने का ऐलान किया है। हुकूमत ने लोकसभा में सरकारी इम्तिहानात में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीम बिल 2026 पेश किया। अमरीका और ईरान की जानिब से फौजी कार्रवाइयां रोकने के बाद आलमी सतह पर खाम तेल की कीमतों में 5% की गिरावट दर्ज की गई है। ISSF आलमी कप में खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की निशानेबाज ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता है, मनु भाकर को कांसे का तमगा मिला और 22वीं दौलत मुश्तरका टेबल टेनिस चैंपियनशिप नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इम्तिहानात की इस्लाहात के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन निलेकानी की क्यादत में एक आला अख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक

आरजू फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया था शंकर जयकिशन ने। और सामने लीजिए, आप सुनिए फागुन फिल्म का नगमा आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में, नगमा निगार कमर जलालाबादी, मौसीकार ओपी नैयर।

फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना। फिर ये तड़प कैसी, इतना तो बता जाना।

अंजलि यानी अदाकारा शिल्पा शेट्टी एक अमीर बाप की बेटी है और देव यानी अदाकार सुनील शेट्टी एक गरीब लड़का। देव अपने वालिद के बारे में कुछ नहीं जानता। अंजलि और देव एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं।

और फिर एक दिन देव अंजलि को अपनी माँ से मिलवाने लेकर जाता है। वहाँ अंजलि को पता चलता है देव का बचपन बहुत तकलीफ में बीता था। उसकी माँ ने अंजलि को सारी हकीकत बताकर उससे वादा किया कि वो हमेशा देव का साथ निभाएगी। अंजलि को देव के बारे में सुनकर बहुत दुख होता है। इधर वो जैसे ही घर लौटती है, उसके वालिद उसे बताते हैं वो दिल्ली में उसका रिश्ता तय करके आए हैं। ये खबर सुनकर वो घबरा जाती है और वो उसी वक्त अपने वालिद से कहती है, मैं ये शादी नहीं कर सकती, मैंने किसी और से वादा किया है। ये कहकर वो अपनी और देव की मोहब्बत के बारे में बता देती है। अंजलि की जिद के आगे इसके वालिद को झुकना पड़ता है और वो उसी वक्त अंजलि से कहते हैं कि वो देव से मिलना चाहते हैं। उधर अंजलि देव को घर बुलाती है अपने वालिद से मिलवाने के लिए, लेकिन देव की गरीबी देखकर उसके वालिद

उसको बेइज्जत करते हैं, जिससे देव का दिल टूट जाता है। लेकिन जाते वक्त वो अंजलि से कहता है, वादा करो कि तुम मुझसे मिलने जरूर आओगी। उस वक्त अंजलि उसको समझा कर घर भेज देती है और अब वो तय करती है कि अपने घर को छोड़कर वो देव के पास हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जाने लगती है, उसके वालिद कहते हैं, ये जो इज्जत हमने बरसों की कड़ी मेहनत के बाद बनाई है, हमें अपनी जान से ज्यादा प्यारी है। तुम चाहो तो उसे अपने पैरों तले कुचल कर जा सकती हो, लेकिन जाने से पहले मुझे मार कर जाओ। मैंने तुम्हें हमेशा बेटा समझा, लेकिन मैं भूल गया था, बेटी कभी बेटा नहीं बन सकती। उस वक्त अपने वालिद का दर्द उनके कहे अल्फाज से अंजलि एकदम से टूट जाती है। उसे एहसास होता है वो उनका दिल दुखाकर जिस रास्ते पर जा रही है, वहां वो कभी खुश नहीं रह पाएगी। और उसी पल अंजलि देव से जाकर कहती है, मैं अपने वालिदैन का दिल नहीं तोड़ सकती, मैं वही शादी करूंगी जहां वो चाहते हैं। देव उसकी ये बात सुनकर उससे याद दिलाता है, उसने उसकी मां से वादा किया था कि वो कभी उसका साथ नहीं छोड़ेगी। तब अंजलि उससे कहती है, मैंने भी अपने वालिदैन से वादा किया है। अंजलि के इस इनकार को सुनकर देव उससे कहता है, अब वो इसके बिना जी नहीं पाएगा। मगर अंजलि उसकी बात सुनकर उससे कहती है, एक रिश्ता खत्म हो जाने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती। ये कहकर अंजलि देव की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाती है। ये खबर सुनकर देव की मां मर जाती है। उधर अंजलि और राम यानी अदाकार अक्षय कुमार की शादी हो जाती है।

और भाई बहन सब राम की दौलत को हड़पने के लिए साजिश रच रहे हैं। वो इस बात को राम से कहती है तो राम उसकी बात पर यकीन नहीं करता कि उसके घर वाले उसे झूठी मोहब्बत का दिखावा करते हैं, क्योंकि राम एक फरमाबरदार लड़का था। इधर अंजलि के साथ राम की माँ भी बहुत बदसलूकी करने लगती है, लेकिन राम हर बार उसको समझा देता है। तंग आकर एक दिन अंजलि अपने दिल की बात उससे बता देती है कि वो ये शादी करना नहीं चाहती थी। तब राम उससे वादा करता है, हम दोनों दोस्तों की तरह रहेंगे।

वक्त बीतने के साथ अंजलि के दिल में राम की इज्जत बढ़ने लगती है। एक दिन राम को अचानक काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता है। उसके जाने के बाद राम का सौतेला भाई बाबी यानी परमीत सेठी अंजलि के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि सरेआम उसको बेइज्जत कर देती है। जब राम को ये बात पता चलती है तो वो अपने घर वालों के सामने साफ लफ्जों में कहता है, मैं आपकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन ये बात नहीं मान सकता कि अंजलि बदकिरदार है। राम के ये लफ्ज अंजलि के दिल पर इतना गहरा असर करते हैं कि वो अपना माजी भुलाकर उससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगती है।

कुछ दिनों के बाद राम और अंजलि की शादी की पार्टी होती है। उसी पार्टी में देव अपनी दोस्त के हाथ अंजलि को बहुत कीमती तोहफा भिजवाता है। इस तोहफे को देखकर वो दोनों हैरान थे, लेकिन इस बात से अभी तक अनजान थे कि देव की गिनती बहुत रईस आदमी में होती है। और फिर एक दिन देव अपने घर एक पार्टी रखता है, उसमें राम और अंजलि को भी बुलाता है। अंजलि जब इस पार्टी में आती है तो वहां देव की बिजनेस पार्टनर शीतल यानी अदाकारा महिमा चौधरी से देव के बारे में पता चलता है।

उस पार्टी में देव अंजलि से मिलने की ख्वाहिश जाहिर करता है। मजबूर होकर अंजलि उससे मिलने जाती है। तब देव उसे कहता है वो आज तक उसे नहीं भुला सका है। उससे मिन्नत करता है कि वो उसके पास लौट आए, लेकिन अंजलि साफ इनकार कर देती है। बस यही बात देव को नागवार गुजरती है और वो उसके देवर के साथ मिलकर राम के बिजनेस में पार्टनर बन जाता है। नतीजा ये होता है कि एक दिन राम के सारे कारोबार पर बाबी का कब्जा हो जाता है और उधर उसकी हवेली नीलाम हो जाती है। उसको खरीदने वाला देव होता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी राम खामोश रहता है। वो अंजलि को लेकर अपने ड्राइवर के यहाँ रहने लगता है। उसको बेघर देखकर देव बहुत खुश था।

अंजलि के वालिद को जब ये बात मालूम पड़ती है तो वो अंजलि से मिलने आते हैं। तो उसके घर में देव को देखकर वो अब समझ जाते हैं राम को घर से बेघर करने वाला देव है। गुस्से में आकर वो देव को बुरा भला कहते हैं और अब अंजलि से मिलकर उसे देव की सारी बात बता देते हैं। उन दोनों की बातें राम सुन लेता है, लेकिन वो अंजलि से नाराज नहीं होता है, बल्कि समझाते हुए कहता है, जो बीत गया वो कल था, अब हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। इधर देव हर पल अंजलि के इंतजार में था कि कब वो उसके पास लौटे।

लेकिन अंजलि दिल ही दिल में कुछ और तय कर चुकी थी। वो अब देव से आखिरी बार ये कहने के लिए जाती है, तुम सिर्फ मेरे दोस्त थे। उससे इल्तिजा करती है, मेरा घर बसने दो, हमारी जिंदगी से दूर चले जाओ। उसकी ये बात सुनकर देव उसे कहता है, मैं हार गया, ये कैसे हो सकता है? कोई इतनी मोहब्बत करे और उसे ठोकरे और दर्द के सिवा कुछ न मिले, मैं कैसे मान लूं? मैं जीत कर भी हार गया, राम हार कर भी जीत गया। उसकी ये बातें राम सुन लेता है और वो उसी वक्त देव से कहता है, कौन कहता है तुम हार गए? दो इंसानों के बीच दुश्मनी नहीं, दोस्ती भी हो सकती है। तकदीर ने एक पल में तुम्हारे सारे ख्वाब तोड़ दिए, तो मैं कैसे तुम्हें अपना दुश्मन मान लूं? आज राम की इन बातों से देव को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो समझ चुका था, जो भी हुआ वो तकदीर का लिखा था। अपनी गलती का एहसास होते ही अब वो शीतल के साथ वापस लंदन जाने का फैसला करता है। देव शीतल के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करता है और इधर राम अंजलि के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगता है।

जब प्रोग्राम में सामान्य भी आप सुन रहे थे फिल्म धड़कन की कहानी और नगमे, जिसे तरतीब दिया था मोहतरमा इमराना शाहीन ने। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है फिल्मी नगमे। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी की आवाज में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मौसीकी सजाए नगमा फिल्म है आन मिलो सजना।

काशी फिल्म का नगमा आप सुन रहे थे यासिर देसाई की आवाज में। नगमा निगार थे शब्बीर अहमद, मौसीकार धीरज कुमार। और अब सुनिए आशिकी टू फिल्म का नगमा अंकित तिवारी की आवाज में, जिसे मौसीकी सजाया है अंकित तिवारी ने, नगमा निगार संदीप नाथ।

और प्रोग्राम की आखिरी पेशकश मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सूरज और चांद फिल्म का नगमा, नगमा निगार आनंद बख्शी, मौसीकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

जाएगा। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर इब्राहिम अजीजी ने कहा कि ईरान पर किसी भी हमले की कीमत चुकानी होगी और उन्हें यूक्रेन से कहा कि जवाबी कार्रवाई का सामना करें। ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराकची की जानिब से यूक्रेन पर बहरी जहाज पर हमले का इल्जाम लगाए जाने के बाद उनकी रायजनी सामने आई है, जिसमें एक मल्ला हलाक और एक दीगर जख्मी हो गया। सोशल मीडिया के एक पोस्ट पर जनाब इराकची ने यूक्रेन के सदर जेलेंस्की पर इल्जाम लगाया कि उन्होंने हमले का हुक्म दिया था। इससे पहले ईरान ने तेहरान में यूक्रेन के कारगुजार नाजिम उल उमूर को इस वाक़े पर बाजाब्ता एहतियात दर्ज करने के लिए तलब किया था। खत्म हफ्ते में अमेरिका और ईरान की जानिब से एक दूसरे पर फौजी हमले रोके जाने के पेश नज़र आलमी खाम तेल की कीमतों में आज तकरीबन 6% की कमी आई। ब्रेंट खाम तेल की आलमी इशारिया 6.1% गिर कर 90 अमरीकी डॉलर 87 सेंट फी बैरल हो गया। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल में 5.8% से ज्यादा की कमी आई और ये 84 अमरीकी डॉलर और 14 सेंट फी बैरल हो गया। ईरान की जानिब से इशारा दिए जाने के बाद कि जब तक अमरीका भी फौजी कार्रवाई रोके रखता है तब तक वो मजीद हमले नहीं करेगा, जिससे इस बात की उम्मीद पैदा हो गई कि इस महाज आरई का एक सिफारती हल निकल सकता है। इसके पेश नज़र खाम तेल की कीमत में कमी आई है। फ्रांस और स्पेन के जंगलों में बड़े पैमाने पर आग लगने से तकरीबन 3 लाख लोगों को जंगलाती इलाकों से निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है। इधर आग बुझाने वाला अमला तेजी से फैलने वाली आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ है। फ्रांस में तकरीबन 2,20,000 लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया जा चुका है, जबकि आग के शोले तारीखी शहर बॉर्डोएक्स के नहवा की तरफ बढ़ रहे हैं। भयानक आग से एटलांटिक साहिल पर कैफ्रीज जजीरे नुमा तबाह हुआ है और आग शहर के तकरीबन 15 किलोमीटर अंतर तक फैल गई है। ब्रोडेक्स के मेयर थॉमस कैंजेव ने बताया कि फिलहाल शहर से लोगों को निकालने का कोई मंसूबा नहीं, लेकिन हुक्काम सूरत हाल पर करीबी निगाह रखे हुए हैं। फ्रांस के वजीर खारजा वजीर दाखिला लॉरेंट नूज ने कहा है कि अगर आग काबू से बाहर है और ब्रोडेक्स के शहरी इलाके की तरफ बढ़ रही है, उन्होंने सूरतहाल को इंतहाई गैर साजगार बताया। रात में पुलिस मार्स प्राइम और सीएस कस्बों में घर घर गई और उसने एहतियात के तौर पर वहां रहने वालों को बचाया। पड़ोसी मुल्क स्पेन में 75,000 से ज्यादा लोगों को निकालकर महफूज मकाम पर पहुंचाया गया है, जबकि 30,000 लोगों को घरों के अंदर रहने का हुक्म दिया गया है। स्पेन के वजीर आजम पेट्रो सांचेज ने अविला सूबे में आग से मुतासर इलाकों का दौरा किया, जबकि मैड्रिड और टेलीडो के साथ साथ 3 बस्ती सूबे मुतासर हुए। उधर हंगामी तौर पर आग बुझाने वाला अमला आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इम्तहानात की असलाहत के लिए टेक्नोलॉजी के मारूफ माहिर नंदन नीलकानी की क़यादत में एक आला इख्तियाराती टास्क फोर्स की तश्कील का ऐलान किया है। एक वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स इम्तहानात की असलाहत पर गौर करेगी और इसकी रिपोर्ट की बुनियाद पर जल्द अज जल्द मुमकिन इकदाम किए जाएंगे ताकि आइंदा इम्तहानात को काबिल भरोसा बनाया जा सके। ये टास्क फोर्स साबिक IB डायरेक्टर तपन डिगा, इसरो के सबक चेयरमैन एस सोमनाथ, IIT चेन्नई के डायरेक्टर वी कामा कोडी पर मुश्तमिल होगी। इनके अलावा तालीम की सबक सेक्रेटरी अनीता कारवाल और लॉजिस्टिक के माहिर अमृत लाल मीना भी इस टास्क फोर्स का हिस्सा होंगे। आज भारत सबक सदर जमहूरिया और नामवर साइंदा भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बरसी है। भारत के मिसाइल मैन के नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम दुनिया के अजीम तरीन असातिज़ा में शुमार किए जाते हैं। उन्होंने भारत के दिफाई खलाई तहकीक के फरोग में इंतहाई अहम रोल अदा किया। 15 अक्टूबर सन 1931 को तमिलनाडु के शहर रामेश्वरम में पैदा होने वाले डॉक्टर अब्दुल कलाम ने मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग महारत हासिल की। उन्होंने भारत के पहले घरेलू सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV की तैयारी में प्रोजेक्ट डायरेक्टर की हैसियत से नुमाया किरदार अदा किया, जिसने जुलाई सन 1980 में रोनी सैटेलाइट को कामयाबी के साथ सतह जमीन से करीब मदार में पहुंचाया और भारत को खलाई मुल्कों के खसूसी कलम में शामिल कराया। साबिक सदर जमहूरी ने अग्नि और पृथ्वी मिजाइलों की तैयारी और उन्हें अमली तौर पर मौसर बनाने में भी अहम रोल अदा किया। उन्होंने मुख्तलिफ इदारों के बाहमी तआवुन के जरिए अहम टेक्नोलॉजीज में मुल्क की खुद किफालत को मुस्तहकम किया। डॉक्टर अब्दुल कलाम के मुमताज साइंसदान में शुमार होते हैं। 29

0: यूनिवर्सिटियों और तालीमी इदारों की जानब से एजाजी डायरेक्टरेट की डिग्रियां अता की गईं। उन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मुल्क के आला तरीन शहरी एजाज भारत रत्न से भी नवाजा गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें सदर बने। एक छोटे से शहर के लड़के से मुल्क के सदर बनने तक का उनका सफर हमेशा नौजवानों के लिए हौसला अफजा मिसाले रहा है। उनकी बरसी हमें उनकी अवदार कामयाबी और फलाफानी विरसे की याद दिलाती है। ग्लासगो में दौलत मुश्तरका खेलकूद मुकाबले में भारत की वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने मुल्क के लिए सोने का तमगा जीता। उन्होंने खवातीन के 48 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग जुमरे में कुल 190 किलोग्राम वजन उठाकर रिकॉर्ड कायम किया। पैरा पावर लिफ्टर जानदू कुमार ने टूर्नामेंट के इफ्तिताही दिन मर्दों के हैवी वेट मुकाबले में कांसे का तमगा जीतकर मुल्क को पहला तमगा दिलाया। शूटिंग में आज चीन के हांगशू में ISSF आलमी कप के खवातीन के 25 मीटर पिस्टल मुकाबले में भारत की ईशा सिंह ने सोने का तमगा जीता। आखिर में इस बुलेटिन की खास खास खबरें एक बार फिर। मुश्तरका अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में जारी कानून साज इसमें के इंतखाबात के दौरान धांधली के इल्जाम आयद किए हैं। ईरान की पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज ने बोहरा कैप्सिम ने एक ईरानी कमर्शल बहरी जहाज पर हमले के लिए यूक्रेन को खबरदार किया है। खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।
1: यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शाम के 5 बजे चाहते हैं यहाँ हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात अब इख्तिताम पजीर होती हैं। शाम में 9:15 पर अपनी तीसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।
2: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस की नशरियात समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामीन, अब से लेकर रात 10 बजे तक अब आप हमारी नशरियात मीडियम वेव 684 किलोहर्ट्ज़, मीडियम वेव 1584 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 MHz और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर पर भी समाप्त कर सकते हैं। हमारे अगले ऐलान का इंतज़ार कीजिए। السلام علیکم میڈیم ویو ترکیا نگی شش بی نش بریکل ہرٹس میڈیم ویو سونچک نقب گیا نگی شش بی نش بریکل ہرٹس اف ایم ریا شیر ایچک میگ ہرٹس دونا موبائل ایپ نیوز آن ایرکا دیو آکاش وانی کرگلین دیرین پروچک پت بی پروگرام ان کریں گا بلا وزیر نپروپان ینتی خدمت لالب سود پروگرام ین کھنسا خدمت لنگا چی جون اسلام پو پروت مچن سونچک دیرین ایجاک پو چندرال جولائی لزیگی شو سبدون وقت پو فیتو گتو سودغا نامرچک سونچک کستا پروگرامی گوزک پیکا پروچک دویا پروگرام صداقت دی پروگرامی رقصه که این مزاد سحما قرآن تلاوت نا ترجمه حجت الاسلام شیخ عبدالکریمی کنم.
3: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم.

0: Durante Spurgi xabarın lan yönünü bin milyon mu evden la pemi kediyor kaşfane ikerkilin. Vasfutu satıgana mersum çu sonsu kasıta. Doktor Sajad Hüseyin dermonoloji sikana deluxe skorlatı sek proçuget niyan mazat.
1: Skin disease sir bana bas nal langa jena skin bare se ngati ngati yan khan la yu ha wa chuet ki ngati skin po yan ngati ka tiga pas pas etan diu
2: bakshe se
1: pas pas skin po ngati body sab se largest organ ni na ngati human body asta na kato largest organ dar chin ngati
2: bakshe se
1: di body skin khas function yu ti body body kya ga ga ni na yan chin chin chin chin ngati ngati body internal system po stung se ja chin fiste Then national toxins shit and harmful shit shit and what internal body system po se ja se ja yes pa pa de chin chin yang yang shin shin jo body temperature po regulate bachin yani 7 gram maur environment temperature esa rika 7 ka to ja temperature kem ho na mati body the skin pe zare heat loss chachin bo taki mati go temperature po kam ja chin sine surat la loss loss to rechin yang atan khyak na ka to ja temperature po body reserve bachin heat ko nang mati Yang sama sih cint ki nanti body nanti kan di electrolyte sama sodium potassium dua ni balance jadi cint. Jadi sama aja gue skin ini function pun des. Selain baki dusra nanti nanti mood skin ini nak nanti nanti appearance sih ya, khusyuk sih ya, appearance po main pun bersih nanti di skin pun bersih. But then nanti cint. Dua nanti skin disease sih barang nanti zat nanti skin disease mana mau cint ya nanti zat nanti. Gang nanti general मेजर कैटेगरी में आता है तो जेनेटिक डिजीज से यहां स्किन बीमारी का दिखा चेक जैसे कि दैन मत इक्थियोसिस दर चिन यानी इक्थियोसिस दर बना मति दीर्घय पसवा बिल्कुल डर लो चिन दैन स्केल लो चिन या ये खतरे का अगर स्केल रियो बना
2: तो जेनेटिक हो जाए
1: जेनेटिक हो चिन दे बीमारी इक्थियोसिस क्या कि स्किन पे बिल्कुल ड्राई दो ना ये स्केल वाला को पसवा फंटेशन से देख स्केल दन चिन दो मिनट में आम जेनेटिक डिजीज मगर रेयर हो चिन जेनेटिक आम हो चिन खचे खचे
2: खचे खचे
1: आम आम स्टाना बिटल डिजीज चिन मतस एम पिटागोस रे हो चिन गम आते आम स्कते हम शुआ जरे दे मतस हम सगा बिन फिस आ खास कर ने छुसर बिन दोल कोरे वो ने शुआ तो जो दोन छुआ दो इन एम बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज बस दिस स्किन डिजीज पे चिन रे मतस ना
2: अच्छा
1: दे वाच चिक हो चिन आम हाइजीन मतस ठीक बस सफाई खास सफाई मार मजक ना दे दे सना They have a bacterial infection to some of them. This should serve being said.

0: 비컴 마송민족 양쿠리 펴고 사메샤 대아제르바차츠 키 나티 데시에니 나티 무르기 무스타빌 포코랑 나티 나자바누니 라가요 제르바차츠 और हमेशा दे पागाम पो प्रोचु पचा चु कि अगर गातांगा सूची इरादा मजबूत ना मेहनत ना दुना मेहनत पो अगर सच्चा यो न कतुन दुना गाता मका गा मकाम चिकिन न कतुन गाता मकसद अगर गाता मकसद चिक लस भी गाता मकसद चिक न कतुन ओदो बुलन न कतुन कभी भी गाता गाती मंजिल पो यनी गाती मकाम पो दूर में जरे जरवा छाचो लजुपिका जना दुआना उम्मीद नंबो Matez Doctor APJ Abdul Kalami Piakula Khiraji Aqidat Pejbet Duna Matez Kuri Piagi Zindagi Kana Duna Kuri Piagi Dosh Bu Hamesha Matez Nati Fila Inspiration Chik Chok Yan Dijak Bu Kuri Piag Pesri Wafati Jak Zare Matez Malak Huma Micha Tzu Balki Khores Bas Pe Mehnat Duna Dutoz Azim Shakhsiyat Chigi गाउस गसे गतिर गेस्ते ते रिया चामचिक मेहनत बसेत और खुरी एलो मिस्ट्रोली का गतिर गेस्ते हिंदुस्तान ने मिंग भी चितंग उदुन इतु बसे दिलीसी जपो मल्ला खोमा छाचो
1: कसता निस्पेरा दने कजर से दन सपो त्रिसुल लिपचुगे
2: दिस रियाला प्रोग्राम तंसे दे प्रोग्राम ने गचा यों संग चा मौका तंग की दुनी के दिस स्पेरा तंग मी दन गती दरे सबसे अहम यो तंग की गता द क्लाइमेट चेंज द एनवायरमेंट गती माहौल वाला संबत तंग मी दुनी के दिस प्रोग्राम जक्से यूनिका सग हगो तंग मना लेकिन दे मदुक जु तो मचा सा एंता बहुत बहुत दिस दरे गता बिल्कुल यो गता साइंस ना नेगेटिव इंपैक्ट दे ता नेगेटिव इंपैक्ट पर गता खिमो तो मतो जे क्योंकि गति इंसान गति गता सगी एक्टिविटी सुन मना खिमो सुन लेकिन खिमो सुन गति जरूरत पे खिमो सुन गता माने कि गता देश आप पिक गता छि बस मी पॉपुलेशन बड़े जन छना का तो गता देश हिसाब गता एक्टिविटी सा खिमो बिन खेस
3: बिल्कुल
2: दरे हर ना गाड़ी सुन सुन ले पोल्यूशन पे माने खिमो छ जु छना का तो गति एनवायरमेंट का काफी इफेक्ट ऑन एडवर्स द एनवायरमेंट इफेक्ट बस गति त माहौल पे जकलो शामिल जु गता दु नजर कि जो एनवायरमेंट का एडवर्स इफेक्ट हुआ दो आखिरी का यों चाहिए इफेक्ट में इंसान खुली गांव चंगा लोग सोचा अतः दिस हम बताऊं मैं जो दियाज बस चंगा ती दी माहौल पु गता गिरजा काफी यों मत हमारे यों से दरेक तो सबसे अहम गिरजा आती क्लाइमेट चेंज है साइंस में जब सबसे पहला क्लाइमेट चेंज का तो इफेक्ट काफी हो चंगा ता समंदर का इफेक्ट हो चंगा गति साफ छी का यों गति सबसे अहम पु जंगा ती वेदर चेंज सीजनल चेंज जंगा ती स्नास ना गता वका ची कर गुनो मत ची कसबियर मत पिन वका ची कर पी दो मत पिन दरे देन गता योर लुक्स थो जंगा ता मिसाल के तौर पर थो गता कुछ दो तीन साल से गाता रुगुन ला डोंमो काफी लुसन खा मन कम यों तदे बार अकस गाता उल्टा हलता ने गातो रे अपना छरपे टाइम पे गाता छरपा यों मिंदो कंबो लुसन दुख चामा लक्सुप से काफी असर छेन दु दिचिक ने मैं बिल्कुल स्ट्रिंग जितब से मैं बिल्कुल तमाम सब्जी वब्जी गामा गाते किसान सा गाते ने गातो कोई सब्जी मन काफी मन सो नुकसान सो दु पिंचा ची कना क्योंकि दिचिक गाता नमजे गुरचास बसे गति माहौल या मेट पी गाति स्ट्रिंग गातो जला लास बोले गातो तास किया तो गाज गाति ने सके तदियुस बसे गाता खतरा इफेक्ट दो गाति मन मौसम पुचे छेन दु मिसाल के अगस्त चानु खयों दो जों संगति सुरु साइड ला तमाम लक्सुक्स का चामा लक्सुक्स का मता स्पीड लांच दिचिक 10 साल पे निस थों से देखा देखा गति मीमांग सोला संबा तमा रोशिन तिंगा ते चिब कमी बेंदो गति ची कमी लसो तो गति ची बस तो कि ची बस गता स्पीड ला सर चिक खयों से चुली मिंदो सा खयों से तमाम गमा तबा सो बिल्कुल माने दिचिक जमींदार सा अगर का तो माने आमदनी माने गेल देखा आमदनी में खों योत में खों में बिल्कुल 80% बखों लॉस सो लक्सुक्स शख्स से दोना गति फसल सा नॉर्मल आता मखो मेहनत बस जैसे किसान साथ मेहनत बस होती है देखा आता दी गुरजाज बस आता काफी नुकसान हो जो अब चीज हरने का तो सबसे पहला आता सा अंदर ही छू नमकीन हो मत दे नमकीन पर दे हैबिटेट पलता से देखो ना जानवर का तो दो ना जान आता वाटर ओशनिक करंट सा होचे ओशनिक करंट सा आता छू डेंस खिमो न का देन छवा खिमो न सा टियो पर आता खिमो पर का तो दे करंट पर बरकरार लोशन तो आती शिप सा फिला गाम तमाम आता चाम चिक मरीन चीज सा दे सा डुल खान सा चाहे जानदार चीज डुल बच्चे है नतस बेजान चीज सा नतस यहां सा चुल बता दो ने फायदा है वाटर करंट्स पर काफी अब दे आती चीज गति गिरजा माना का तो दर जैसे ग्लोबल वार्मिंग सबसे छोट गिरजा क्लाइमेट पे अनुगाता अब दो यों माना दोस्त चीज है दोस्त गति साफ छू गंगा जूस है समंदर है समंदरी एक नगाता सा तहपो बड़ा है माने बेचारे का तो नियमो लोग खान यूल सकना तबा सोच पहला अच्छी कच्ची पूरा स्टोरेज दे माने चीर डाला स्टोरेज दूसरा अंगाता दे अनु देख करंट पुचाम चीज छू गता फ्रेश चेसर पर हाँ बेशक समंदरी छुई साल्टी में कम छाचिन कम छाना लेकिन नुकसान आयो जुगाता चाहे देगा था वाटर करंट पर सही बल धन कम धन चीन वाटर करंट क्योंकि डेंसिटी कम छाने का तो तीसरा चीज गता दे अनु जानवर दे हैबिटेट पो दे आदत पो सोसो खो अचानक के तो चेंज हो मना खो मुश्किल से खो कुन हैबिटेट चेंज करना तो खचिक न मना खत्म छे खचिक स्पीशीज पो कम छे नो इधर रूरल डेवलपमेंट ना म्युनिसिपल कमिटीज गता गाड़ी जक्स डस्टबिन जक्स दे सहूलियत दो क्योंकि मैं नस नस ना गता सख्सुक मना कीमत हो मत पिनो दिसु काना दर अल्हम्दुलिल्लाह काफी कम सोसो नस लेकिन फिर भी

0: Durante el noche en el programa en el 20 millón de personas también que dio acaso en el cargo en los patos otro
1: निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन का प्रावधान करता है। विधेयक पेश किए जाने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने नीट मुद्दे पर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई पर चर्चा की मांग करते हुए हंगामा किया। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि परीक्षा सुधार की दिशा में ये विधेयक पहला महत्वपूर्ण कदम है और इस पर व्यापक चर्चा होनी चाहिए।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है।
1: राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। जब सदन दोपहर 3 बजे तीसरी बार स्थगित होने के बाद फिर शुरू हुआ तो उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने नारेबाजी शुरू कर दी। श्री हरिवंश ने सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा में बाधा डालने के लिए विपक्ष की आलोचना की है।
3: देश में जो एग्जामिनेशन होने का जो प्रक्रिया आज तक हमने देखा है, उसको मजबूती से जो रिफॉर्म्स लाया है, इस पे चर्चा होना ये सबसे प्राथमिकता होना चाहिए। मुद्दे को भटकाने के लिए और मुद्दे चेंज करने के लिए कोई कोशिश ना करे। इस वक्त स्टूडेंट का वेलफेयर, स्टूडेंट का फ्यूचर और स्टूडेंट का इंटरेस्ट, ये हम सबका प्राथमिकता होना चाहिए।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाली विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य को प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के नेशनल हेराल्ड धन शोधन मामले में उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार करने के आदेश को चुनौती दी गई है। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर को निर्धारित की है। भारत की ईशा सिंह ने आज चीन के हांगचो में आयोजित आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप में

0: प्रिंसिपल पीएमशीरी स्कूल जवाहर नवोदया विद्यालय खुम्बतंग कारगिल के मौसला इलाके के मुताबिक पांचवी जमात में पढ़ रहे तालिब इल्म जिनकी तारीख पैदाइश 1 मई 2015 से लेकर 31/7/2017 के बीच तक हो उनके लिए छठी जमात में दाखिला लेने के लिए जेएनवी सिलेक्शन टेस्ट 2027 के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है। वालिदैन ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने के लिए navodaya.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। मजीद तफसीलात के लिए प्रिंसिपल पीएमशीरी स्कूल जेएनवी खुम्बतंग कारगिल के ऑफिस से राबिता कायम करें।
1: रंगी बिजनेस उन लस्के तंगमिफिया लेंचिक आकाशवाणी रुख्स यंती चोलन उन लोकल इन या फायुली थोकाइन आकाशवाणी स्तंचाइन कस्टमर उन सपिले पीस कप्स मांगमो धरने अंतिस नंग या दफ्तर या हटी का युग से नंग बांग यंचाइन आकाशवाणी गा केंद्र चिकी का एडवर्टाइजमेंट बुकिंग आकाशवाणी लोकसो चैनल उनका एडवर्टाइजमेंट तंचाओ समो दोना रिंग इन से होत बुकिंग बेफिया कॉल बाजात 8700014241 का।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर दफ्तर या
4: मीडियम वेव दोनों एफएम के दिया आकाशवाणी करगिलिन वस्पत सूत्रों के मर्च आवासों से कसता शीनेस कहते हैं उस तक खरीक पर चुके इतनी मज़ेद

0: अच्छा,
1: बख्शीश।
0: 8 या 9 दिन या 5 स्किल डेवलपमेंट रहेछन्। स्किल डेवलपमेंट जैसे टेक्निकल ट्रेनिङ, एजुकेसन, वोकेसनल ट्रेनिङ मिनला सबै लेप्छु छ, ताकि
1: बख्शीश
0: खोज खुन्ती रोजगार पो खुन्तेस खुन्ती हिसाब
1: जहाँ ये
0: का
1: लक्ष्य से हिसाब
0: लक्ष्य
1: से कहा जो
0: सर्टिफिकेट
1: यहाँ
0: क्या
1: गवर्नमेंट
0: खा
1: के डिपेंड में
0: डिपेंड
1: दुपा
0: मालुक पर थोबे छ
1: तब
0: ना
1: तो
0: दु
1: आजू कस
0: स्कीम पे आन दुआ अंची चिक इंक्लूड हो देना हाजिर ना।
1: स्किल कस
0: नेक्स्ट जो है ना क्रेडिट सपोर्ट रहेछन्। जैसे क्रेडिट सपोर्ट मतलब इन नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन दर्शन यार, जैसे कि ओदे थ्रू कहीं ना कहीं लोन्स थोपचिन, फाइनेंशियल असिस्टेंस रहते हैं, जैसे
1: बख्शीश
0: इक्तिसादी
1: पेने
0: मदद
1: वेने
0: पेने
1: घोषणा
0: वेने
1: था था
0: घोषणा,
1: जो
0: ओदे थ्रू लोन लेने ना आते संगति छोटा मोटा स्किल या इंटरप्रेनरशिप
1: बिजनेस ही तो शिक्षा
0: बिजनेस
1: स्टूल
0: हिसाब
1: लंग
0: से
1: यान
0: स्टूल
1: में पे
0: भी
1: है जो कस
0: म्यांमार दोनों दिस स्कीम पर इंक्लूड है ना
1: कस
0: जना।
1: बख्शीश
0: यहाँ चीची है ना गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और जम सेंट्रल गवर्नमेंट यो जॉब्स हैं, यो दिया स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हो माइनॉरिटीज अदून ज़्यादा से ज़्यादा अदून अनुक जैसे कि बढ़ाई भी कोशिश बच्चा दे माइनॉरिटी आने, जैसे जैन, मुस्लिम, पारसी, बुद्धिस्ट दुनिया ना ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स हैं खोई तैदाद पर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाई बुक
1: तना कस बकर सब तने
0: दिन।
1: इतना लदिया स्परा जी जैसे कि उर्दू लैंग्वेज दे रहा जो
0: बिल्कुल
1: छाना उर्दू लैंग्वेज इंगा ते स्परा ताना तने यरे साल मोल्स की उर्दू लैंग्वेज इंगा ता दिया नुक माइनॉरिटी सी मुस्लिम उल्ला प्रमोट बजर दो जो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: छा दरंग आता अति खतला दा खंगा ते स्परा ताना सना लंग आतम जम्मू कश्मीर नाम बहुत पिन दे तने अति रियासती जबान पुकारंग उर्दू यत पिन है जो
0: बिल्कुल
1: छा
0: बख्शीश।
1: दसन आता यूटी यूनियन टेरिटरी दन रिया पुना यरे गा 2000 चलते कि दसन आता हिंदी का ज्यादा
0: फोकस
1: फोकस छ था जो दरंग आता असन हिंदी शोबो में पिन दरंग आता शुन ले हिंदी शोबो कल्स
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: दिया चोसला आता माना डिपार्टमेंट सगा नंग माना आता मंगमो उर्दू कुले आता स्टोरेन छ सोरे छाना एक जोस्ता जिक ची का आता तना का तो आता दर यूनियन टेरिटरी छाना हिंदी आता माना खाचान सों तन एंग हॉस्पिटल आता माइनॉरिटी यो माना दी 15 पॉइंट
0: उर्दू
1: ऐसा भी को उर्दू आता जोर
0: जरूर
1: बारो साजो
0: प्रमोट बार
1: छा दिया गैरस गा तो शलते कि आती यूटी लद्दाख गवर्नमेंट इस आती दी दिन दालता से उर्दू लैंग्वेज पु चम चिंग आता अहमियत तंग मरवा शे तो दुगा चो वाला स्केट तंग मरवा शे देश को लकस
0: बिल्कुल सज्जद साहब, यहाँ जन्ना
1: बख्शीस
0: उर्दू लैंग्वेज पो वन ऑफ द कोर लैंग्वेज सीखना था हिंदुस्तान में नहीं बात,
1: बिल्कुल
0: और नो डाउट कि हिंदी एक ऑफिशियल लैंग्वेज इन
1: लैंग्वेज इनका
0: छाना मस्ट अति गवर्नमेंट ला कोशिश दु पोषण की दी लैंग्वेज पर पढ़लरली बढ़ाई भी, जैसे पढ़लरली बढ़ाई मजे भी मतलब पे इनकी हिंदियाँ इंटीग्रेट वैसे ज्ञान लखों में कोशिश बचा, साथ ही साथ उर्दू डिनाई में बच्चे जर बना हर लैंग्वेज एक इक्वल
1: और
0: इंपॉर्टेंस
1: बिल्कुल
0: बच्चन
1: पूरी अहमियत
0: बराबर
1: चाहिए था जो
0: पूरी अहमियत चो दिया
1: कस
0: ना बताओ। अब नाता दुआ बताओ कि उर्दू सामसिक रोल उत्पिन अंगाती आज़ादी दौरान आनोगे, इवन हिंदियाँ रोल उत्पिन पर
1: बिल्कुल
0: उर्दू में ना ज़्यादा रोल ओदे टाइम पर सामसिक न्यूज़पेपर पब्लिश छात पिन
1: और
0: या
1: हाँ
0: दे
1: जो कस
0: अलावा सामसिक दूनी रोल लुसे नाता फाइनली आज़ादी थोप पिन छाना दून
1: कस
0: नाता जित मर्जित पर कहीं ना कहीं कोशिश बचा कि हिंदी साथ साथ उर्दू लैंग्वेज पंग यम्बो यम्बो बढ़ाई बोक, ऐसा
1: बिल्कुल
0: नहीं है कि मतलब मना उर्दू फ़ारसी हिंदी से ले दर्शाओ छाना लैंग्वेज कोई भी लैंग्वेज ना कम न समझ दे, मतलब आप
1: कस
0: उर्दू भी जानते हो लेकिन हिंदी आया ना आशे से इंग्लिश आया ना आशे ना यदि फिलहाल फायदा इन छाना
1: बख्शीस
0: गवर्नमेंट इस कोशिश लो सोशन की पर्लरली दी लैंग्वेज उनका मा इक्वल इंपॉर्टेंस ना से बढ़ाई
1: स्टूल
0: भी
1: चाहे जो
0: कोशिश बचा, और स्कूल ना लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस बसे दी खास तौर से उर्दू और हिंदी रिप्रेजेंटेशन पो बढ़ाई बचा।
1: नंबर बच्चा
0: बिल्कुल
1: जो कस
0: बख्शीश
1: थेरी मुबाकर साहब ताने यार इस गाते से 15 पॉइंट्स पे रहता हूँ
0: जी
1: जो
0: जी बिल्कुल
1: तना कौन इधर लिविंग कंडीशन ये गाते इस गास वाला मिसाल के तौर पर दैट्स ओल्ड यार इस किस नाला मदरसा एजुकेशन इस पे रहतो
0: बिल्कुल
1: या इकोनॉमिकली लोन तंग मत सोचे दैट्स ओल्ड ताना नंखामे स्कोर लगा तो शेदो या गा तो सी नंखामे गवर्नमेंट इस इमदाद ची बचन सु दिन स्कोर अंका सा
0: बाशी सज्जा सभी ना जरना आदि 15 पॉइंट्स में यहाँ चीज़ को देना रूरल हाउसिंग स्कीम्स जैसे रूरल
1: कसला
0: हाउसिंग स्कीम्स बनना, जैसे आता सगा पता हो PMAY जैसे प्राइम मिनिस्टर आवाज योजना
1: अच्छा
0: जरे
1: दें पेने तो था जो
0: बिल्कुल दें
1: कसा
0: लोग ना
1: बिल्कुल
0: सिख पाया ना पेने
1: नास्ते के
0: दांचें
1: पेने उम्र दे
0: खास तौर
1: कस
0: से दिया लोग दी स्कीम पर माइनॉरिटीज सिविलाइन छाना ओदे थ्रू यारा पेने दांचें, और दिया लोग यारा रूरल हाउसिंग स्कीम से थ्रू खास तौर से यारा नास्तिक पे फिला पार्टिकुलर पेने दांचें छाना दी स्कीम से निकलना फायदा लेने की कोशिश
1: कोशिश
0: बचा।
1: बचाए जो कस
0: यहाँ चीज यहाँ स्लम एरिया डेवलपमेंट जरिए जैसे गा जगह ना स्लम हो, जैसे आती फॉर एग्जांपल स्लम एरिया जर बना जैसे झोंपड़ी एरिया हो,
1: अच्छा तंबू अंबू
0: तम्बू
1: चोला
0: अम्बू
1: सुनसे
0: चोल
1: दो था
0: हाँ
1: जो
0: दुख्सू
1: मिस
0: दे
1: अब
0: एरिया
1: कस
0: सुन, जैसे रोड साइड सैनिटेशन दोनों यहाँ कमी हो एरिया सुना नो खास तौर से गा ने आनो स्लम एरिया सुना नो रोड मेट सैनिटेशन मेट या ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज मेट या फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में छाना दून गांव में आते ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट भी कोशिश बचा,
1: कोशिश
0: और
1: बचाए
0: दून
1: जो
0: गांव में यहाँ दिस स्कीम से थ्रू फायदा तो बचा ना दून गांव में कहीं ना कहीं कोशिश बसे दिस स्कीम उन्हें करना फायदा लेने में कोशिश बचा बख्शिश।
1: कसो

0: हिंदू मुस्लिम जरे हालांकि अति हमारा जो मतलब अति प्यारा भारत दुस उस देश है जहाँ पे पूरा पूरी तरह कम्युनल हारमोनी और जहाँ पे
1: बिल्कुल
0: आता पूरा आपस में बेचारगी ने मुदुक पछा ना दियो स्ट्रेंथ एंड भी कोशिश बचा और दू मेन पॉइंट इन दी 15 पॉइंट्स में मतलब दू ज़्यादा से ज़्यादा आतेस दी कम्युनल हारमोनी यानी अति भाईचारेगी आपस में योद ना था खतरनाक हिंदुस्तान जैसे देश पे अनुक माना बिल्कुल ना पता हो कि नो डाउट एक कॉन्स्टिट्यूशनल देश है और
1: देश
0: हम
1: इनका
0: अति दी प्यारा भारत पर उस देश इन जहाँ पे आता पूरी तरह से एक भाईचारेगी नंबो और छम से दुख पच्छा ना दू एक मेन पॉइंट चेंज छा ना दू ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेंथन भी यानी मजबूत
1: मजबूत
0: भी
1: भी कोशिश
0: कोशिश
1: बचा है
0: बचा
1: जो
0: दे
1: कस
0: अलावा सम से कम्युनल वायलेंस खची यों छिन दे फॉर एग्जांपल वायलेंस क्रिएट भी कोशिश बचिन ओदों ने खिलाफ ना सख्त से सख्त स्ट्रिक्ट और लीगल
1: कार्रवाई बचा है
0: एक्शन
1: जो
0: और
1: कस
0: कार्रवाई बस दे ऑफेंडर्स ने खिलाफ ना लीगल एक्शन भी कोशिश भी बचा और दू यंग पॉइंट चीन दो लगाते हैं इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन दर्शन यहाँ
1: कस
0: जरना यहाँ चीज जैसे कि सम से विक्टिम्स हो रॉयड विक्टिम्स हो अच्छा रहा जैसे कि खाची फैमिली खत्म
1: और
0: सोचे
1: दे
0: हो
1: जिंशा विंशा
0: जिंशा
1: सत्ता
0: विंशा
1: ना
0: छत सना
1: सो
0: या
1: शी सो फो
0: बिल्कुल
1: गजो
0: बिल्कुल
1: कस
0: या फोगेत या और दे फैमिली सुन लगा कहीं ना कहीं आते हैं रिलीफ तांचा रिहेबिलेट बचा या अदुन यन लखों में कोशिश बचा दुन गामा यारा दी पॉइंट्स पता सो जो कि खास तौर से नती देश को आगे बढ़ाई भी कोशिश है और दूनी
1: कस
0: करना आते कहीं ना कहीं फायदा लेने में कोशिश बचा
1: बख्शीश बाकर सच्चे मो यार इस फेसबुक पर समझता ना ना देंगे तंग दक्षिण यार इस मॉल्स की प्रोमाचिक ना तंग स्पेरा नोट पिंजरे तना ना तंग देंगे ग्राउंड लेवल का ना तंग छने का तो दरिंग ना तंग सिक्की में दी 15 पॉइंट पे ना खचिक ना तंग थों उन्हें जो दरिंग ना ती करगिल ना ती जा पूरा लद्दाख इस पेरा तना का तो ना तंग ले करगिल इसके ज्यादा होगा तंग बुद्धिस्ट ना मुस्लिम है छना बुद्धिस्ट ना मुस्लिम इसका ना तंग माइनोरिटी से हूँ मत छना दी ना ती लद्दाख ना तंग जैसे दे पीएमएवाई जैसे यार जैसे चले यहाँ चीज खचिक मद्रासा एजुकेशन उर्दू लैंग्वेज जरे या उर्दू सो चीज़ खचिंग आता थोन दुख
0: बिल्कुल
1: लेकिन चीज़ खचिंग दक्षण आता कमी पेशी दुख छा दी यार ग्राउंड लेवल का इम्प्लीमेंटेशन भी मिंगना ग्राउंड लेवल का दिया नुक गत ऑक्सी दिया नु लाज बेजर चो दिया ग्राउंड लेवल का दी दक्षण दी 15 पॉइंट पी गत ऑक्सी लाशिक ढूलें दो देश कोला
0: अच्छा ना यहाँ सज्जत साहब ना एक अचीवमेंट टाइप ना ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन थो में कोशिश हैं लोग जैसे कि फॉर एग्जांपल ज़्यादा से ज़्यादा स्कॉलरशिप का ना मीस फायदा ले लें
1: बिल्कुल
0: लोग और दी संख्या ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज भी कोशिश बचा
1: कस
0: दे अलावा सामसे माइनॉरिटी स्टूडेंट्स हो फॉर एग्जाम्पल स्कूल कॉलेज हों तो उन्होंने रोल पर इम्प्रूवमेंट हों और फर्दर इम्प्रूव भी कोशिश बचा
1: बख्शीस
0: दे अलावा चाम से अपॉर्चुनिटीज ना था थो स्किल ही थ्रू फॉर एग्जांपल जैसे रंग पहला जिसकी स्किल का तो योतना रंग रंग फिलहाल लस साल बे जरूरत छ मैंने रहा लस थो भी कोशिश छ छिन जाना
1: बिल्कुल
0: और दो चीज़ पर बढ़ाई छिन और दो मजीद बढ़ाई भी कोशिश बचा दे अलावा चाम से के माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं और दोनों चाम से इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है और दोनों का काफ़ी हद तक इम्प्रूव सोंस थोन दुख बख्शिश
1: कस
0: जरा जने दे अलावा जैसे नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लोन से मदद का काफ़ी हद तक इंटरप्रेनरशिप पो या छोटे छोटे बिजनेस उन आगे बढ़ाई भी गाँव दी इम्प्लीमेंटेशन उन ग्राउंड का काफ़ी हद
1: समझा
0: तक
1: जो
0: थोन
1: कस
0: बख्शिश
1: चाहे दाना दक्षिण दिया नुक दी लासन गामेन उस स्टेट गवर्नमेंट रोल होती है ना या सेंटर गवर्नमेंट रोल होती है ना या दिया नुक आता सगे लखथु दी कहे होता या दिया नुक फैसे संग अलग मिसाल दक्षिण मिनिस्ट्री गाते एजुकेशन ही लूं पे आता ना मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होता जो
0: बिल्कुल
1: या दा चला मिसाल गाता मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यत और सोस ला ग मिनिस्ट्रीज दी 15 पॉइंट पुंगाता डुले आगे छनो या दोना ग डिपार्टमेंट उन ग डिस्ट्रिक्ट उन दियांग लोग इंक्लूड होत की जिला संसद दोन लेखेर में मीना
0: बाशे सज्जा सवेरा हाजिर ना दी इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म दर्शिंदुला
1: कस
0: इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जब ने दी 15 पॉइंट्स पो गा गा डिपार्टमेंट या
1: डिपार्टमेंट इज
0: बॉडी
1: कस
0: निज नते कसमी
1: स्टूलचा
0: ऑर्गेनाइजेशन पो
1: जिंदर खान
0: जो
1: पहजो
0: इन मैकेनिज्म उन इंजर नगर तो दिया यारा आता तो चिन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स दोनों आता सगा पता हो दे थ्रू सम स्कॉलरशिप नाती थ्रू सगा थोबे स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड आना नो चिन दे अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन ना बैंक वैंक सगा थ्रू ना आता लोन थोबे दोस्ता चा दे अलावा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मदद का सम से ना दे माइनॉरिटी से थ्रू आगे बढ़े अच्छा ना ड्यू ड्यून इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म जिन खासतौर से
1: कस
0: माइनॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी माइनॉरिटी अफेयर्स स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन
1: कस
0: बख्शिश
1: سری مبقر صاحب تنا یارس دیانو گاتی ان کانو لفسپا بس ملس کی گاز اوکسی دیانو گاتا 15 پوائنٹ پیانو تین دیو درے تنا گاتا وقت بمن مامنگ مالو سجو گاتا منافی کشت شنا مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ زرے گاتا تا دیانو گاتا زیر بس ہاجو شنا دی مولانا آزاد نیشنل فیلوشپ پچین یان دی کنا گاتس گاز ولا فرونیس یا

0: जेनेटिक्स कॉर्पस से पास जस्ट पास
1: जस्ट पास हां थोड़ा सा मतलब है ना कम रिकोशिश चांस पे कम
0: रिकोशिश मेरिट अन लास्ट ले लो
1: सदा मेरिटेरियस पे ला ज्यादा मतलब चांस शत पर मिल जाते हैं
0: रात छाना दिया उन गाता जरूरत पे कि नेट ही का सोचे यूजीसी नेट का तो एग्जाम ता
1: ना
0: बस ध्यान उस गला सिकोर क्यों चाहता कि को मनाफियान
1: का जो आराम से तो बेट माना बिल्कुल से जैसा दू दू इन पैसा जैसा बात क्योंकि डरे डरे ची सुन जर बना पॉपुलेशन पे बड़े छे हिसाब का फ्री में फ्री तादाद पहुंच ज्यादा छे ना और दिस स्कोर पे डिपेंड छे नुक छाना दिस स्कोर पर गला रिगो ना या इजीली फॉल छे नु पे आपको उस मिल ही जाता है दे अलावा एवरनेस आता तो कमिल उसे छाना दी
0: सोच है पाना माना पता मैं शाश
1: पता मैं शाश सगज ने दी संबंध सुखी मतलब ज्यादा से ज्यादा गस कोशिश वैसे जेआरएफ क्लियर बे ताकि गा 37 से 42 हजार रुपए मंथली स्टेप
0: यंग मनाफ जरन
1: चीज मनाफ जरन बिल्कुल दिन माना खास एवरनेस ओमन दो छाना एवरनेस कमी दे तीसरा यहाँ फंड रिलेटेड कंसर्न आलू बात कभी कबार यहाँ पेनी माना गोरे थप चाहे या थप में थप चाहे एक सैलरी में थप चाहे लेकिन ऐसा दक्षिण ने छमा बिंदु पाया मतलब ऑलरेडी आपको मतलब विद इन मंथली या ना पेनी
0: मको मांगमो गोरनल जांगिस
1: जांगिस बिल्कुल बिल्कुल यों चा छाना दे अलावा रीजनल इम्बैलेंस हम लोग सुनो बेनिफिशियरी सुन ला मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल कभी कभार यंग चीज सुन से यंग चीज है छाना दी दिन एक चैलेंज इन पाया जो कि आता आ दिया थोन पा बिल्कुल
0: छाना बकर साहब यार देश पे फेसबुक से मोल सिंह खान लकी गोस लाइस मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप अनुक अति दिगन फन खेलन में गन चेज इंजरे छाना एरस नथिंग एंड खानन सुपे फेसबुक पर से मोल बकर साहब छाना देश पर आता प्रातन पीएम 15 पॉइंट्स फॉर वेलफेयर ऑफ माइनॉरिटीज दे अन ऑफिस असंगत मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप पुचिन या अति दिगन गतो फन खेलन में गन चेज इंजरे छाना बकर साहब एरस प्रोग्राम इस संग से कंग अति करगिली मीमांस खास तौर पर गति यंग दना जवान हा बुथा बमो सबक जर खानुल्ला या दोना गा सूचिक दक्षण सिलन योतंग या खोस एक कम्पिटेटिव दिन दाचे हजू एक एग्जाम का तो तैयारी बन होता या बाकी खोस खुरी दुनिया रिसर्च ना सिलचा ना दोनों बारंग खोस मेहनत बन होतंग या खुद उन लच्छे कोशिश बन होतंग दी तालीम नशे से लूँ प्यानुक चाना यारस गा तो सीखो मैसेज चितंगत पैगाम चिगे फ्रेंड चितंगत कि रंग मिथ्यांग नुक गतोला यारगेस क्यों में मिलना तरक्की क्यों में मिलना ची बार को शायद इंद्री देश को लगा सा
1: अच्छा ना सजात सब दी प्रोग्राम यंग खाने प्रून गांव गान ला एक सपना हो चुका रहा कि गांस हायर स्टडीज परस्यू बुक गांस रिसर्च ने इनोवेशन बुक गांस बड़े बड़े कंपिटिटिव एग्जाम्स लाइक IAS रे या दे अलावा सपना हो चिन हर किसी का मतलब यहाँ ना सपना हो चिन कि ना हेयर स्टडीज बस हैं गला से गला जॉब हासिल बुक बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम जी जो मत ध्यान इकोनॉमी है ना पेनी मैंने इशू सबसे बड़ा जैसे बना आजकल ना तो कोचिंग से फीस उन से खाई हूँ मतलब
0: बिल्कुल
1: मतलब गला रहा कोचिंग ची बुक क्योंकि विदाउट कोचिंग मुश्किल रिक्शा जिनमें
0: पाया
1: स्लैब स्टडी इंपॉर्टेंट ही नहीं है मतलब नो डाउट की खची है ना गर्ड्स हो चिन क्वालिटी हो चिन और परस्यू भी कोशिश है बट कोचिंग आपको बेहतर बना देते हैं
0: स्लैब स्टडी के हर चीज़ को हासिल
1: हासिल अच्छा ना मतलब बेटर करने के लिए गला चूश बुक या दुबे गले बुक सुनना आप कोचिंग का सहारा ले सकते हो अच्छा ना फिला जैसे खचिया सपना उचिन गजगारी देशी सेवा बुक खचिया सपना उचिन गजगारी ड्रीम पो परस्यू बुक या दे अलावा हर मी अलग अलग सपना उचिन छा ना दुन गांव मा मद्देनजर जख से या दी सपना खत्म मचो जो एचयू भी कोशिश बचा और दून एचयू भी फिला सबसे बेस्ट तरीका है आपको मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप या दे अलावा मतलब मंगमो दे बेगम हजरत महल फिला खासतौर से दी स्कॉलरशिप छा ना दी सुख स्कॉलरशिप उन्होंने कहना फायदा लेनमी कोशिश बचा जैसे फॉर एग्जांपल अगर फ्रू चीज यूपीएससी प्रीलिम्स का तो क्रैक छाना का तो स्टेफन आता बर्थडे फॉर एग्जांपल सोशल एंड ट्राइबल वेलफेयर रिस पेने आता
0: अदो
1: मजीद
0: आगे
1: अच्छा ना अदुन गंग हद से ज्यादा अदे स्कॉलरशिप उन गवर्नमेंट स्कीम सुनने का ना फायदा लेने की कोशिश बचा और राय सपना पूरा भी कोशिश बचा
0: बख्शिश बहुत बहुत शुक्रिया लाजुक पे कह रहा कि यार जारी रिंथो चंद वक्स ने वक्स से रेडियो कारगिल स्टूडियो उसकी होती असलम
1: असलम
0: दर्स 35 टी सी गिनत पिन मोहम्मद बाकर मीरा सारिकना लेक्चरर हिस्ट्री स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख कना دیتی سونی هم بود درینگی سگدی پروگرامی وقت بچم خدا رن نا یونگ می جاگونی هنوک یونگ ینتان هم بود سگدی پروگرامونی هنوک توک جا انشاءالله دیتی سوک بیک نسا جادو سین لا ازین تون یجو خدا نرستغمانی فقریان

0: फिट्स जो चाहे फिल एक कोच जो है हमेशा उसको मोटिवेट करते हैं। यहाँ तो चोखला यानी कामयाबियां नुकसान बसंग एक मेन चीज चीज का तां डिसिप्लिन नंग गा इंसान चीज का मी चीज लेस पंग डिसिप्लिन उतना का तो खो कामयाब छात पे कोई जिंदगी नो चांस पे ज्यादा छत। और जिसकी जिंदगी में अगर कुछ लाइफ यानो कोई डेली लाइफ हो रहा तो सब रहता ना देखा खो डिसिप्लिन मिलना का तो नज्म और नसा के खो तस्पा मिलना का तो खो सक्सेस छात पे खो सक्सेस बल्कि फेलियर तरह लोग को ज्यादा चांस। आपके टैलेंट जो आपको एक गेम तो जिता सकते हैं लेकिन आपके अंदर वो चैंपियनशिप और आपको एक चैंपियन बनाने में हमेशा एक कोच का जरूरत पड़ते हैं। तो मतान दिखाने की कोच ही चीज रोल चो मत कोच का हमेशा एक सक्सेस प्लेयर के पीछे एक सक्सेस कोच का हमेशा हाथ होते हैं। इस पर मैं ममिक सुंगा इस प्रावधि के शख्स है एडवेंचर स्पोर्ट्स इन हिमालयन रीजन यानी हिमालयन रिजूमस पे अनुक एडवेंचर स्पोर्ट्स से ची स्कोप रही अच्छी देना रही हो फेस्पा वैसे मोल भी नंगा ने मोदी दिखे चुक सोत या सजाद हुसैन सर। सजाद हुसैन सर जो ने कहते हूँ आता एक नेशनल मतलब प्लेयर चिक जुक सिंह सुनो शुरू हजार रु सर छाना सर जो सब बस ना यार यदि रंथुस संतुष को ना तुस तां से आकाशवाणी करगिल स्टूडियोस के उच्चस ला यार जो सर मजा जी बख्शिश
1: बाशी जी
0: छाना सर जो तादेरी नती खतुस वो आता एडवेंचर स्पोर्ट्स जरूर हजू खास कर नती हिमालयन दी रिलजोंस पे आनुक आता दी स्पोर्ट्स ही ची पोटेंशियल रिया ची आता स्कोप रियो सब जरह जो दी स्कोला
1: बिल्कुल
0: छाना ता गोमा जा ची पुजरस दी एडवेंचर स्पोर्ट्स पु खरा चीन गजुक चीन सोन ची गति यहाँ था लसा से ब्रीफ बना एरिया जो सर
1: बिल्कुल बाशीष जी
0: बख्शिश
1: सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: बख्शिश जी
1: तो एडवेंचर स्पोर्ट्स गति बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जी उसमें, जैसे कि वाटर एयर में भी होता है, लैंड में भी होता है, स्नो पे भी होता
0: बख्शिश
1: है।
0: बख्शिश बख्शिश साहब
1: सिर्फ एडवेंचर स्पोर्ट्स मैंने एक मेन कि उसमें यार जन स्पोर्ट्स खची गाँव चीन
0: बख्शिश
1: विंटर में भी
0: स्पेसिफिक
1: होता
0: स्पोर्ट्स
1: है।
0: चीज में भाजुगा सा
1: स्पेसिफिक में तो उसमें विंटर में भी होता है, उसमें वाटर स्पोर्ट्स भी होता है, एयर में भी होता है,
0: बख्शिश
1: लैंड पे भी होता है, स्नो पे भी होता है।
0: बख्शिश
1: तो एयर हैं जैसे कि गति वाटर हैं जे वाटर हैं रिवर राफ्टिंग जरे
0: राफ्टिंग है जो
1: जैसे कि
0: बख्शिश
1: गति जंस्कार इंडस रिवर दोनों छात गति देर,
0: बख्शिश
1: तो वो भी एक एडवेंचर स्पोर्ट्स है जो। उसके बाद गति है हमारा बंगी बंजी जम्प जरे
0: हाँ
1: वो
0: जंपिंग है जो
1: वो हिमाचल जैसे
0: बिल्कुल
1: एरियाज में होता है जो।
0: दी लिखा जो दिया ना सबसे
1: बिल्कुल
0: बंगी जंपिंग आती दी एरिया नो खास कर आती हिमालयन रीजन यानो
1: हिमालयन
0: दी
1: रीजन्स में
0: आता
1: होते
0: बहुत
1: हैं
0: बड़ा स्कोप क्योंकि दूल आता एक थुनमो जगह हजूर
1: बिकॉज
0: गोस जहाँ से वो आप जंप कर सके नीचे और थोड़ा ग्रेनरी से दूसरों से मैं मन
1: बिल्कुल
0: अर्दमो चलो ये इसके लिए आता काफ़ी फिजिबल दी आती अलाका आता थो मशा हजू
1: थोमस है
0: बख्शिस
1: जी बिल्कुल।
0: शुक्रिया
1: एक तो जितने भी है ना एडवेंचर स्पोर्ट्स मोन दिया हिमालयन रीजन्स हैं जैसे
0: बख्शिस
1: ज्यादातर एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं,
0: कैसे बख्शिस
1: बाकी
0: जैसे
1: स्पोर्ट्स तो कहीं भी हो जाते हैं जो,
0: कैसे
1: पर जो एडवेंचर स्पोर्ट्स खुने यार हाई एल्टीट्यूड भी होना जरूरी है, उसमें माउंटेन्स भी होना जरूरी है और रिवर्स भी होना जरूरी। जो
0: बख्शिस
1: रिवर्स जो थोड़ा टफेस्ट रिवर इतना है मतलब टूरिस्ट क्यों से खो स्कोर बेंचा गति एरिया ना
0: बख्शिस
1: अभी नजर नती जैसे कि लद्दाख एरिया अच्छे से एक्सप्लोर मचा जो जितना गति लोकल ना पता तो इतना नॉन लोकल को पता नहीं होता है। तो बाहर से नॉन लोकल जाके वो मतलब कोशिश करते कि एक्सप्लोर करे कि बाद में वो खुद लाके इधर मतलब टूरिस्ट को लाए या वो खुद। तो मैं चाहता हूँ अति शुन खुनता भी मोशन खुन कोर्स बोशन अति टूरिज्म के थ्रू गति या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट या जो गति स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है खोज दिया तो कैम रिक्वेस्ट से थोड़ा अगर आगे ले जाएगा एडवेंचर स्पोर्ट्स को भी तो गता ना बहुत बेनिफिट है जो, क्योंकि हिमालयन रीजन में हम है और ज़्यादातर एक्सपोजर भी मिलेगा फ्रून लंग अगर गति एडवे गति जो टूरिज्म होए और गति स्पोर्ट्स काउंसिल या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है अगर खोजदाशी सपोर्ट दिताना तो ऐसे कैम्प रखो जिसमें गति फ्रून ला सब की कैसे हमें ट्रैकिंग करने कैसे क्लाइंबिंग करने क्लाइंबर्स लाओ बाहर से कोच अगर गति दिर में ना बाहर से इंस्ट्रक्टर ला के गति फ्रून ला सब ना इंशाल्लाह गति फ्रून बहुत आगे शिन उनको बहुत फायदा भी होगा सर। और गति लद्दाख इकोनॉमी भी बहुत बढ़ेगी यहाँ से गति दें अभी काउंसलर्स के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है मतलब स्नो स्की जो इक्विपमेंट्स है दोनों सब। तो मैं चाहता हूँ कि इक्विपमेंट्स को वो खुद अगर काउंसलर अपने थ्रू ला के नॉट फॉर पर्सनली भेज दे कि वो एक कोच के हाथ में दे जो हर समय मतलब हर विंटर सीजन में वो ट्रेनिंग करे।

0: बच्चों को,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: बच्चों से फीस भी रखे या वो अपने लेवल का फीस
1: एक
0: रखे,
1: महीने वाली फीस
0: तो
1: रखे।
0: बच्चे ऐसे बन जाए डायरेक्ट आती इंगा ज्यादातर थो पाए कि आती काउंसलर सामान नहीं क्यों था पर पर्सनली या कर्रिक तंस दिया चौका फिर किसी को भी आ जाते, फिर वो मिस यूज हो जाते, जो
1: जी जी
0: मिस
1: बिल्कुल
0: यूज बोला
1: बिल्कुल
0: चौक बना काउंसलर के हाथ से वो लाते 20,000 19,000 का पूरा सेट लाते है, तो कौन एक 1.5 लाख चौंधो।
1: या दोस्त एकदम
0: अब
1: उसको
0: जिस बच्चे को मतलब शौक होगा जो जैसे स्पोर्ट्स में आगे चाहिए उनका ट्रायल लो, ट्रायल बेस पे उनको दो या ऐसा कुछ होना चाहिए। पर मैं तो मतलब शुक्र गुजार हूँ कि ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ रहे हैं हमारे पास, बच्चों को दे रहे हैं विंटर में अच्छी टम्बिस एरिया में, पिछले साल टम्बिस में
1: बिल्कुल
0: जो
1: जी,
0: उसमें
1: वो आइस हॉकी
0: फील्ड
1: का
0: बना
1: एक
0: हुआ
1: रिंग
0: आइस
1: बना
0: हॉकी का
1: है
0: रिंग,
1: बिल्कुल जी।
0: तो वो काफी प्रूफ बहुत अच्छा लग रहा था, विंटर में सब उतरी जाते थे मतलब प्रैक्टिस करते थे खुद ही,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो कम से कम उदी चीज पे इन्वॉल्व ना तिफ्रुन कभी भी गलत रास्ते हैं सच में जो,
1: बख्शिश
0: तो
1: बख्शिश
0: एडवेंचर गते विंटर समर इसके अगर स्पोर्ट्स को हम इन्वॉल्व करें गप फ्री गिनना ना को मेंटली डिप्रेशन सच में ना को फिजिकली चाँ प्रॉब्लम सच में, हम फिट रहेंगे हमेशा।
1: फिजिकली मेंटली वो फिट रहेगा जो।
0: और गता बेसिकली गति दिन ड्रग्स केसेस बहुत ज्यादा हो जो जवान सवान,
1: बिल्कुल
0: तो
1: बिल्कुल
0: दुनिया वो बचे बेफिल सबसे ज्यादा रीजन वही स्पोर्ट्स है, जो अगर यंते स्पोर्ट्स फ्री नंगो जतांस वो कभी गलत रास्ते में नहीं जाएगा। मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ, मुझे पता है जो इसमें कितना गता क्या क्या चीज़ हमें सीखने को मिलता है, राय के शाम से कंट्रोल बचन पेशेंस शाम से शक्चिन
1: बिल्कुल
0: राय बिहेवियर को कैसे रखने एक स्पोर्ट्स पर्सन को सिखाया जाता है, जो अगर स्पोर्ट्स से इन्वॉल्व हो वो सब खुद ब खुद इंसान सीख जाता है। पर गलत लक्ष्य कभी भी मैं गारंटी देता हूँ एक स्पोर्ट्स पर्सन नहीं जाते, जो
1: बिल्कुल जो
0: जितना आता जो में द स्पोर्ट्स पर्सन एक दूसरे से मिलते हैं इंट्रैक्शन होता है, या अभी रिसेंटली जो आती इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हुआ था उसमें हमने ट्रेस्पॉन में किया था स्कूल में, तो उसमें बाहर के भी बच्चे आए थे वो मतलब बाहर नलते नच पाए उनको, फिर हमने उनको भी अंदर लाए ग्राउंड के, वो भी इंट्रेक्शन उनको भी अच्छा लगा। तो दया चौंगा दर्शन सुसु स्पोर्ट्स से एक तो एक दूसरे को जानते हैं जो एक रंग
1: एक
0: एक
1: सोशल हार्मोनी जो
0: सोशल
1: है
0: हारमोनी
1: डेवलप में हो,
0: वो
1: अच्छा
0: डेवलप
1: अच्छा
0: हो जाते
1: बिल्कुल
0: जो।
1: जो उस पर मैंने अब खास कर मैं जारी दी स्नो शू आप उसमें प्लेयर हो, आपने इंडिया रिप्रेजेंट बस जो रेस
0: बिल्कुल
1: चाना दिया नुंगा था ट्रैक पू गचुक चिक रोस पर या गचुक आता कोई इंफ्रास्ट्रक्चर से रोशन ना मीना या इक्विपमेंट आता पता चुक रोशन जो और गति दिया इलाके अनुक ओदी चाम से पोटेंशियल जो उसके लिए हम मना दी गता प्रमोट बांग यंचा तमत मजीद इसको
0: बिल्कुल सर गाते प्रमोट बाय यंचिन जो, क्योंकि अभी तक जो चैंपियनशिप शायद वो 2,000 मीटर के ऊपर ही होते हैं, गाता ना 3,000 मीटर के
1: मीटर
0: ऊपर
1: कैसे
0: है,
1: जो बिल्कुल
0: तो गति अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप भी हम करवा सकते हैं उसके लिए इतना खर्चा भी नहीं है, जो सबसे गज नजर एडवेंचर स्पोर्ट्स में ये सबसे सस्ता गेम है।
1: अच्छा स्नो
0: हाँ
1: शू
0: स्नो
1: है।
0: शू जो जो यार ना शूज से प्राइस मेनली शूज पर बाहर लल्दा नहीं हो मना गाता महंगा रिक्शा वो 20,000 तक 25,000 तक चला जाता है एक
1: अच्छा
0: पैर
1: अच्छा
0: का, तो इंडिया में अभी उसका कंपनी दी और TSL जरूर उनका अलग कंपनी है, तो
1: अच्छा
0: खो इस प्रोवाइड बट वो इटली, तो उधर से गता लाने में थोड़ा GST VST छाना फिर वो सब मिलके फिर 25 सक पल्ले बत पे देर, तो हमारा स्नो शू चिकना वैसे भी मिल जाते हैं जो डिकैथलॉन पे भी मिल जाता है वो 6,000 का होता है, पर वो है ट्रैकिंग के लिए स्नो ट्रैक भी फिल इन पाया
1: अच्छा
0: रनिंग फिल वो यूज
1: ये
0: नहीं होते,
1: रेसिंग इन
0: और
1: सुना
0: रेसिंग पर अलग मशीन देना
1: अच्छा
0: थोड़ा वो लाइट वेट रहता है और उसमें एल्यूमिनियम फ्रेम वेम लगे थोड़ा हल्का रहता है, ट्रैकिंग का अलग है और रनिंग का अलग होता है
1: अच्छा
0: ना,
1: अच्छा
0: तो इक्विपमेंट्स तो मतलब इतना हो जाता है, पर मेरे हिसाब से 25,000 भी कुछ नहीं है जो वो साल में एक बार यूज होते फिर उसको 5-6 साल चल जाएगा वो तो। और ट्रैक पर जो अभी आप बोल रहे थे ट्रैक की कैसा रूट होना चाहिए वो, जैसे इंगाती नॉर्दर्न खेरबिल्ला में मदे
1: रलम सर जो
0: रलम जरे
1: कैसा
0: बस वही हो चले गए इसके लिए स्नो शूज के लिए,
1: अच्छा दैट्स
0: लेकिन टफेस्ट रहता है जो गेम बहुत टफ से शूज
1: ओके
0: पहनना, एक तो चढ़ाई पे दौड़ना फिर नीचे फिर ऊपर, वैसे रखते हैं ट्रैक मेनली
1: अच्छा
0: दोस्तों गेम टफ है लेकिन पेने मामले में सबसे सस्ता गेम है जो
1: अच्छा अच्छा
0: हम
1: कैसा
0: अगर अति दियंग खत बना कोशिश बस में
1: एक
0: जो अच्छा
1: एंड्योरेंस
0: द्रास
1: गेम
0: लचक
1: है
0: जो
1: जो
0: हाँ द्रास लबे कोशिश बस, क्योंकि विंटर में हम लोग दुनिया से कट ऑफ हो जाते हैं
1: बिल्कुल
0: जो
1: बिल्कुल
0: जिला एक
1: बिल्कुल
0: 2 महीने के लिए बंद हो जाते उस वजह से नहीं रख पाया, तो अभी हमारा टनल भी बन रहा है उसके बाद तो हम यहाँ पे वर्ल्ड चैंपियनशिप भी करवा सकते हैं सर।
1: अच्छा मतलब वहां तक

0: पोटेंशियल हमारे यहाँ है।
1: पोटेंशियल है जो।
0: तो मतलब अगर ngati dia nok na ngati suno shi agar player fina agar mar lo ngati phun la dia nok shi ko tna ka to o khwa fila chi jo training center ri gum chine ya usko bahar jana padega ya agar chukchi bas khol sa boshin kis tarah is cheez ko access kar sakte ho matlab
1: एक्स दिया है जो अगर खो सब ना, हम बाहर जाने की तो ज़रूरत नहीं है। एक इंड्योरेंस स्टेमिना मतलब स्पोर्ट्स है, इसमें स्पीड का कोई मतलब ये नहीं है, उसको इंड्योरेंस चाहिए जो। तो गति दिया प्रैक्टिस बना बहुत दे,
0: अच्छा
1: जैसे कि हम लेह में इंड्योरेंस, क्योंकि लेह गता हूँ मस्से हाइट के जो ज़्यादा, उधर हम इंड्योरेंस स्टेमिना के लिए कर सकता है। और गति दिया गते स्पीड वर्कआउट बाय इंच, क्योंकि हम मैक्सिमम मैंने अभी मतलब ग्राउंड में देखा सर, अति ब्यामत हाँ ग्राउंड या अति बरू इलाका, उसमें 28 तक है, 27 जो 27 एल्टीट्यूड पे हम, तो उधर स्पीड वॉक के लिए अच्छा। जैसे कि हम सांग की या टीएजी की बात करें, वो 28,000, 28 के दोगे
0: अच्छा
1: और उससे ऊपर जाएंगे फिर थोड़ा हाइट पे चले जाता है।
0: अच्छा
1: जो हमारा ट्रैक बना है, ट्रैक वो 3,000 मीटर पे है,
0: एस्ट्रो ट्रफ जो वहां
1: एस्ट्रो
0: पे बना
1: ट्रैक जो
0: है।
1: हमारे यहाँ। तो मतलब हमारे पास दोनों बेनिफिट है, जो इंड्योरेंस बना हम हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा ऊपर जा सकते हैं, अगर मतलब स्पीड वर्कआउट से बना युक्त तो बैंक चलते हैं,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब देनर बैंक
0: मुझे मतलब दो आता ट्रेनर से किया मतलब दो कुछ सुख शिक्षा आता दो कुछ ने
1: कोच, कोच सर कोच तो चाहिए सर टेक्निक्स के लिए,
0: टेक्निक्स
1: मतलब
0: मतलब उनके
1: कैसे हमें दौड़ना
0: दौड़ना है
1: है,
0: दो चीज़ सुनो
1: कैसे हमें मतलब अगर ना ब्रीथिंग च लेना तो सी से लेना ची वैसे लेन चीन, या हमें हाथ को कैसे चलाना है, पैर को कैसे डालना है ज़मीन पे, उन सब का यार ट्रेनिंग चाहता लग, उसके लिए तो कोच ज़रूरी है। कोच के बगैर तो आई थिंक मतलब प्लेयर कोई आगे जा ही नहीं पाएगा। जैसे
0: बिल्कुल
1: कि एक
0: बिल्कुल
1: बच्चे को टीचर जितना इम्पोर्टेंट है, वैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन को कोच मैंने ज़रूरी।
0: बिल्कुल चाहे तो इन चीज़ों में आता कोच वोच जिंगाते जो हूँ जैसे गाती आप यहाँ जो सो जो जिन्होंने अपना नेशनल तक खेला है
1: बिल्कुल
0: ये चीज़ उन गाता वहाँ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बसे मेरी का जो बसे ट्रेनर
1: बस
0: रिक जब से ट्रेन बन का तो बच्चे दिया इसमें भी आगे जा सकते हैं जो
1: तो सपोर्ट चाहिए जो मेरे लिए एडमिनिस्ट्रेशन का, अगर कहाँ जहाँ सपोर्ट हो सर तो गातिपुन आगे मशा मल लुशे। मैं चाहता हूँ स्पोर्ट्स में तो गाता मना सपोर्ट छाओ शिंजू, बहुत सपोर्ट छाओ। अब हमारा गति देर साथ में कारगिल में ये कारगिल मैराथन होता था जो, अब 2 साल हो गए द्रास में बचाओ, क्योंकि खो इज दैट इन पे ऑफिशियल जो बोलते जो चलाते हैं खो जिंदू, हमें कारगिल से सपोर्ट नहीं आया जिंदू
0: बिल्कुल
1: थोड़ा भी। अगर मतलब फंडिंग भी आर्मी करता है, थोड़ा हमें मतलब मेडिकली या पुलिस का सपोर्ट चाहिए होता है या एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सपोर्ट चाहिए होता है, खोज मबाना अब हमने द्रास में रखा है लो।
0: अच्छा
1: तो गाज दर्शन गति फायदे फिला मिलता हो चल रहा है कि ग सपोर्ट छीनना, कि मुझे मतलब नरा पे नहीं ओम चीना या नरी फिर नरी चंदा कहाँ चीना, हमसे वो नहीं सोचना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि गति यूल फिल चाम से
0: बिल्कुल
1: असर था आंदो दी गेम पोस या
0: बिल्कुल
1: दी
0: बिल्कुल
1: स्पोर्ट्स पोस। चलो मुझे फायदा नहीं हो, उधर 20 नफर लो फायदा छना,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: टैक्सी पे गया ऐसे रेडी के ठेला तंखन चे उसको फायदा हो, दे होम स्टे चाम से जो गति
0: बिल्कुल
1: करगिल ना
0: बिल्कुल
1: होम
0: बिल्कुल
1: स्टेज तो है जो बर बर के होम स्टेज
0: बर
1: था
0: बर
1: से
0: के
1: दे
0: बिल्कुल उदुल
1: उनके
0: नफस
1: घर जी रोल चे, तो गता थो दे वो तो ऐसे पड़े हुए या कोई रहा कमरा चोज दो या कुछ, और उन
0: बिल्कुल
1: पे तो
0: बिल्कुल
1: कुछ है ही नहीं ना। मेन ना मेन प्योम मोशन गता गति कर ये होम स्टे जितना दुन प्रमोट छाओशन,
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: प्रमोट कैसे होगा द गेम्स अवस, क्योंकि बाहर से बच्चे आएंगे वो लोग खोज ना महंगा पर होटल मिलता चाहे मैंने वो तो सस्ता ही देखेगा,
0: बिल्कुल
1: तो होम स्टे प्रमोट पे मेन मौका दिया इन पे गता
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: बिल्कुल।
0: बिल्कुल
1: ये सब अगर गति संभव आना रात से संभव बताओ, जैसे कि एक बंदा सोचेगा कि
0: बिल्कुल
1: मुझे ही सारा ये दो यूथ को अगर हम सपोर्ट करें, क्योंकि गता रात हूँ जो मैं रहा हूँ स्पोर्ट्स में, अब बोलने की इंचान मिजर वॉशिंग पेपर, मैं देखता हूँ अभी भी मतलब जो जॉब्स करते हैं जिनने मतलब जिंदगी में भागा नहीं हो, जिनने जिंदगी में बैट नहीं उठाया, वो एसोसिएशन चला रहे हैं, तो वैसे मुझे नहीं लगता जो वो किस फायदे के लिए कर रहे हैं, वो अपने फायदे के लिए कर रहे हैं या कि मतलब राय टॉस काम अब बेता है कि बच्चों के लिए। अब जिंदगी में मैंने अभी आप रेडियो स्टेशन पे करते हो जो मतलब ब्रॉडकास्ट आउट कर, वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैंने कभी सीखा नहीं वो चीज़, या ना एक्सपीरियंस हो, आप कभी स्नो शू नहीं कर पाओगे। यूँ
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: से
0: हाँ
1: अगर आप एसोसिएशन भी चलाओगे आप क्या?

0: क्या करोगे आप, मेरा संबंध आज
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो मैं ले उधर चौस जाएगा ती एसोसिएशन सा मैंने बहुत नोटिस किया।
1: स्नास बसन काफी धरे गता आदमी का स्नामा छिन एडमिनिस्ट्रेशन इन काफी फोकस बिन और यूथ से काफी इंटरेस्ट लेने लगा जो और उम्मीद करते हैं कि यंग मीडिया बनाने को बहुत सारे यूथ संगता दिन इन्वॉल्व हो से गति दी चीजों एक्सप्लोर हो सा जो
0: एक्सप्लोर
1: कुदरत
0: बिल्कुल
1: संगता दी चुक एक वसीले के जरिया ही चंगता रिसोर्स संगता प्रोवाइड बस थोप शजदे बस होना अदोने एक रिग्याला गता वाइज इस्तेमाल हो से यो में तू से नुक दिन गति फिला एक बहुत बड़ा रिसोर्स दान में क्यों रहता उम्मीद जो जो चाना दवा जो जो यंग दे या लजुक पे का जो तंगता यारी फ्रेंच गति यार एक्सपोज पर्सन जी जुक्स पर्सन गति यान खानो लखस कर यूथ्स के लिए मैसेज या फ्रेंच चोद न बख्शिस मोलना
0: निना यूज़ ले दिया मैसेज इन जो कि यंते गा सपोर्ट से न ना या यंते सपोर्ट से न मत ना या चाहे गति भूमो यद बुझायो आप लोग एक बार स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो जाओ
1: बख्शिस
0: या मोती के टाइम पे कहीं फितों का टाइम पे टाइम पिंग एक फिजिकल फिटनेस आजकल मैं सोचता हूँ जो आपके पास एक टाइम पे पहने ना समय दो चिन पर यंती सेहत पे यंती लगा में इतना यंता योत पच हो गया अपना
1: बख्शिस मन फेस पास पर एक मजो मता नतिर गो नदमेत में ना अजो जब हम मेंटली या फिजिकली फिट नहीं हो
0: फिट
1: तो
0: नहीं
1: नति लगा जियो
0: होता
1: तंजी
0: मता
1: बोखा जो
0: पहने ची बेद गए
1: बिल्कुल छाना दी मता मेंटली फिट और फिजिकली फिट लुशिया से फिला स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा मता एक प्लेटफॉर्म चिक है जो या ता स्ट्रोल
0: बिल्कुल
1: चिक जर ना इन जो चाना सजा से ता अतिस पर मन मामो संजो या
0: बस
1: रदियामा जा जो अति इन्यान खान नुसं यारी दिस पर ना फन खेले इंशाल्लाह कोने संग स्पोर्ट्स संग हजु इन्वॉल्व छे और स्पोर्ट्स संग राई इंटरेस्ट पर बड़ाई बात पी फोन एक वसीले स्ट्रोल चिक होगा जो
0: बिल्कुल
1: अच्छा ना जो यंग सच्ची गरा हेरी टाइम को ना जी रेन थोशन तुस को ना तुस तांसे आकाशोनी करगिल अस्कुच चले ना आजु सर मुझे अस्सलाम वालेकुम
0: बख्शीश अस्सलाम वालेकुम
1: देना तुसुन अम्बोदरिंग स्पोर्ट्स प्रोग्राम में वक्सपुत हमाथुन खुदारन्ना यूं मित्तु सुना अंतर न थुकचा दे मन पुंगा शज्द बजुजन यजु खुदारन्ना सामानी फकरें

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: Medium Wave through Gyan Angishish Bhin Ashbhik Kilhertz. Medium Wave through Gyan Angishish Bhin Ashbhik Kilhertz. Medium Wave through Gyan Angishish Bhin Ashbhik Kilhertz. FM Riga Ashirajik Megahertz. Zona Mobile App. News on Erika Diyo. Akashwani Kargilin. Waxbo Tussot. Urdun Namelin Shursaga. Sonsuk Kasata. Purgi Khabarin Prachugat. Nyan Masad.

0: मुकाबले में और चैंपियनशिप फाइनल मुकाबले में पहुंचे। आज का जो मुकाबला था वो फाइनल मुकाबला था, जहां पे मेंस की टीमों के साथ साथ वुमेन्स टीमों ने भी आज गेम में जो है वो पार्टिसिपेट किया है। और इस गेम में फाइनल मुकाबलों के हवाले से बात करते हैं तो आज लद्दाख स्काउट जो पिछले 6 साल से लगातार अपने नाम पे इस चैंपियनशिप को बना रही है और इस बार भी 3 गोल से इस चैंपियनशिप को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। और दूसरी ओर एनिमल हस्बेंड्री टीम ने भी बहुत सारी टीमों को हराने के बाद फाइनल में अपने लिए जगह बनाया, लेकिन 1 गोल दागा और रनर अप एनिमल हस्बेंड्री का नाम जो है वो आज देखने को मिला है। वहीं वुमेन्स टीमों के हवाले से बात करेंगे, वुमेन्स टीमों में भी बेहतरीन जो है वो कारकर्दगी जो है वो देखने को मिली गेम को लेकर। और सिग्मॉल टीम की तरफ से और द्रास वुमेन्स टीम, ये जो फाइनल मुकाबले में पहुंची हुई 2 टीमें थी जिसमें सिग्मॉल जो है इस चैंपियनशिप को अपने नाम करने में कामयाब हुई है। फिलहाल ऑल इंडिया रेडियो के लिए द्रास से मुजम्मिल जमील।
1: लेफ्टिनेंट गवर्नर यूनियन टेरिटरी लद्दाख अविनी कुमार सक्सेना से दिरिंग कुर्बथंग करगिल्ला सप्थोंग महकमे समर्चोस्खन बिल्डिंग पुलक घोसुक बस दिसमा बिल्डिंग पुष्मोल्लाक और ज्ञात एशारिया ट्रुक उर्दो निरी निकाश चोसे घारिया बसेन गवन ऑस्ट्रेलस पु पी डब्ल्यू डी आर एन बी डिवीजन करगिल इस अल्लाह गैंग ख्योंग मसों दिवासला घोसु की तकरीब लद्दाख राव रियली अरगियासी काउंसिल करगिल गोबा डॉक्टर मोहम्मद जाफर आखोन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर उन जप्थोंग महकमे यूनियन टेरिटरी लद्दाख से एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी राहुल शर्मा डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार दुनिया मुतालक ऑफिसर उन्नीस खकलेंस दयानाचोखला यूनियन टेरिटरी इंतजामी सीनियर खकुरुन जिले ऑफिसर उन दुना महकमानी नुमाइंदा सगिसंग खकलेंस खनिन मिन देवरियां से इसको निवासला यूटी लद्दाख से जब्तुंगी महकमे डायरेक्टर ताहिर हुसैन जब्दविस लेफ्टिनेंट गवर्नर ला दी बिल्डिंग पे स्ट्रोलिका मलियां ख्योंचा इनखन लोकसो सहूलियात इसको ला सल्पो बसे हाँ गुंतास गवे का लेफ्टिनेंट गवर्नर इस महकमे ऑफिसर उन्ना खाकुर उन्ला मीमा सुन ला समोजोस्ते का खिदमात उन उसगोथे मिकल लिपचुक पिमी न बस खन फ्रालुक्सोनी स्तोद्रा बसेन पुर्गी खबर यंतस आकाशवाणी करगिल कनसना बेंचियोत वजीर अजम नरेंद्र मोदी इम्तिहान ने गिरजे मिंगना टेक्नोलॉजी मिंगब्यूंग खसपा नंदन नीलकानी गोयत्यांग छोगो खखुरी ख्युचन कमेटी जो है छोरता सेन वीडियो फ्रेंचियानु खोस द टास्क फोर्स पुस इम्तिहान ने गिरजे का स्पेरता अंचिक रिपोर्ट इसमें पेका योस्पा गुम्बान लेंचा इंजरियांग असरीन गाउस बसे दि इम्तिहान उन सख फ्योक्समेत और ध्यान यम्बोस निंखोम चन अजोस्ते का मालियन क्योंमा इंगें चचोक स्टक्स पे मी नजर ना दि टास्क फोर्स में दुनमा आईबी डायरेक्टर तपन डेका इसरो दुनमा चेयरमैन एस सोमनाथ आईआईटी सेक्रेटरी अनीता कारवाल चेन्नई डायरेक्टर वीमा कोटी दुनशिया से दुनमा सेक्रेटरी अनीता कारवाल न लॉजिस्टिक खसपा अमृत लाल मीनांग अद्रेसे एहतीन जनता दल यूनाइटेड लीडर दोनों राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट संजय झास इम्तिहान उन सगंग अशोखा तंगमी फिलहाल चोस्खान टास्क फोर्स पे कना मीमा से लखपू निंसे छचा सिंजरे अजर सेत पार्लियामेंट स्ट्रापियांग आकाशवाणी न्यूज नगरागंचिक जिनाब झास दि कमेटी उस यो मिनम जैनुक गाजाती ब्रिमेक मशकपा इम्तिहान उन सिंखोम नेम्बो मलियंग ख्यो मिमिन लक्षेपन अस्त्रोल चिक फिंग मी और थ्यांग मबस जबरियांग भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी दुना राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट तरुण चुगी संग इम्तिहान उन अनुक छखन लसंगान सक मेत पबसे सिंखोम चन जोस्ते खस तंगस बस खन बिलपुस वजीर अजम नरेंद्र मोदी यस्त्रीति लसख मेत खन शर्बना चुनी यूं मि वक्त सुन सक अस्त्रोनुक्स बेमीना लेंस खन गुम्बा उनिश तक्स पसों सिंजरे हुसर सेत दरिंग सुप्रीम कोर्ट इस दे दरख्वास्त होने का समात बेमी न रनलुक्स बस गवैनुक इम्तिहान ने पेपर लीक सोमिश मापेंग हिलिंग बखन फ्रूनी लोकपाला पुलिस इस शख्स में बस खन इनमें चीफ जस्टिस सूर्याकांत जस्टिस जयमाला बागची दुना वी मोहनी कैद खन बेंच पुस लोकसो अरजदास कस पिरता मिमी न रनलुक्स बस इंजरे असर सेत गवैनुक दे पुलिस ने जंजो सुनिस मुकदमा उतामसों गवैनुक फ्रूनी हिलिंग पे वक्सला खोई का हमला सों खन इनमें देवरियां चीफ जस्टिस सूर्याकांत इस कानून इनाल जोंस और देमो जोस्ते का हिलिंग बचस बुला आई निस्त्रोनुक सियोजरेन मरकस मीना पेश छखन सॉलिस्टर जनरल तुषार मेहतास अदालत नंगेंबो लखथुत बचा इंजरे उसर बसों दियून इनमिन दरे सकपे पुर की खबर उन गाइजिन शस्दे बस यह शु खुदा नर सामानी फकरियां।

0: rangi business un laske tangmifia lenchik akashwani rocks yanti chonglenun localin ya fayuli thogikain akashwani stanchain customer un sapilepis cups mangmu darene antes nang ya daftar ya hati kajuk senang bangyan chain akashwani ga kender chikika advertisement booking akashwani lokso channel unika advertisement tangchao samu dona ringin seyot booking befia call bazat 8700014242 ka
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700014242 पर
2: 8700014242।
3: सुनो ना।
1: हाँ।
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ,
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो, फायदा है जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
1: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242।
3: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।
4: एलुमिस बनी नूह इंसानी रुख्स बचाई हजरत अली मुर्तजा अलैहिस्सलाम।

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तजम्मुल अहमद। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नजर। सरकारी इम्तिहानात तरमीमी बिल 2026 लोकसभा में पेश। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सदारत में गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर के गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग। इदारे से जुड़े कई मामलों का लिया गया जायजा। वजीर आला का संगम इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा। क्रिकेट बैट सन्नत को मजीद फरोग देने का दोहराया अजम। और जामे मस्जिद शोपियान और सरोधर चामुंडा माता मंदिर रामबन की तजदीद नौ के लिए कुल 16 करोड़ रुपए मालियत के मंसूबों को सरकार की मंजूरी। तफसील के साथ सरकारी इम्तिहानात तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। दोपहर 12 बजे पहले इल्तवा के बाद जब ऐवान की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो मरकजी वजीर डॉ जितेंद्र सिंह ने मजकूरा बिल ऐवान में पेश किया।
1: फॉर लीव टू इंट्रोड्यूस द पब्लिक एग्जामिनेशन ब्रैकेट प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 टू अमेंड The Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024।
0: बिल पेश किए जाने के दौरान अपोजिशन अरकान नीट मामले पर तलबा के हालिया एहतजाज के दौरान पुलिस कार्रवाई पर बहस का मुतालबा करते हुए अपनी निशस्तों से खड़े हो गए। स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से अपील की कि वो अपने ख्यालात और तजावीज पेश करें। तहम अपोजिशन के अरकान ने अपना एहतजाज जारी रखा जिसके बाद ऐवान की कार्रवाई पहले दोपहर 2 बजे फिर शाम 5 बजे और फिर पूरे दिन के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब सुबह 11 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने दौलत मुश्तरका खेलों में तमगे जीतने पर वेट लिफ्टर मीराबाई चानू, ऋषिकांत सिंह, राजा मथू पांडे और पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को मुबारकबाद दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में आज लोक भवन श्रीनगर में गांधी मेमोरियल कॉलेज श्रीनगर के नए तश्कील दिए गए गवर्निंग बोर्ड की तारुफी मीटिंग मुनक्कद हुई। इजलास में कॉलेज की मजमुई कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाने की गरज से इदारे के तालीमी और इंतजामी अमूर से मुतल्लिक मुख्तलिफ मामलात पर तबादले ख्याल किया गया। एलजी ने कॉलेज के इंतजामी और अमलियाती ढांचे को मुअस्सर और मुनज्जम बनाने के लिए एक जामे पॉलिसी मुरतब करने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एसकेआईसीसी श्रीनगर में एथिकल टूरिज्म कन्क्लेव से खिताब करते हुए कहा कि सियाहती सरगर्मियों को जामे बनाया जाना चाहिए ताकि इस सेक्टर से वाबस्ता अफराद और नौजवान बाइख्तियार बन सकें। उन्होंने कहा कि पिछले 6 बरसों के दौरान जम्मू कश्मीर में सियाहत के एतबार से नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं। इस कन्क्लेव का एहतमाम टूरिस्ट ट्रेड इंटरेस्ट गिल्ड जेएनके के एहतमाम से किया गया था। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में संगम इंडस्ट्रियल एस्टेट का दौरा करके वहां क्रिकेट बैट तैयार करने के अमल और इस सन्नत से वाबस्ता अफराद को दरपेश मसाइल का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे तसद्दुक रशीद ने खबर दी है कि वजीर आला ने इस मौके पर क्रिकेट बैट सन्नत को मजीद फरोग देने और इस सिलसिले में खाम माल की बिला रुकावट दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करने का यकीन दिलाया। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए वजीर आला ने कहा,
2: हम सब यहाँ आए क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेम्बरान से मिलने के लिए और एक तो रॉ मटेरियल के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए और दूसरा इनके अशोर्ड पावर सप्लाई का एक मुद्दा था उसके लिए भी हमने एक हल निकाला है। तीसरा, यहाँ काम करने वाले बहुत हैं, कभी कभार एक्सीडेंट होता है, जख्मी हो जाते हैं, इनको फिर बिजबिहाड़ा पहुंचाना टाइम लगता है। इनकी डिमांड रही है कि डिपार्टमेंट के तरफ से यहाँ एक फर्स्ट एड सेंटर कायम किया जाए ताकि इनको फौरी तौर इलाज यहीं पे मिले। तो इन सब चीजों के लिए इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। और आखिरी चीज मैंने इनसे कहा कि यहाँ पे साल 2004-2005 में एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर बना था लेकिन उसका ठीक तरह से इस्तेमाल हुआ नहीं। अब इनको कॉमन फैसिलिटी सेंटर की जरूरत है या नहीं है, किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए मैंने क्रिकेट बैट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के मेंबरान और ऑनरेबल एमएलए से कहा हुआ है कि वो आपस में

0: बैठ के बात करें और फिर डिपार्टमेंट से कहें कि इसमें हमें आगे क्या करना चाहिए।
1: नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी, काबीना वजीर जावेद अहमद राणा और एमएलए डॉक्टर बशीर अहमद वीरी के अलावा जिला इंतजामिया के कई अफसरान वजीर आला के हमरा थे। सरकार ने जनूबी कश्मीर के शोपियान जिले में वाका तारीखी जामे मस्जिद की तामीर और तजदीद नौ के लिए 6 करोड़ 5 लाख रुपए मालियत के मंसूबे को मंजूरी दी है। एक

प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। वजीर आला के दफ्तर की जानिब से जारी एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि ये इकदाम जम्मू कश्मीर में अहम मजहबी और सकाफती मकामात के तहफ्फुज़ में सरकार के अज़्म की अक्कासी करते हैं। जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर अरुण गुप्ता ने आज वजीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ मुलाकात की। अरुण गुप्ता ने जम्मू कश्मीर में सन्नत व हिरफत से जुड़े कई मामलों पर वजीर आला के साथ तबादले ख्याल किया। इस दौरान साबिक एमएलए डॉ चमनलाल भगत, यूअर स्टोरी एंड दी भारत प्रोजेक्ट की बानी सीईओ श्रद्धा शर्मा और इनफिनटेक सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस के सीईओ सैयद उवैस अहमद ने भी वजीर आला के साथ मुलाकात की। तालीम की वजीर सकीना इत्तू ने कहा कि गवर्नमेंट वुमेन्स डिग्री कॉलेज जकूरा में लाइब्रेरी की सहूलत के साथ साथ एकेडमिक ब्लॉक तामीर किया जाएगा। इस बात का ऐलान उन्होंने आज मजकूरा कॉलेज के दौरे के दौरान किया। उन्होंने कहा कि सरकार तालीमी मंजरनामे को मजीद बेहतर बनाने की वादाबंद है। वजीर मौसूफा ने तालिबात के साथ बात करते हुए उन्हें तामीरी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की ताकीद की। एमएलए हजरतबल सलमान अली सागर और डायरेक्टर कॉलेज जम्मू कश्मीर प्रोफेसर शेख एजाज बशीर के अलावा दीगर कई अफसरान भी उनके हमरा थे। ज़िराअत के वजीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि हॉर्टिकल्चर वैल्यू चेन को मजीद मुस्तहकम करने और बाग मालिकान के लिए बेहतर मार्केटिंग सहूलियात दस्तियाब रखने में हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एंड प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन का अहम रोल बनता है। यह बात उन्होंने आज श्रीनगर में मजकूरा कॉरपोरेशन की 45वीं सालाना जनरल मीटिंग के दौरान कही। वजीर मौसम ने कॉरपोरेशन की मजमुई कारगुजारी और नबार्ड के अलावा इसके कैपेक्स बजट के तहत अमलाए जा रहे प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का भी जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी अटल डलू ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की कामयाब अमलावरी को यकीनी बनाने पर जोर दिया है। जम्मू कश्मीर में इस मिशन की पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए तलब की गई एक मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जेके सेहत ऐप के बारे में जानकारी आम की जानी चाहिए ताकि मुस्तहिक अफराद इससे भरपूर इस्तेफादा कर सकें। चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में अब तक हसूलियाबियों के बारे में भी तफसीलात तलब की। कौम आज साबिक सदर और मारूफ साइंसदान डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा कर रही है। मरहूम ने भारतीय खला और मुल्क के मिसाइल तैयार करने वाले प्रोग्रामों में एक अहम रोल अदा किया है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। वो आज ही के दिन 2015 में इंतकाल कर गए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने साबिक सदर और भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को खराज अकीदत अदा करते हुए कहा कि उन्होंने घरेलू मिसाइल टेक्नोलॉजी और खलाई प्रोग्रामों को नई बुलंदियों तक ले जाने में कलीदी रोल अदा किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने डॉक्टर कलाम को एक मारूफ साइंसदान, तरगीब देने वाली शख्सियत और अवाम का सदर करार दिया। बीजेपी जम्मू कश्मीर के अकलियती मोर्चा ने भी साबिक सदर जमहूरिया डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर अकीदत का खराज पेश किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स यानी सीआरपीएफ आज अपना 88वां यौम तासीस मना रहा है। इस दिन की मुनासबत से मुल्क भर में कई तकारीब मुनक्कद हुई। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर दाखिला अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इस फोर्स के एहलकारों और अफसरों और उनके अहलखाना को यौम तासीस की मुबारकबाद दी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी सीआरपीएफ के यौम तासीस के मौके पर सीआरपीएफ के एहलकारों और उनके अहलखाना को मुबारकबाद दी है। सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा बालतल के रास्ते से जारी है, ताहम पहलगाम रास्ते से यात्रा बंद है क्योंकि सरकारी बयान के मुताबिक पहलगाम रास्ते पर मरम्मत का काम हो रहा है। यात्रा शुरू होने से अब तक 4,15,000 से जायद यात्रियों ने गुफा के दर्शन किए हैं। उधमपुर में श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर समरोली के नजदीक कल शाम पसी गिराने की वजह से शाहरा को गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस सिलसिले में आज श्री अमरनाथ जी यात्रा मुकम्मल करने के बाद वापस जाने वाले यात्रियों को मीर बाजार काजीगुंड के यात्री निवास कैंपस में ठहराया गया है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर गुलाम अली खटाना ने आज पार्लियामेंट हाउस नई दिल्ली में वजीर दाखिला अमित शाह के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर में हालिया बारिशों के बाद पैदा हुई सूरतहाल के बारे में उन्हें जानकारी दी। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी की सरबराही वाली सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली के लिए
वादा बंद है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर और राज्यसभा मेंबर सत शर्मा ने आज नई दिल्ली में ट्रांसपोर्ट के मरकजी वजीर नितिन गडकरी के साथ मुलाकात करके जम्मू कश्मीर में रोड नेटवर्क से जुड़े कई मामला तो उनकी नोटिस में लाए। सत शर्मा ने यूटी में राबता सहूलियात को मजीद मुस्तकम करने की वजीर से अपील की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि

जमात जम्मू कश्मीर की खसूसी पोजीशन बहाल करने के इरादे पर कायम है। पार्टी के मुआविन जनरल सेक्रेटरी और राज्यसभा मेंबर चौधरी मोहम्मद रमजान ने आज श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के साथ तबादले ख्याल करते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इस मकसद को हासिल करने के लिए अमली कार्रवाई शुरू की है। इस दौरान एमएलए लालचौक एहसान परदेसी ने कहा कि मौजूदा सरकार ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए तामीर और तरक्की के एक नए दौर का आगाज किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तंजीम उमूर के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने आज जम्मू में पार्टी कारकुनों की एक मीटिंग के दौरान गुरु पूर्णिमा और हर घर तिरंगा मुहिम के लिए पार्टी तैयारियों का जायजा लिया। बुलंदपाया वली कामिल हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूम रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के सिलसिले में आयाम मुतबरका कल से शुरू हुए। इस सिलसिले में उनके आस्थान आलिया वाका कोहिमारा पर आयाम उर्स के दौरान नमाज असर से नमाज मगरिब तक खत्मातुल मुअज्जमात दुरूद अजकार और नातो मुनाजात की मजालिस आरास्ता हो रही हैं। जिला इंतजामिया कुलगाम ने समाजी बहबूद महकमे के इश्तराक से मरकजी सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत नीट इम्तिहानात में शिरकत करने वाली तालिबात के लिए माली इमदाद स्कीम मुतारिफ की है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के मुताबिक इस स्कीम से वो तालिबात इस्तेफादा कर सकती हैं जिनके कुंभे की सालाना आमदनी 8 लाख रूपये से कम हो। वादी कश्मीर और जम्मू के सरमाई जोन में सरकारी और तस्लीमशुदा प्राइवेट स्कूल गरमाई तातीलात के बाद आज से दरस व तदरीस के लिए दोबारा खुल गए। तालीमी इदारे 6 जुलाई से गरमाई तातीलात के लिए बंद थे। तालीम के वजीर सकीन ऐतू ने हालिया बारिशों से पैदाशुदा सैलाबी सूरताल का जायजा लेते हुए तमाम मुतल्लिका जोनल एजुकेशन अफसरान को हिदायत दी है कि वह जरूरत के मुताबिक इकदाम करें ताकि तलबा को किसी किस्म की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में कई मुनशियात फरोशों की 5.60 करोड़ रूपये मालियत की जायदादें अटैच की हैं। दरियासना पुलिस ने बारामूला में मुनशियात मुखालिफ कार्रवाई के दौरान जिले के मट्टीपोरा मिरगुंड इलाके में खुदराव बंग को तबाह कर दिया। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान दूर दूर तक हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 30.8 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.3 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। श्रीनगर में कल तुलोई आफ्ताब सुबह 5:39 और गुरूबी आफ्ताब शाम 7:35 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। एक वक्फे के बाद आप समाप्त कीजिए तबसरा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज़।

0: जल्दी टिफिन पैक करो। राजू मोबाइल छोड़ो।
1: अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया।
2: मिल गया, अब भी कॉल करता हूँ दीदी।
0: बिना नंबर जांचे अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं।
1: तो फिर सही नंबर
0: बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड।
2: आपने तो बचा लिया दीदी।
0: काम से नहीं।
3: RBI कहता है
4: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
5: आदाब, आज का तबसरा लेकर मैं मुबशिर रफाई। जम्मू कश्मीर में हालिया शदीद बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइडिंग ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या वादी आइंदा किसी बड़े सैलाब से निमटने के लिए वाकई तैयार है। ऐसे वक्त में तकरीबन 2022 करोड़ रुपए के फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों का तकनीकी इख्तिलाफात के बाइस रुका रहना सिर्फ इंतजामी तशवीश का बाइस नहीं है बल्कि आवामी सलामती, मईशत और बुनियादी ढांचे के लिए भी एक संगीन इंतबाह है। 2014 के तबाहकुन सैलाब ने कश्मीर की तारीख पर गहरे नकोश छोड़े थे। हजारों मकानात, कारोबारी मराकज, सरकारी इदारे और जरिए अराजी मुतासिर हुई जबकि मईशत को भी भारी नुकसान पहुंचा। इस सानहे के बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी कि जदीद फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों के जरिए दरियाई जहलिम और इससे मुंसलिक निकासी आब के निजाम को इस अंदाज में बेहतर बनाया जाएगा कि मुस्तकबिल में ऐसे बहरान से बचा जा सके। इसी मकसद के तहत मरकजी हुकूमत ने मरहलावार फ्लड मैनेजमेंट मंसूबों की मंजूरी दी। ताहम इतलात के मुताबिक दूसरे मरहले के चंद अहम हिस्से खसूसन फ्लड स्पिल चैनल और आउटफॉल चैनल की तौसी और अजसरिनो डिजाइनिंग मुख्तलिफ तकनीकी इदारों की मुतजाद रिपोर्ट्स और इंजीनियरिंग इख्तिलाफात के बाइस अभी तक शुरू नहीं हो सके हैं। तकनीकी इख्तिलाफात किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का हिस्सा हो सकते हैं लेकिन सवाल यह है कि क्या इन इख्तिलाफात के हल में बरसों की ताखीर मुनासिब है। अगर माहिरी

दंड पर प्रावधान कर करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा की दिशा में अहम कदम है। उन्होंने कहा कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर सभी दलों के सदस्यों के मत और विचार आने चाहिए। श्री बिरला ने कहा कि नारेबाजी करने और तख्तियां लहराने से विधेयक पर विचार नहीं होता। उन्होंने इस विधेयक पर चर्चा के लिए 6 घंटे का समय देने तथा सदस्य चाहें तो और भी अधिक समय देने का आश्वासन दिया। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है और इस पर संशोधन के कई नोटिस आए हैं, जिसका मतलब यह है कि कई सदस्य इस विधेयक पर अपना मत रखना चाहते हैं। उन्होंने आसन के समीप प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों की ओर इशारा करते हुए कहा कि फिर ये चर्चा रोकने के लिए नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? युवाओं की इस पर नजर है, ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा रोककर ये गलत संदेश दे रहे हैं। कांग्रेस से अनुरोध है कि अपने साथियों को समझाएं और चर्चा शुरू करें। इससे पहले 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने पर अध्यक्ष ओम बिरला ने 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू समेत अन्य भारतीय खिलाड़ियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में मीराबाई चानू ने वेटलिफ्टिंग के 48 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने भारोत्तोलन में ही रजत पदक जीतने वाले ऋषिकांत सिंह चानम्बम और राजा मुथु पांडी तथा कांस्य पदक विजेता पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार की उपलब्धियों का भी उल्लेख किया। श्री बिरला ने सभी विजयी खिलाड़ियों, उनके प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को बधाई और शुभकामनाएं दी। इसके बाद जब अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा तो कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे को लेकर और गृहमंत्री अमित शाह के जवाब की मांग करते हुए हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। श्री बिरला ने आसन के समीप हंगामा कर रहे कुछ विपक्षी सदस्यों को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी जो सदन की मर्यादाओं और उसकी परंपराओं को समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे आरंभ हुई तो विपक्षी सदस्यों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। इसी हंगामे के बीच प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सदन में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। हंगामा न थमने पर भी बिरला ने दोपहर 12:08 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 में संशोधन से संबंधित इस विधेयक में परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों को कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल तक के कारावास तथा 50,00,000 रूपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। इसमें संगठित अपराधों के लिए कम से कम 7 साल के कारावास और 10 करोड़ रूपये के जुर्माने का प्रस्ताव भी है। शाम 5 बजे बैठक फिर शुरू होने पर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सारे सदस्य तैयारी के साथ आए हैं और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी संशोधन के नोटिस दिए हैं तथा वे भी तैयारी के साथ आए हैं। उन्होंने कहा फिर भी कांग्रेस और उसके कुछ साथी इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा नहीं होने दे रहे। उन्होंने आग्रह किया कि कांग्रेस के लोग ऐसा न करें। पीठासीन सभापति कृष्ण प्रसाद तेन्नेटी ने विपक्षी सदस्यों से चर्चा शुरू कराने में सहयोग करने का आग्रह किया और अपनी अपील का असर न होते देख कार्यवाही कुछ मिनट बाद ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखिका हैं पीटीआई भाषा की मनीषा श्रीवास्तव। नीट प्रश्न पत्र लीक के विरोध में राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक आज बार बार बाधित हुई। 4 बार के स्थगन के बाद अपराह्न शाम करीब 5:15 कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से उच्च सदन में शून्यकाल, प्रश्नकाल और विधायी कामकाज नहीं हो पाया। विपक्ष ने मांग की कि प्रदर्शनकारी

छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग के मुद्दे पर गृहमंत्री सदन में आए और बयान दें। पूर्वान्ह 11 बजे बैठक शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। इसके बाद उन्होंने सदस्यों से शून्यकाल के तहत लोक महत्व के मुद्दे उठाने को कहा। इस बीच विपक्षी सदस्यों ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पिछले सप्ताह दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाया। सभापति से अनुमति मिलने पर विपक्ष के नेता एवं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उन्होंने नियम 267 के तहत एक नोटिस दिया है। सभापति ने कहा कि वो नियम 267 के बारे में व्यवस्था दे चुके हैं। श्री राधाकृष्णन ने अपने पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि नियम 267 के तहत केवल दिन की कार्यसूची में शामिल विषयों पर चर्चा कराई जा सकती है और वो भी विरलतम परिस्थितियों में तथा सदन की सहमति से। उन्होंने श्री खड़गे से कहा कि सभापति को नियमों के अनुसार चलना है या नियम तोड़ने हैं, आप ही बताइए। श्री खड़गे ने कहा कि अतीत में महत्वपूर्ण अवसरों पर नियम 267 के तहत दिए गए नोटिस स्वीकार किए गए हैं। श्री राधाकृष्णन ने कहा कि केवल विरलतम परिस्थितियों में ही ये संभव है। श्री खड़गे ने कहा कि वो जो मुद्दा उठाने जा रहे हैं वो ऐसा ही है। उन्होंने कहा कि छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई ऐसा ही मामला है। इस पर सभापति ने कहा कि असाधारण परिस्थिति होने के साथ इस पर पूरे सदन की सहमति भी चाहिए, वो नहीं है तो वो क्या करें। श्री खड़गे ने नीट प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई का मुद्दा उठाना चाहा। उन्होंने आरोप लगाया कि इन छात्रों के खिलाफ पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि लड़कों को पीटा गया और उन्हें पैलेट से निशाना बनाया गया। सभापति ने उनसे कहा कि वो शून्यकाल चलने दें। इस पर विरोध जताते हुए विपक्षी सदस्य हंगामा करने लगे। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और शून्यकाल चलने देने की अपील की, लेकिन सदन में व्यवस्था बनते न देख उन्होंने बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों ने फिर से छात्रों के खिलाफ कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाया कि निर्दोष छात्रों को पीटा गया, उन पर लाठियां चलाई गई और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उन्होंने मांग की गृहमंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर सदन में आकर बयान दें। विपक्षी सांसद गृहमंत्री को सदन में बुलाने की मांग करते हुए नारेबाजी करने लगे। द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने कहा कि उनकी पार्टी ने नीट परीक्षा पर रोक लगाने की मांग करते हुए एक नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि हर परंपरा में अपवाद की गुंजाइश रहती है। उन्होंने कहा कि इतने सारे छात्रों ने आत्महत्या की, सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन उनकी जिंदगी वापस नहीं लौटा सकती। श्री शिवा ने कहा कि उन्होंने भी नीट के मुद्दे पर नियम 267 के तहत नोटिस दिया है। उन्होंने कहा कि नियम 267 के तहत दिए जा रहे नोटिस लंबे समय से स्वीकार नहीं किए जा रहे। नियम 267 के तहत सदन में सूचीबद्ध सभी काम रोककर किसी विषय पर चर्चा कराई जाती है। माकपा सांसद जॉन ब्रिटास ने कहा कि संसद जनता का प्रतिनिधित्व करती है और भारत लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने कहा कि देश के बच्चों का खून बहा है, लोकतंत्र की जननी राजधानी इस देश के निर्दोष बच्चों के खून से रंग गई है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पी संतोष कुमार ने भी प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस के बल प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहा। सत्ता पक्ष के सदस्य इस पर विरोध जता रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते रहे। हंगामे के कारण सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दो बार के स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू कराने का प्रयास किया। यह विधेयक उच्च सदन में शुक्रवार को पेश किया गया था
जिसके प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान करना

0: आपराधिक कृत्य माना जाएगा और इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा हो सकती है। इस विधेयक के तहत 1971 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान किया गया। इस विधेयक पर सदन में चर्चा आज होनी थी। श्री हरिवंश ने इस विधेयक पर चर्चा शुरू करानी चाहिए, लेकिन इसी दौरान कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, माकपा के जॉन ब्रिटास और द्रमुक सदस्य तिरुचि शिवा ने व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया। उपसभापति ने कहा कि व्यवस्था का प्रश्न विधेयक से संबंधित ही होना चाहिए। उन्होंने गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय से विधेयक पर चर्चा को शुरू करने से पहले विधेयक के बारे में बोलने को कहा। इसी दौरान हंगामा और तेज हो गया और कुछ सदस्य अपने स्थानों से उठकर आगे आ गए। श्री हरिवंश ने कहा कि मानसून सत्र शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है और अब तक कोई भी कामकाज हो नहीं पाया है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने, अपने स्थानों पर लौट जाने और विधेयक पर चर्चा शुरू करने की अपील की। अपनी बात का असर न होते देख श्री हरिवंश ने बैठक अपराह्न 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 3 बार के स्थगन के बाद अपराह्न 3 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने फिर से राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा शुरू करने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष के कई सदस्य आसन के समीप आ गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उपसभापति ने हंगामा कर रहे सदस्यों से शांत होने और विधेयक पर चर्चा की अपील की, लेकिन सदन में हंगामा कर रहे सदस्यों पर उनकी इस अपील का कोई असर न हुआ। हंगामा थमते न देख उन्होंने बैठक शाम 5:15 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 5:15 बजे बैठक शुरू हुई और विपक्षी सदस्यों का हंगामा भी फिर से शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि विपक्षी सदस्यों ने कार्य मंत्रणा समिति में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा करने पर सहमति जताई थी, लेकिन अब इस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में मौजूद हैं, आप वरिष्ठ सदस्य हैं, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइए जो हंगामा कर रहे हैं। बाहर जाकर आप कहते हैं कि हमें सदन में बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन यहां आपके आगे हम अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी आप चर्चा में हिस्सा नहीं ले रहे। श्री खड़गे ने कहा कि वे सदन में चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि गृह मंत्री स्वयं सदन में आए, उपस्थित हों और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर बयान दें। हंगामे की वजह से उपसभापति हरिवंश ने बैठक को पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से संसद समीक्षा समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और एफएम पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज है। सामीन, शब के 8:15 हो चुके हैं। पेशे खिदमत है फिल्मी नगमों पर अपने प्रोग्राम फौजी भाइयों के लिए।

जय हिंद, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जुले आदाब, स्वागत है आप सबका। मैं हूँ मुख्तार जाहिद बड़गामी आपके साथ।

आजाद हिंदुस्तान में कई लड़ाइयां लड़ी गईं। आजाद होते ही सन 1947 में पाकिस्तान के साथ झड़प, उसके बाद 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई, लेकिन सन 1999 की करगिल

जंग हिंदुस्तान की पहली टेलीवाइज वार थी, जिसमें युद्ध की हैरतअंगेज तस्वीरें करोड़ों हिंदुस्तानियों के घरों तक सीधे पहुंची थी। कैप्टन विक्रम बत्रा, विजयन थापर, जोगेंद्र यादव, मनोज पांडे और संजय कुमार जैसे तमाम ऐसे फौजी थे जिन्होंने इस जंग को जीतने में न सिर्फ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में जज्बे और साहस को भरा था।

आज हम आपको कारगिल जंग की कहानी रेडियो कारगिल से ही सुनाएंगे दोस्तों। चलिए पहले बात करते हैं द्रास में मौजूद द्रास मेमोरियल, जहां हर साल 26 जुलाई को ऑपरेशन विजय दिवस मनाया जाता है और उन 559 जवानों को याद किया जाता है जिन्होंने अपनी जानें देकर उस जंग पर फतेह हासिल की थी और पाकिस्तानी फौजियों को द्रास कारगिल की चोटियों से खदेड़ दिया था।

जब यह पता चल गया कि घुसपैठ छोटी नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मकसद कुछ और है, तो जवाबी कार्रवाई शुरू की गई और फैसला किया गया कि फिलहाल एलओसी को पार नहीं किया जाएगा। काम बेहद कठिन था। पहली कठिनाई इलाके का मौसम, जो बेहद ठंडा होने के साथ साथ दुर्गम भी है। ऑक्सीजन कम होने के चलते यहाँ ऊंचाई चढ़ने में दिक्कत आती है। दूसरा, दुश्मन ऊंचाई पर छुप कर बैठा था और घातक हथियारों से लैस था, यानी जवाबी कार्रवाई में नुकसान भारत को ही उठाना होगा। द्रास में मौजूद वार मेमोरियल के ठीक ऊपर है मशहूर तोरोलिंग की पहाड़ियां। तोरोलिंग द्रास सेक्टर की वो महत्वपूर्ण चोटी है जिस पर फतेह पाना बहुत जरूरी था, क्योंकि तोरोलिंग की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन NH1 पर नजर रख रहे थे। NH1 यानी श्रीनगर से लद्दाख को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग, यानी कि वो लद्दाख की लाइफ लाइन को काट सकते थे। उस चोटी पर फतेह पाना बेहद जरूरी था, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद इस काम को भी भारतीय सेना ने अंजाम दिया। देखने में एक आम चोटी सी लगती है, लेकिन उस चोटी को अपने खून से सींचा है भारतीय सेना के बहादुर वीरों ने। ऐसी तमाम चोटियों पर बैठे दुश्मन को मारना बेहद मुश्किल था, लेकिन फौज ने धैर्य और हिम्मत से काम लिया। पहले फौज को तैयारियों में लगाया गया, सर्च पार्टियां भेजी गई, हर पिक्चर की मैपिंग और दुश्मन की टोह लेने की कोशिश की गई ताकि तैयारी उसी हिसाब से हो सके, और उसके बाद सबसे पहले द्रास सेक्टर और टाइगर हिल कॉम्प्लेक्स को लड़ाई के लिए चुना गया। उसकी वजह थी इस इलाके पर घुसपैठ ज्यादा अंदर तक की गई थी और ये सभी चोटियां NH1 डेल्टा के ज्यादा नजदीक थी। हमले के लिए सबसे पहले तोलोलिंग को चुना गया। 28 मई को मेजर RS अधिकारी कैप्टन S निम्भालकर, लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की नेतृत्व में भारतीय फौज के जांबाज सिपाहियों ने तोलोलिंग पर हमला बोला। जवाब में दुश्मन की तरफ से भी भारी गोलाबारी की गई, लिहाजा सफलता कम मिली। इसके बावजूद भारतीय फौजियों ने घुसपैठियों पर दबाव बनाए रखा। उनके साथ 2 राष्ट्रीय राइफल्स, 18 गढ़वाल राइफल्स को भी इस हमले में शामिल किया गया, और 13 जून 1999 की सुबह 2 राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर विवेक गुप्ता ने दुश्मन को चौंकाते हुए घुप अंधेरे में असाधारण वीरता दिखाते हुए तोलोलिंग पर कब्जा कर लिया। लेकिन इस जंग में मेजर विवेक गुप्ता शहीद हो गए। उनके साथ सूबेदार भंवर पाल ने भी गजब का साहस दिखाते हुए शहादत पाई, लेकिन यह शहादत रंग लाई और 13 जून की सुबह 6 बजे तोलोलिंग की चोटी पर तिरंगा लहराया गया।

मेजर विवेक गुप्ता को मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया और सुबेदार भंवर पाल को वीर चक्र से। तोलोलिंग फतह भारतीय सेना की ऑपरेशन विजय की पहली जीत थी। हालांकि ये जीत अभी अधूरी थी क्योंकि पास के ही कई फीचर्स पर पाकिस्तानी अभी भी बैठे थे, लेकिन इस जीत ने ऐसा लगा कि भारतीय सेना को नए पंख लगाए हों। तोलोलिंग के बाद इसी फीचर पर मौजूद 0.5140 पर हमले की योजना बनी क्योंकि यह फीचर बहुत महत्वपूर्ण था और इसकी वजह यह थी कि तोलोलिंग रेंज पर सबसे ऊंचाई पर था और पाकिस्तान भी यहां तैयारी के साथ बैठा था। यहां पर भारतीय वायुसेना की मदद ली गई और 18,000 फुट की बुलंदी पर मिग 17 हेलीकॉप्टर का सहारा लिया गया, लेकिन लड़ाई में उसकी उपयोगिता सीमित थी, लिहाजा जुगाल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इस काम को अंजाम देने के लिए 129 नुब्रा वॉरियर्स और 152 माइट्री आर्मर को लगाया गया और इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी वरिष्ठ विंग कमांडर एके सिन्हा को सौंपी गई। भारतीय वायुसेना ने 26 मई की सुबह ऑपरेशन सफेद सागर की शुरुआत की। सबसे पहले मिग 21 और मिग 28 हेलीकॉप्टर से हमले की शुरुआत की गई और फिर मिग 17 हेलीकॉप्टर्स ने बर्फीली चोटियों से ऊपर से उड़ान भरी। 28 मई की सुबह एक बड़े हमले की तैयारी की गई। इस हमले में वायुसेना के दो पायलट भी शहीद हो गए। उन दोनों शहीद पायलट्स की कुर्बानियां अतुलनीय थी। ये शहीद थे पायलट मोहलन और पंडेर। नुब्रा 3 और नुब्रा 4 हेलीकॉप्टर्स ने हवाई फायर करते हुए दुश्मन के हौसलों को पस्त कर दिया था। 18 गढ़वाल राइफल्स पूर्व से, वन नागा दक्षिण पश्चिम से और 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स को दक्षिण से हमला करने की जिम्मेदारी दी गई। 19 जून की रात को उस जीत को अंजाम देने के लिए तमाम डिविजनल आर्टिलरी और द्रास सेक्टर में मौजूद सभी इन्फेंट्री मोर्टार्स को फायर का हुक्म सुनाया गया। सबसे कठिन परिस्थिति में दुश्मन की गोलाबारी और खराब मौसम की मार के बीच भारतीय सैनिक आगे बढ़े और 20 जून की सुबह 0.5140 पर कब्जा कर लिया गया था। 28 जून की रात को दो राष्ट्रीय राइफल्स ने 3 पिंपल पर आक्रमण की तैयारी शुरू की। हमले से पहले 2 घंटे के लिए 100 आर्टिलरी गनों और मोर्टार से ऑब्जेक्टिव्स पर भारी मात्रा में बम गिराए गए। बफोर्स गन को डायरेक्ट फायरिंग में इस्तेमाल किया गया और इस लड़ाई में भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस का परिचय दे दिया और जीत दर्ज की। इस जीत में मेजर पी आचार्य, कैप्टन विजयन थापर और कैप्टन कैंगरोज वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन शहीद होकर भी इन्होंने मातृभूमि का वो हिस्सा सुपुर्द किया जिस पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया था। तभी उन शहीदों को उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से नवाजा गया।

0: साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
1: उधर वायुसेना ने जांबाज पायलट मोहलन और पुंडीर को भी मरणोपरांत वायुसेना मेडल से सम्मानित किया। उसके बाद की लड़ाई को टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है। ये वो लड़ाई थी जिसने उस युद्ध का रुख ही बदल दिया। 18 ग्रेनेडियर की कंपनी और घातक प्लाटून ने भारी गोलाबारी के बावजूद लेफ्टिनेंट बलवान सिंह के नेतृत्व में टाइगर हिल पर धावा बोला। घातक प्लाटून के योगेंद्र यादव ने गजब का साहस दिखाते हुए गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी पाकिस्तानी बैंकर पर हमला बोला और उसको ध्वस्त कर दिया। हम आपको यह भी याद दिला दें कि 13 जून जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की टीम का नेतृत्व कैप्टन विक्रम बत्रा कर रहे थे। 19 जून की रात को इस जीत को अंजाम देने के लिए तमाम डिविजनल आर्टिलरी और द्रास सेक्टर में मौजूद सभी इन्फेंट्री मोर्टार्स को फायर का हुक्म सुनाया गया। 11 जून की सुबह तक भारतीय सैनिकों ने टाइगर हिल में मौजूद सभी पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया था। करगिल की लड़ाई का सबसे यादगार लम्हा बना कैप्टन विक्रम बत्रा। यह विक्रम बत्रा की दिलेरी ही थी कि वो बहुत कम वक्त में साथियों और दुश्मन के बीच में भी लोकप्रिय हो गए थे। ये दिल मांगे मोर का नारा देने वाले विक्रम बत्रा को उनकी बहादुरी के लिए ऑन फील्ड प्रमोशन भी दिया गया था। ये दिल मांगे मोर, कैप्टन विक्रम बत्रा के मुंह से निकले ये शब्द लगता है कि आज भी करगिल की पहाड़ियों में गूंजते हैं। ये शहीद आज भी मुर्दा दिलों में जान डालते हैं।

6.475 को अब बत्रा टॉप कहा जाता है। जिन लोगों ने उनके साथ काम किया वो कहते हैं कि अजब बात थी उस नौजवान में, हमेशा जोश से लबरेज, आंखों में चमक और देश की रक्षा का जुनून हमेशा उस पर हावी रहता था। 13 JNK का ये जवान चल पड़ा था अपनी धुन में। 0.5140 पर बेहद मुश्किल लड़ाई को जीत में तब्दील करके वो वापस आया था। उसकी यूनिट को आराम और रीग्रुपिंग के लिए वापस भेजा गया, लेकिन जब उसकी यूनिट आराम कर रही थी तो उसको पता चला 0.4875 वापस लाने के लिए उसकी कंपनी के जवान जूझ रहे हैं। मामला कठिन है। ये पीक मुश्को घाटी को डोमिनेट करती है और राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 डेल्टा को भी नजर रखती है, लिहाजा उसको दुश्मनों से छुड़ाना बेहद जरूरी था। 13 JK की टीम कैप्टन नवीन के नेतृत्व में 36 घंटे से ऊपर जूझ रही थी। यह लड़ाई आमने सामने की थी। दुश्मन के बैंकर तक जाने का एक ही मात्र रास्ता था कि सामने से ही जाया जाए, लेकिन इस पर जाने का मतलब था मौत को आवाज देना।

करगिल युद्ध में हमने कई जांबाजों को खो दिया है, मगर उनकी साहस और उनके हौसले से हम विजय प्राप्त कर चुके हैं। ऑल इंडिया रेडियो की पूरी टीम की ओर से मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ। जय हिंद।

अभी आप फिल्मों पर अपने प्रोग्राम फौजी बहन के लिए समाप्त कर रहे थे। मीडियम वेव और FM पर यह आकाशवाणी करगिल की आवाज़ है। सामीन, शब के 8:45 होने को हैं। थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से खबरें रिले करेंगे, रिले का इंतज़ार कीजिए।

0: दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई, नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। सर्वोच्च न्यायालय ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का निर्देश दिया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश, पूरे

उत्तर भारत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। सदन के दोनों सदनों की कार्यवाही नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान

0: बार बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा की कार्यवाही 4 बार और राज्यसभा की कार्यवाही 5 बार स्थगित हुई। विपक्ष के हंगामे के बीच आज लोकसभा में लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इसका उद्देश्य इस संबंध में बने 2024 के अधिनियम में संशोधन करना है। यह विधेयक परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, निष्पक्षता और लोगों का भरोसा बनाए रखने के लिए लाया गया है। इसका उद्देश्य छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखना और परीक्षा प्रणाली को कानूनी रूप से और अधिक सशक्त बनाना है। इस विधेयक में सख्त प्रावधान किए गए हैं। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की जेल, 10 करोड़ रुपए तक का जुर्माना और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जानबूझकर सदन में इस विधेयक पर चर्चा नहीं होने देना चाहते।
1: पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ आंसर मींस इम्पोर्टेंट बिल लेके आया है तो कांग्रेस, कल भी हमने अपील किया, आज भी सुबह से हमने अपील किया, फिर भी नहीं मान रहे। हमने लोकसभा में भी बताया और यहाँ भी कहा टाइम एलोटेड है। कांग्रेस वाला बताते हैं कि पार्लियामेंट में बोलने नहीं देते हैं और यहाँ हम हाथ जोड़ जोड़ के कहते हैं कि आप बोलिए।
0: हंगामा जारी रहने के कारण लोकसभा और राज्यसभा दोनों को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। चल रहे मॉनसून सत्र के दौरान अब तक संसद में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हो सका है। अनुपम मित्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने परीक्षा पेपर लीक के मुद्दे पर प्रदर्शन के दौरान विद्यार्थियों पर पुलिस के अत्यधिक बल प्रयोग के आरोपों से जुड़ी कई याचिकाओं पर कल सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा वी मोहना की पीठ ने विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल पुलिसकर्मियों के परिजनों की याचिका पर भी सुनवाई का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया कि उसने अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट को प्राप्त चंदे में कथित गबन की जांच के लिए लखनऊ रेंज के पुलिस महानिरीक्षक किरण एस की अध्यक्षता में 4 सदस्यों वाले विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एसआईटी में 5वें सदस्य के रूप में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने का भी निर्देश दिया है। एसआईटी 2 सप्ताह के अंदर अपनी पहली स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उत्तर प्रदेश में एक विशेष अदालत ने राम मंदिर चंदा चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने आज वाणिज्यिक पोत एमवी ओमारफी पर हुए हमले के बाद भारत में यूक्रेन के राजदूत अलेक्सांद्र पोलिशचुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय की मौत हो गई थी। मंत्रालय ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए वाणिज्यिक जहाजों पर ऐसे हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने समुद्री नौवहन की सुरक्षा और स्वतंत्रता तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर इनके प्रतिकूल प्रभाव को रेखांकित किया। मंत्रालय ने दोहराया कि ऐसे कृत्य निर्दोष नाविकों के जीवन को खतरे में डालते हैं या स्वीकार रहे हैं और इनसे बचना चाहिए। यूनाइटेड कश्मीर पीपुल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने पाकिस्तानी अधिकारियों से संयम बरतने और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग न करने को कहा है। UKPNP ने कहा कि 5 जून से पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्र में जारी अशांति के बीच 40 से अधिक लोगों की जाने गई हैं। ये विरोध मार्च संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी और पाकिस्तानी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत के विफल होने के बाद आयोजित किया गया। सिक्किम में नाथुला दर्रे के रास्ते से भारत और चीन के बीच सीमा व्यापार अगले महीने की 1 तारीख से फिर शुरू हो जाएगा। इससे COVID-19 महामारी के कारण 2020 से निलंबित व्यापार फिर शुरू होगा। व्यापार की पुनः शुरुआत से सीमा पार व्यापार को और बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्काई रूट एयरोस्पेस के पवन चन्ना और नागा भरत डाका से बात की। श्री मोदी ने विक्रम 1 की सफलता के साथ साथ कई अन्य रोचक विषयों पर भी उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने उनकी यात्रा और भविष्य की योजनाओं के बारे में सुनकर प्रसन्नता व्यक्त की। श्री मोदी ने कहा कि उनकी ऊर्जा, महत्वाकांक्षा और सकारात्मकता देश के निजी अंतरिक्ष इकोसिस्टम की जीवंत भावना को दर्शाती है। श्री मोदी ने स्काई रूट एयरोस्पेस की पूरी टीम को अपनी शुभकामनाएं भी दी। असम में भीषण बाढ़ के मद्देनजर इजराइल ने असम और भारत के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त की है। भारत स्थित इजरायली दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में आई भीषण बाढ़ से प्रभावित

0: सभी लोगों के साथ उनकी गहरी संवेदना है। असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार होने के साथ ही अधिकतर इलाकों में बाढ़ का पानी अब कम हो गया है। शिवसागर, गोलाघाट, जोरहाट और चराईदेव जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में बनाए गए 109 राहत कैंपों में भी 37,000 से ज्यादा लोग शरण लिए हुए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 68 लोगों की मौत हो चुकी है। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जैसे जैसे राज्य बाढ़ से उबर रहा है, प्रभावित इलाकों में बिजली बहाल करने का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के कारण मूसलाधार बारिश जारी है। कई जिलों में बाढ़ और जल भराव से फसलों और बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने स्थिति से निपटने के लिए जिला प्रशासनों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है।
1: बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने गहरे डिप्रेशन के कारण उड़ीसा में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में फिर से बाढ़ आ गई है और जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने मयूरभंज, केंदुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, सुवर्णपुर, बौद्ध, नुआपड़ा और बलांगीर जिलों में इस महीने की 30 तारीख तक भारी बारिश होने की अनुमान जताया है। वासुदेवपुर में फिर से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, जबकि सुवर्णपुर में फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी जिला प्रशासनों को राहत और बचाव कार्य तेजी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में बारिश की संभावना व्यक्त की है। देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर सहित कई पहाड़ी क्षेत्रों में अगले 24 घंटों के लिए तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। राज्य सरकार ने सभी जिला प्रशासनों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कल ओडिशा, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तटीय कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणांतरिक कर्नाटक और विदर्भ में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। 31 जुलाई तक तटीय आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, झारखंड, केरल, माहे, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना में भी तेज बारिश का अनुमान है। 2 अगस्त तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश की संभावना है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्र अपने वीर जवानों के शौर्य, उनके बलिदान और कर्तव्य निष्ठा के प्रति अटूट निष्ठा को सलाम करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा की रक्षा से लेकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में नागरिकों की सेवा तक CRPF कर्मियों ने हमेशा राष्ट्र को सर्वोपरि रखा। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न से अलंकृत और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज पुण्यतिथि है। मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर कलाम ने देश की रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा था कि डॉक्टर कलाम ने बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी थी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। एशियाई चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के स्नैच में 88 और क्लीन एंड जर्क में 111 समेत कुल 199 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक हासिल किया। वहीं भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने पुरुषों के 60 किलोग्राम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सचिन ने इंग्लैंड के विलियम हैविट को शिकस्त दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने पर ज्ञानेश्वरी यादव को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने प्रतियोगिता में अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया है। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि उनकी ये सफलता देश

0: युवाओं को प्रेरित करेगी। नई दिल्ली में 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत ने आज पुरुष और महिला टीम स्पर्धाओं में 3-0 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत कर दी है। भारतीय पुरुष टीम ने जिम्बाब्वे को और वहीं महिला टीम ने मालदीव को शिकस्त दी है। युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ग्लासगो में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले पैरा पावर लिफ्टर झंडू कुमार को अपने आवास पर सम्मानित किया। खेल मंत्री ने उन्हें 10,00,000 रुपए का नकद पुरस्कार भी प्रदान किया। झंडू कुमार ने पुरुषों के हैवीवेट वर्ग में 190 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता था। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में वेक्टर जनित रोगों, रोकथाम, सुरक्षा और जन जागरूकता विषय पर परिचर्चा का प्रसारण करेगा। जन स्वास्थ्य विशेषज्ञ और राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण केंद्र के पूर्व निदेशक डॉ. अक्षय धालीवाल और नई दिल्ली स्थित एम्स के चिकित्सा विभाग के प्रोफेसर डॉ. पीयूष रंजन परिचर्चा में भाग लेंगे। ओडिशा में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा का समापन अनुष्ठान वार्षिक नीलाद्री बीजे आज पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में मनाया जा रहा है। लाखों श्रद्धालु इस दिव्य वापसी के साक्षी बनने के लिए पुरी में एकत्रित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पेश, पेपर लीक के मामलों में सख्त कार्रवाई का प्रस्ताव। संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई नीत मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बार बार बाधित। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट को मिले चंदे में कथित गबन की जांच के लिए पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया। भारत ने वाणिज्यिक पोत एमवी ओमाफी पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत पर कड़ा विरोध जताते हुए यूक्रेन के राजदूत को तलब किया। उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी में बने गहरे दबाव के कारण ओडिशा में मूसलाधार बारिश और राष्ट्रमंडल खेलों में भारोत्तोलक ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। और इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सायरा मुज्तबा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both houses of parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over knee tissue. Uttar Pradesh government sets up a 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Orissa. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver medal in women's 53-kilogram category. Now the news in detail. The Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced today. The bill seeks to amend the Public Examinations Prevention of Unfair Means Act 2024. Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Dr. Jitendra Singh, introduced the bill in the House. However, both the Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition parties on alleged police action during students' protest over knee tissue. A report.
2: For the 6th consecutive day of the monsoon session, the proceedings of both the Houses of Parliament continued to remain disrupted amid ruckus by the opposition. On the first day of the second week of the session, Lok Sabha and Raj Sabha faced repeated adjournments as opposition members demanded withdrawal of FIR filed against students during the protest on the NEET issue. Lok Sabha saw 4 adjournments while Raj Sabha faced 5 adjournments. Amid opposition uproar, the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 was introduced in the Lok Sabha today. The bill seeks to amend the public examination.

0: Tennis Championships in New Delhi, top-seeded India began its campaign with commanding 3-0 victories in both men's and women's team events today. The Indian men's team defeated Zimbabwe in its Group A opener at the Thyagaraj Stadium. The Indian women also registered a 3-0 win over Maltese in their Group B opener without dropping a game. Vice President C.P. Radhakrishnan, Home Minister Amit Shah and Commerce and Industry Minister Piyush Goyal have congratulated Indian shooters Isha Singh and Manu Bhakkar on their impressive performances in ISSF Shooting World Cup in Hangzhou, China today. Isha Singh grabbed the gold in the women's 25-meter pistol event. She upstaged Olympic medalist Manu Bhakkar, who took the bronze to complete a double podium finish for India. Benchmark domestic equity indices rebounded today and entered 1% higher. We have a report.
1: The Sensex climbed 776 points to close at 76,836, while the Nifty rose 229 points to settle at 23,996. The broader market at the National Stock Exchange also gained in line with the frontline indices. In the forex market, the rupee appreciated by 67 paise to end at 95 rupees and 89 paise against the US dollar. With Ayushi's report, Gauran Dhawan Lal for Akashwani News.
0: Indian astronomers, along with their international collaborators, have reported the rare discovery of a blue straggler star, or BSS, caught in the act of formation. This has provided direct evidence of how such stars are created. BSS are a peculiar class of stars found in star clusters that appear hotter, brighter, and more massive than their peers. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Public Examinations Amendment Bill introduced in Lok Sabha proposing stricter action in paper leak cases. Both Houses of Parliament witnessed repeated adjournments amid ruckus by the opposition on alleged police action during protests over NEET issue. UP government sets up 4-member SIT under IGP to investigate alleged Ram Temple Trust donation embezzlement. Supreme Court directs to include forensic auditor in team. New Delhi summons Ukrainian ambassador lodging strong protest over death of an Indian national in vessel attack. Deep depression over northwest Bay of Bengal triggers widespread torrential rainfall across Odisha. Orange alert for heavy rainfall issued across North India. And in Commonwealth Games, weightlifter Gyaneshwari Yadav clinches silver in women's 53-kilogram category. That's all in the news at 9. Good night.
2: Adab, ye Akashwani hai. जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। अवामी इम्तिहानात का तर्मीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की तहकीकात के लिए आईजीपी की क्यादत में एक 4-रुकनी एसआईटी तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की भी हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और दौलत मुश्तरका गेम्स में वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने खवातीन के 53 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट के दो नौजवानों की कार्रवाई नीट मामले पर तालिब इल्मों के एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई से मुतालिक अपोजिशन पार्टियों के शोर शराबे के बाद दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा में आज अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तर्मीमी बिल 2026 पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तर्मीम करने के लिए है। अमले अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर ममलकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ऐवान में ये बिल पेश किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अराकीन पर जोर दिया कि वो बिल पर बहस होने दें। उन्होंने कहा कि इस बिल पर बहस के लिए 6 घंटे वक्फ किए गए हैं और 91 तरमीमात मौसूल हुई हैं।
3: मोदी जी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना महत्वपूर्ण बिल पर आपने पर्याप्त समय दिया और इतने ज्यादा अमेंडमेंट के नोटिस भी आए। इसका मतलब कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत

0: चाहते हैं। आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं? ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें।
1: क्योंकि शोर शराबा जारी रहा, इसलिए प्रिसाइडिंग अफसर ने ऐवान की कार्रवाई कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी। इससे कबल स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 एक अहम कानून है जो मुल्क के करोड़ों नौजवानों के मुस्तकबिल, जफाकशी और उम्मीदों से वाबस्ता है।
2: लोक परीक्षा अनुचित साधारण निवारण संशोधन विधेयक 2026 हमारे देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य, उनकी मेहनत और उनकी आकांक्षाओं से जुड़ा अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। ये विधेयक पेपर लीक जैसे अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाने, दोषियों के विरुद्ध कठोर दंड प्रावधान कर देश के करोड़ों युवाओं के हितों की रक्षा और इस दिशा में एक महत्वपूर्ण विधेयक है। सभी माननीय सदस्यों से आग्रह, इस विधेयक पर चर्चा होनी चाहिए।
1: इस दौरान राज्यसभा की कार्रवाई भी इसी मामले पर कल सुबह 11 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इससे कबल जब ऐवान की कार्रवाई दूसरी मरतबा मुलतवी किए जाने के बाद दोपहर 2 बजे दोबारा शुरू हुई, तो उमूर दाखिला के वजीर मुमलकत ने कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम का तरमीम बिल 2026 पे बहस के लिए पेश किया। इस बिल का मकसद कौमी ताजीम की बेहरमती की रोकथाम के कानून 1971 में मजीद तरमीम करना है। मुजव्वदा कानून वंदे मातरम को कौमी तराने जनगणमन जैसा ही कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहता है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: मानसून इजलास के दूसरे हफ्ते के पहले रोज लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई बार बार मुलतवी की गई, क्योंकि अपोजिशन के अराकीन नीट मामले पर एहतजाज के दौरान तालिब इल्मों के खिलाफ दर्ज की गई FIRs को वापस लेने का मुतालबा कर रहे थे। लोकसभा की कार्रवाई 4 बार मुलतवी की गई, जबकि राज्यसभा की कार्रवाई 5 बार मुलतवी की गई। अपोजिशन के शोर शराबे के माबैन अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम का तरमीमी बिल 2026 आज लोकसभा में पेश किया गया। ये बिल अवामी इम्तिहानात गैर कानूनी तौर तरीकों की रोकथाम के कानून 2024 में तरमीम करने के लिए पेश किया गया है। इस कानून का मकसद एक जामع कानूनी लाहे अमल कायम करने के साथ साथ तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करके इम्तिहान के निज़ाम में शफाफियत, ईमानदारी और इसके वक़ार को मुस्तहकम करना है। इसमें बहुत सी अहम शिकें हैं, जिनमें 10 साल तक की सज़ा, 10 करोड़ रुपये तक का जुर्माना और कसूरवार ठहराए गए मुजरिमों की इमलाक को जब्त करने समेत सख्त गुंजाइशें शामिल हैं। चेयर और हुकूमत की बार बार अपील किए जाने के बावजूद अपोजिशन के अराकीन दोनों ऐवानों में शोर शराबा करते रहे। चूंकि शोर शराबा और मुखालफत का सिलसिला जारी रहा, इसलिए लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। अब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल यानी मंगल के रोज दोबारा शुरू होगी। आकाशवाणी न्यूज दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
1: उत्तर प्रदेश सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट में मौसूल होने वाले अतियात की मुबैना चोरी की जांच के लिए लखनऊ रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस किरण एस की सरबराही में एक 4 रुकनी खसूसी तहकीकती टीम SIT तश्कील दी गई है। इस टीम में DIG ओहदे के एक अफसर, एक पुलिस सीनियर सुप्रिंटेंडेंट और एक एडिशनल SP शामिल होंगे। अदालत आलिया ने रियासती सरकार से कहा है कि वो SIT के 5वें रुकन के तौर पर फॉरेंसिक एक ऑडिटर को भी शामिल करे, जो 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी पहली रिपोर्ट पेश करेंगे। अदालत की बेंच उन बहुत सी उजरदारियों पर समाप्त कर रही थी जिनमें मंदिर ट्रस्ट के अतियात की चोरी और ऑडिट के इल्जाम के मामले में CBI के जरिए जांच की दरखास्त की गई है। इस दौरान आज उत्तर प्रदेश में खसूसी अदालत ने राम मंदिर अतियात की चोरी के मुबैना मामले में तमाम 8 मुलजिमीन की अदालती तहवील में 14 दिन की तौसी कर दी है। वजारत खारजा ने एक तजारती जहाज MV ओमोरफी पर हमले के बाद आज भारत में यूक्रेन के सफीर डॉक्टर ओलेग्जेंडर पोलिशकुक को तलब किया। इस हमले में एक भारतीय शहरी हलाक हो गया है। इस वाकये पर उन्हें अपनी शदीद तशवीश से आगाह करते हुए वजारत ने सख्त अल्फाज में तजारती जहाजों पर इस तरह के हमलों की मजम्मत की है। वजारत ने बहरी जहाज रानी के तहफ्फुज, जहाज रानी की आज़ादी और बैनुल अक्वामी तजारत पर इन हमलों के मनफी असरात को उजागर किया। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि सफीर से दरख्वास्त की गई है कि वह यूक्रेन के हुकाम को तजारती जहाजों को निशाना बनाने पर भारत की शदीद तशवीश से आगाह करें। वजारत ने यादा किया कि इस तरह की कार्रवाइयों से बेगुनाह शहरी जहाज

0: दिया है जिसमें ट्रायल कोर्ट की जानिब से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक काले धन को जायज बनाने के केस में इन रहनुमाओं के खिलाफ दायर करदा ईडी के फर्ज जुर्म पर समाप्त करने से इनकार कर दिया था। जस्टिस मनोज जैन ने जवाब दहिंदा की जानिब से जवाब दाखिल करने के लिए वक्त मांगे जाने के बाद मामले की अगली समाअत के लिए 10 सितंबर की तारीख मुकर्रर की है। असातेजा की अहलियत से मुतालिक महाराष्ट्र के इम्तिहान के पेपर लीक मामले के अहम मुलजिम ने आज भिवंडी की एक अदालत के सामने खुद सुपुर्दगी कर दी। इसके साथ ही इस मामले में मुलजिमीन की तादाद 15 हो गई है। इम्तिहान में हुई बेजाब्ती की पुलिस जांच कर रही है। भारत की वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव ने आज ग्लासगो में मुनक्कदा दौलत मुश्तरका खेलों में खवातीन के 53 किलोग्राम जुमरे में चांदी का तमगा जीता है। एशियन चैंपियनशिप में कांस्य का तमगा जीतने वाली ज्ञानेश्वरी ने स्नैच में 88 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 111 किलोग्राम वजन उठाया, जिसके साथ उनका मजमुई वजन 199 किलोग्राम रहा। नाइजीरिया की ओनोम डीडी ने कॉमनवेल्थ और गेम्स रिकॉर्ड के साथ 206 किलोग्राम का वजन उठाकर सोने का तमगा जीता है। जीत के बाद भारत की तमगों की तादाद 5 हो गई है, जिनमें सोने का 1, चांदी के 3 और कांसे का 1 तमगा शामिल है। नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में मुनक्कदा दौलत मुश्तरका खेल 2026 में वेटलिफ्टिंग के जुमरे में चांदी का तमगा जीतने पर भारतीय वेटलिफ्टर ज्ञानेश्वरी यादव को मुबारकबाद पेश की है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। अवामी इम्तिहानात का तरमीमी बिल लोकसभा में पेश किया गया है। इस बिल में पेपर लीक मामलात में सख्त तरीन कार्रवाई करने की तजवीज है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई, नीट मामले पर एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस कार्रवाई पर अपोजिशन के शोर शराबे के दरमियान बार बार मुलतवी की गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने राम मंदिर ट्रस्ट अतियात की मुबैना चोरी की जाँच के लिए IGP की क्यादत में एक 4 रुकनी SIT तश्कील दी है। सुप्रीम कोर्ट ने टीम में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को शामिल करने की हिदायत दी है। भारत ने यूक्रेन के सफीर को तलब किया है और बहरी जहाज पर हमले में एक भारतीय शहरी की मौत पर सख्त एहतजाज दर्ज किया है। शुमाल मगरबी खलीज बंगाल पर गहरे दबाव के बायस ओडिशा में बड़े पैमाने पर मूसलाधार बारिश हो रही है। शुमाली भारत में शदीद बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: در سبحان سے آکاشوانی دہلی کا نام خبر ان لائن یعنی نیٹ پن میڈیا میں دونوں ایف ایم کے جو آکاشوانی کرگلین وقت پر تو ترگونا مرسم چو سنسو کا ستا گیرلکس پروگرام پر چکت نیان مزاد پروگرام پر چکن پر سجاد علی
2: السلام علیکم انجولے آکاشوانی کرگل میڈیا میں کا اچھی درنگی فیس پر پوڈکاسی چھرپوا گر گر جک سے یولی سرمت سنسین Atamingmon amastringmonis snangabinyutna yang reshik akashwani studio mana yenti mezban Sajjad Ali Shujawati jun salam pufrod mucham sushik rinchan ngen khanun ta nga tanga dilze ghere si podcast sir gao ngates hamari sanskriti khatuspeka ngati purigis ka tem yul zoxse zer na krim skor ya krim si skor pe ngok luk strol skor pe ngok skat skor pe ngok gazati ngatanga lamrik bin ngok zer chespu dunika pespa bas ngates spread pe fra luks bachasin richan yan kanun ngates akashwani kargili stadium ngok skyo ju sikhon set kargir zongi yang ladakh si yutin ngok mingchan in noit pi skat ne shesrik silhongi khaspa chik chik محترم ڈاکٹر محمد الیاس فقوا نتے درنگ آکاش وانی کر کے لیے پھسپا پوڈ کاسٹ سے سر کرمس کھورے ہم لوگ رنجن گرون پہ زوستے کا سکیو جوسے کیوں سات ڈاکٹر صاحب یارانگا صبح جسن اللہ آکاش وانی کر کے لیے اسٹوڈیو ہم لوگ رگسو جی جو یارانگا یری رنجن تو سنے ہم نا تو سمی سے آکاش وانی کر کے لیے اسٹوڈیو ہم لوگ سکیو پہ ہے
3: بخشی جو شجاد صاحب انتانا انتین ین کھانن گاما نیچوسنا السلام علیکم
2: بخشی جو علیکم السلام چھانا ڈاکٹر محمد الیاس صاحب نتی دی پوڈکاسٹ استرولی کا نتس شنشیر بنگرس چھانی دوسو ترگون فتیکا لوکسو لوکسو کھتو سنے کا میمان سن چھپا ہاگو سپیل بھی ہاگو لیپ چھپ بھی نتی فرالوکس باچات چھانا دیرین یران زرنا سکاتی خلون پہنو کھسپا ngon yot kan yeres PhD degree yeres lenju chana ngati rinchan yuli memang sun la phesasan e khatu sun na zola gan sang ngata jagzeri mi sen ukak chan inang dyan zox la ngati shtu sox pe ngati society ang ngati ma shire ang gazati ngati chefo ten yot na gato dyang lu ko ngata la zo mu me gyong jasen gan ang na suba za khachan jik jik ngata ga

0: ही नहीं जरूर बता जिसे का हिंदुस्तान केरला ने और दुख तो
1: को
0: केरल पे इंजर
1: अफगानिस्तान
0: यो यो यो नो नो यो मत अच्छा चे जब ने देखो गति करगी ली दी मलसा करा का तुलता ना तो दिगना खचुल 200 निबजा
1: निबजा किलोमीटर निबजा
0: दिगना लेस्ता
1: या निबजा या दियाच
0: अगर बल्टिस्तान
1: या दियाच तकरीबन माना किलोमीटर निबजा निबजा ना खचु दी खरखोर चे
0: यर नगो ने दी मिलेपचिन मिलेपच सुसनल ने दी ट्रांस हिमालयन कारवान जरे दी ने शोबज बिजो गति शसकन ने यादो में मदे कना सिलसिला यो मस्जिदी परियो से
1: सोले ने माना आते मुश्किल इदन ना पाहे मुश्किल सुन सुना यो तना सिर रूट
0: शहरा रेशम में आता दी माने खिलसे कुरान में दी गए माना गति दी नो यर नगो ने
1: ओ बक्सो लो सो यो
0: चाना गति आवामी लेवल कम समासु चाहे भाषा कोनिन चाहे आता